0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाने वाला।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे। खाओ।
2: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह से खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

Oh, now that I'm the man, oh,

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: उचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
3: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
4: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
1: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है, इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 इन लोकसभा टुडे। Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
7: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State governments and union territory administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be conducted on a day-to-day basis, with trials mandated to conclude within 3 months from the date the charge sheet is filed. Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
6: Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said the task force will focus on examination reforms and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of the upcoming examinations. He said that the country's examination system must be trustworthy, transparent and leverage technology to the maximum extent. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chief.

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: था मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ जी, कैसे हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है ना? मैं चाहता हूँ सब बढ़िया ही होना चाहिए यार। देखो सोमवार है, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, 8:22 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आपके शहर का चमचमाता हुआ अपना देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। एक ब्रांड न्यू सुबह के साथ एक बढ़िया सा शो, एक बार फिर से आपका फेवरेट वाला शो लेकर हाजिर हो गया हूँ आपके रेडियो सेट पे। हाँ जी, कैसे हाल चाल? सब बढ़िया चल रहे हैं जिंदगी में? चलो यार, सब कुछ बढ़िया चलना चाहिए। क्या कहा, तबियत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं जी, गेट विल सून, तबियत आपकी ठीक हो जाएगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और देखिए लाइफ है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो जिंदगी में आती रहती है ना, इसे फेस करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। दोस्तों नई सुबह, नया सोमवार और नई उम्मीदें आपका इंतजार कर रही हैं। याद रखिए, सूरज हर रोज इसलिए नहीं निकलता कि कल अच्छा था, बल्कि इसलिए निकलता है कि आज को बेहतर बनाया जा सके। तो बीती हुई बातों को पीछे छोड़िए, मुस्कुराइए और आज एक ऐसा कदम बढ़ाइए जिस पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गर्व हो और पॉजिटिविटी आपके अंदर हो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना देसी रेडियो। तो चलिए दोस्तों, याद रखिए आज मंडे की सुबह है एंड इतना कहना चाहता हूं कि कुछ भी अगर आपको करना है तो बस अपने हौसलों को और अपने इरादों को मजबूत रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त। और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसीलिए जो करना है इसी लाइफ में करना है और बढ़िया और बेहतरीन करना है ना। हमारी तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ आज की सुबह जुड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जुड़ सकते हैं? अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस के जरिए जुड़ सकते हैं जी। 9837896896 ये वो प्यारा नंबर है जिसके जरिए आप मेरे साथ मुखातिब हो सकते हो आज की सुबह और ढेर सारी बातें कर सकते हो मेरे साथ आज की सुबह। हाँ जी, फिलहाल मैं अभी एक प्यारा सा ट्रैक प्ले करूंगा, आज की सुबह को थोड़ा सा स्पेशल बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल गाने के साथ। उसके बाद लौट कर आएंगे तो आपसे ढेर सारी बात करेंगे, आज के दिन के बारे में बहुत सारी बात करेंगे, आज का दिन क्यों खास है एंड आज क्या स्पेशल है, सब कुछ आपको पता लगेगा। अभी तो शुरुआत हुई मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ है जो मुझे आपको बताना है। तो बस आप मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना देसी रेडियो। हाँ जी, फिलहाल देखिए मैसेजेस आने शुरू हो गए, लेकिन ये अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में लौट के आऊँगा तो डेफिनेटली शामिल करूंगा। फिलहाल के लिए ये गाना, उसके बाद लौट कर आ रहे हैं। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है 8:24, बहुत सारी बातें होती रहेंगी इस स्टेशन पर। फिलहाल ये गाना

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

क्या बात है जी, सोमवार की सुबह और खट्टा खट्टा कच्चा कच्चा नींबू की बात हो रही है। निबूड़ा निबूड़ा खूबसूरत ट्रैक फ्रॉम द फिल्म हम दिल दे चुके सनम से भी आपने एंजॉय किया, एक बहुत ही प्यारा गाना। और इस गाने के बाद वेलकम बैक है कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ों में भी आप इस गाने को सुन रहे थे और इनके साथियों की भी आवाज़, बहुत ही प्यारा ट्रैक। आगे बढ़ते हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे बिंदास मॉर्निंग, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो आप सुन रहे हैं। यार आगे बढ़ते हुए आपको वक्त बता देता हूँ, 8:38 हो रहे हैं आज 27 जुलाई की सुबह। तमाम सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमें बहुत ही सुंदर मैसेज कर रहे हैं भाई साहब, इतने प्यारे और पॉजिटिव मैसेज के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं भाई, सच में यार थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे प्यारे संदेश लगातार पहुंच रहे हैं।

बात कर लेते हैं आज 27 जुलाई के दिन के बारे में, क्या कुछ स्पेशल है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें, आज ही के दिन जो है आसिफ जी का जन्म हुआ, जो 1967 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय सिने अभिनेता और टीवी कलाकार थे। श्रोताओं, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और के एस जो चित्रा इनका भी जन्म हुआ था श्रोताओं 1963 में। आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं ये, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और इसके अलावा आपको बताते चलें आज के दिन के बारे में, तो आज के दिन कल्पना दत्त का भी जन्म हुआ था श्रोताओं। सन 1913 में आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली पहली क्रांतिकारी महिलाओं में से एक इनका नाम आता है, एंड इनका जन्म आज के दिन हुआ था श्रोताओं। और बाकी आज के दिन और क्या स्पेशल है वो हम डेफिनेटली आपको बताते रहेंगे इसी स्टेशन पे, क्योंकि आप आनंद के साथ हैं। सारी कड़क अपडेट आपके लिए लेकर आ जाते हैं, क्या कुछ खास चल रहा है। आपको बता दें भाई साहब, CRF की स्थापना दिवस जो है आज के दिन मनाया जाता है।

देखिए, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर संदेश आप लोग पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, दिल से थैंक यू करना चाहेंगे जी। सच में इतने सुंदर मैसेज आप लोग करते हैं, बहुत ही आनंद आता है, मन को जो है ना छू जाते हैं आपके विचार। एक बहुत सुंदर मैसेज आया, छोटा या बड़ा होना उम्र की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई बड़प्पन तो उस इंसान में होती है जो इंसान हमेशा सम्मान प्रेम और इज्जत को नहीं भूलता है। छोटे बड़े से कुछ नहीं होता, इज्जत और सम्मान जो है आपके मन में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक और मैसेज मेरे पास आया है, इन्होंने अपना नाम लिखा है सुनीता देवी और ये लिखती हैं, आनंद जी देखिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं कि कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है अपने मन को साफ रखिए, अपने इरादों को साफ रखिए, फिर यकीन मानिए वो चीज आपको जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात से हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे, बिल्कुल सत्य बात है। हम भी यही कहते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ करें उसे बिल्कुल अच्छे मन से करें, सच्चे मन से करें, और यकीनन आपको वो चीज़ ऊपर वाला अल्लाह वाहेगुरु खुदा ज़रूर देंगे, ईश्वर आपको वो चीज़ ज़रूर प्रदान करेंगे। इसी बीच हमारे पास मैसेज पहुंचा है रिहाना जी का, ये भी मेरे साथ आज की सुबह जुड़ चुकी हैं और लिखती हैं, हेलो जी कैसे हैं आप, मैं बहुत ही बढ़िया हूं मैम। और ये अगला मैसेज सहारनपुर से मेरे पास पहुंच रहा है, हेलो नमस्कार कैसे हैं आनंद जी आप, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूं। लिखते हैं कभी किसी की सुनी हुई बातों पर जो है बिलीव ना करें, मतलब जो होता है ना सुनी सुनाई बातों पर हम तुरंत भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं हमारी, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो, क्योंकि झूठ हमेशा सच से ज़्यादा एडवांस तेजी के साथ फैलता है। ट्रू जी, बहुत अच्छी बात बोलिए। इसी बीच एक और मैसेज आ गया है कि अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वाह जी वाह, सच में यार बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आप लोग कर रहे हैं। गाइज आप भी अपने प्यारे संदेश पहुंचा सकते हैं। 8:42 हो गए हैं स्टेशन क्लॉक में, एक और अच्छा सा गाना सुनते हैं एंड इस गाने के बाद अभी वापस आएंगे तो फिर आपको कुछ और स्पेशल चीज़ें बताएंगे अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। कुछ खास चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर पता लगेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, ट्यून इन रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। मेरे साथ बोल दो यार, मिलके बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। चलो फिलहाल ये गाना, इसके बाद लौट कर आ रहे हैं। यार वैसे गाना अच्छा है ये, नो डाउट, मैं काफी टाइम के बाद इस गाने को सुन रहा हूँ। प्यारा ट्रैक, कमाल खान एंड अलका याग्निक जी की आवाज है, म्यूजिक हिमेश रेशमिया का है, गाना बहुत अच्छा है यार। चलिए साथ में एंजॉय करेंगे और आप लोग से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने मैसेज जो पहुंचाना चाह रहे हो यार पहुंचा दो, बिल्कुल देरी मत करो। एक नई मॉर्निंग है, कुछ अगर आपके मन में आपके जहन में है कोई अच्छी थॉट है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा उसको हम तक पहुंचाओ यार, क्योंकि कोई भी बात को मन में रखने से अच्छा है उसे जनता तक पहुंचा दो। अगर वो अच्छी बात है, आपको लगता है कि उससे किसी का अच्छा हो सकता है, तो प्लीज यार व्हाट्सएप करो ना मुझे 9837896896 और दिल से कहो जियो बिंदास।

0: बच्चा तोड़ दिया नालायक। सॉरी
1: माँ का नालायक बेटा।
2: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
6: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
6: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
6: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हाय गुड मॉर्निंग। देखो ये सोमवार की सुबह है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना फ्लैश बैक में भी जाओ, थोड़ी पुराने गाने सुन के ना थोड़ी पुरानी यादों को ताजा करो, है ना। सुबह सुबह आप जो भी काम कर रहे हो, आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कुछ आप जिस भी चीज में लगे हुए हो, लगे रहो यार। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बट कुछ अच्छे गाने जिनको सुन के आपका दिमाग जो है ना थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, थोड़ा सा फ्लैश बैक में आपको ले जाएगा।

0: सॉन्ग है यार।
1: किसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल आए है।
0: चलो एंजॉय करते हैं सोमवार की सुबह, साथ में लौट के आ रहा हूँ थोड़ी सी देर में। गुड मॉर्निंग।

0: बहुत ही प्यारा गाना जिसको सुन के मैं और आप आगे बढ़ रहे थे आज मंडे मॉर्निंग में। सच में इतने खूबसूरत ट्रैक सुन के मजा आ जाता है आज। वंस अगेन वेलकम बैक है, एक और नई मॉर्निंग है भाई, आप सभी का स्वागत करते हैं और ढेर सारे मैसेज तो आप कर ही रहे हो, उसके लिए आप सभी का मैं दिल से थैंक यू भी करता रहता हूँ बार बार, क्योंकि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग सच में बहुत प्यारे मैसेज करते हो। मतलब आई कॉन्ट बिलीव दिस, यार इतने अच्छे मैसेज हमारे लिसनर सुबह सुबह करते हैं, तो हमें क्यों नहीं मोटिवेशन वाला डोज आएगा भाई, जरूर मोटिवेशन डोज अंदर से बाहर आएगा क्योंकि इतने अच्छे मैसेज आप करते हैं। यार देखो सोमवार की सुबह ना मेरे पास बहुत सारी हर दिन कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नए नए कंटेंट मेरे पास होते हैं, और कल मैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर गया था, वहाँ पर मुझे कुछ सीखने को मिला एक सर से, उनके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो बड़ी कनेक्टेड और बड़ी एकदम रिलेटेबल होती है हमारी लाइफ से ना, बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं कड़ियाँ कुछ हमारी ज़िंदगी में, वो मैं क्यों बात कर रहा हूँ बताऊंगा थोड़ी देर में बताऊंगा। आज मंडे मॉर्निंग है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और दोस्तों आज का एक छोटा सा सवाल बहुत मज़ेदार है, तो मैं डेफिनेटली आपसे पूछना चाहूँगा। आज मॉर्निंग है तो नई मॉर्निंग में नया सवाल होना बहुत ज़रूरी है जो आपके दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश कर देगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने बहुत अच्छे मैसेज किए हैं, तो मैं चाहूँगा पहले आपके वॉइस मैसेज को सुन लिया जाए, उसके बाद फिर मैं अपना सवाल पूछूँ।
1: आनंद भाई गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग जी।
1: मैं मौसी मंसारी बनारस से बिंदास मॉर्निंग में जुड़ा हुआ हूँ, और गाने बहुत ही अच्छे अच्छे चल रहे हैं, और मेरे यहाँ बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है, और सावनी मेला भी मेरे यहाँ एक महीने का लगता है जो कि अगले महीने से स्टार्ट होगा। अपने काशी पे मेला बहुत ही अच्छा लगता है, तो सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि काशी पे आएं और मेले का आनंद उठाएं और अपना दर्शन भी अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने, तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम यही चाहते हैं कि आनंद भाई सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, तो सभी लोग से गुजारिश है कि काशी पे आए, दर्शन करें, यहाँ का नज़ारा देखें, और ख़ासकर नज़ारा देखने लायक रहता है अगले महीने जब सावन स्टार्ट होता है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा रहता है। और मैं एक अब बात और कहना चाहता हूँ आनंद भाई कि हिम्मत जज्बा जब रहेगा आपके अंदर तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, सिर्फ भरोसा होना चाहिए अल्लाह पर कि हमको ये काम करना है, तो आप उसमें कामयाबी ज़रूर पाएंगे। मैं मौसी मंसारी बनारस से आनंद भाई बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद भाई के साथ।
0: थैंक यू मौसी मेरे भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बोला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और वॉइस नोट बहुत छोटा सा है, प्लीज आप लोग जो है इसको भी सुन लीजिए यार। जी नमस्कार।
2: कबूल है जिंदगी

0: का हर तोहफा मैंने गैरों पर हक जताना छोड़ दिया।
1: क्या बात है।
0: जो गुजरती है दिल पर वो हकीकत है मेरी, मैंने दिखावे के लिए मुस्कुराना छोड़ दिया। जो समझ ही नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें जख्म दिखाना छोड़ दिया। जो महसूस ही नहीं करते जरूरत मेरी, मैंने उनके साथ निभाना छोड़ दिया। जो चाहते हैं रहना बस नाराज मुझसे, मैंने भी उन्हें बार बार मनाना छोड़ दिया। जो मेरे अपने हैं वो मिलेंगे ज़रूर मुझे, मैंने बेवजह बंद से लगाना छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, धन्यवाद।
1: क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। ओके तो आपका गजब होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपना ऑफ करते हैं ये अपने मैसेज को, जब लास्ट में छोड़ के जाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिकोड करते हैं सारी चीज़ें। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है यार। और बहुत प्यारे प्यारे लिसनर हैं हमारे मुरादाबाद में भी और मुरादाबाद के बाहर भी। सोनाली भिंद्रे पर पिक्चराइजेशन, साथ में अपने सिटी साहब यानी अन्ना भाई के ऊपर ही गाना पिक्चराइजेशन, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं मैं और आप। एक चीज आपको बता देता हूँ फटाफट से, अभी घड़ियां देखो अपने अपने कितने बज रहे हैं। क्या कहा, 9 बज गए आनंद। बिल्कुल यार 9 बज गए, तो मैं जल्दी से लौट कर आता हूँ।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद 7983153386।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: क्या मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय,
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: हाँ जी, दिस इज माई लास्ट आवर लेडीज एंड जेंटलमैन। 9:03 हो गए हैं। आज एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही प्यारी सी बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे होता है एंड शी इज वेरी वेरी अमेजिंग यार, बहुत ही प्यारी है ये। कुछ गाने प्ले कर रहा हूँ, अगर आप पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
6: निकलो कभी डार्लिंग चल देरी से।
5: एक और गाना लगाता हूँ, बहुत पॉपुलर है इनका गाना, ये वाला। चलो जी, अभी चलती रहेंगी ये बातें। फिलहाल आप सभी का वेलकम बैक है और ये जो अभी गाने शाने आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल आते रहेंगे आपके रेडियो पर। फिलहाल काम की बातें कर लेते हैं। 27 जुलाई हो गई है आज, बहुत ही प्यारी ब्रांड न्यू मॉर्निंग है। ऑफकोर्स मंडे है यार, मुझे लगता है कि मंडे ब्लूज ना हर किसी को हो ही जाते हैं क्योंकि सैटरडे आते आते बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, संडे जाते जाते आफत आ जाती है और मंडे को ऐसा लगता है हाय क्यों मंडे आ गया यार, आज फिर से काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात तो ध्यान से सुनो भाई, देखो मंडे जो होता है ना वो अपन की दाल रोटी वाला डे होता है। मेरी आपकी हम सभी की जो किक स्टार्ट होती है वो मंडे से होती है, मंडे मॉर्निंग से होती है ना। तो ऐसे हम इतना लाइटली मंडे को ले नहीं सकते हैं। बाय द वे मंडे जो है बहुत बूस्टर वाला डे, कहते हैं जो मन में आए वो कर लो क्योंकि मन का डे होता है मंडे, है जी। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप सोते ही रहो, ये तो बहुत गलत बात है यार। सोमवार की सुबह में अब मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जस्ट अभी आपने रेडियो ट्यून इन किया है तो आपका वेलकम बैक है जी। अच्छा, आज जो है 27 जुलाई है, एक बहुत ही प्यारी जो अदाकारा है इनका बर्थडे होता है। इनके कुछ गाने मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, बस आप ना आइडेंटिफाई करके मुझे मैसेज कर देना अगर आपको समझ में आ जाएगी ये कौन सी अभिनेत्री के ऊपर पिक्चराइजेशन है। कुछ गाने बैक टू बैक आएंगे, जैसे कि ये गाना इनका बहुत पॉपुलर है। अच्छा, अगला तो और भी ज्यादा श्रेया घोषाल की आवाज, ये जो गाना आ रहा है ना, हाय हाय क्या लगी थी यार इसमें। अच्छा, अगले वाले सुनाओ भैया जरा,
7: सजदा तेरा।
5: मंडे मॉर्निंग और ये गाना ना बजे तो कैसे होगा। एक और बजा दो यार इसी बात पे, हाय हाय। एक और छोटा सा,
7: मेरा कोई ना।
5: अब तो पकड़ लो यार। अच्छा, ये गाना सुनो फिर, ये वाला। चलो मैसेज करके मुझे बताना अभी जो आप ये गाने सुन रहे थे वो कौन सी अभिनेत्री के ऊपर पिक्चराइजेशन है, मैं कौन सी एक्टर की बात कर रहा हूँ। आज इनका बर्थडे होता है 22 को। देखो अगर आप 27 जुलाई की सुबह सर्च कर भी रहे हो ना गूगल पे तो मैं बता रहा हूँ आपको पाक चढ़ेगा, आप दिमाग लगा के बताओगे इतने अच्छे गाने। ऑफकोर्स यार ये आपको सुनने को मिलते रहते हैं इनके गाने हमारे रेडियो पर।
6: निकलो कभी डार्लिंग चलते।
5: चलो कुछ गाने इनके और अच्छे वाले मैं अभी प्ले करूंगा तो शायद आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये कौन सी एक्ट्रेस हैं, ये तो ये वाली एक्टर है यार, इनका एक गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉपुलर है, वो मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा। अभी आज की अपनी जो शो की शुरुआत है वो इनके गाने से करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा जो है इनका एक गाना है एंड ऑफकोर्स आपको मजा आ जाएगा इस गाना, ये वाला गाना सुन के तो यार बहुत ही प्यारा ट्रैक है। चलो आगे बढ़ते हैं और लौट कर आते हैं अभी थोड़ी सी देर में। फिलहाल एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। दोस्तों आज का सवाल बहुत ही मजेदार है, आपको क्या लगता है ऑनलाइन आप शॉपिंग ज्यादा पसंद करते हैं या फिर ऑफलाइन, और कौन सी शॉपिंग करने के ज्यादा एडवांटेज हैं? क्या लगता है ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा बढ़िया है या फिर ऑफलाइन शॉपिंग ज्यादा बढ़िया है? आप कौन सी ज्यादा करने में बिलीव करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन दोनों में क्या लगता है आपको, कौन सी चीज है जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? देखो ऑनलाइन का एडवांटेज तो है भाई, आप घर बैठे बैठे चीजें मंगा रहे हो ना, और ऑफलाइन में ये बहुत बढ़िया है कि आप जब चीजें खुद से खरीदने जाते हो मार्केट में तो आप चार चीजों को एक्सप्लोर करते हो, चार चीजें आपको पता लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग मी आपको क्या लगता है, यू कैन टेल अस 9837896896। मंडे की सुबह बड़ा सीरियस टाइप का क्वेश्चन हो रहा है आज की मॉर्निंग, बट मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस पे बात करना। आजकल क्रेज बहुत बढ़ गया है ऑनलाइन शॉपिंग्स का, है ना ऑफलाइन देखने मार्केट में बहुत कम लोग नजर आते हैं। वेल आपको क्या लगता है, ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं आप या ऑफलाइन शॉपिंग वाले हैं? आप दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आते हो और आपको कौन सी ज्यादा सूटेबल लगती है, ज्यादा बेटर लगती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? टेलिंग यू नो आप मुझे टाइप करके भी बता सकते हो, फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो, आप फोन करना चाहते हो या कॉल भी कर सकते हो 9837896896। टेल मी, मुझे फटाफट बताना जरूर यार, इंतजार कर रहा हूँ। और ये जो गाना चल रहा है ना, ये एक बहुत ही कड़क अभिनेत्री पर पिक्चराइजेशन है जिनका आज बर्थडे है। थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो बात करेंगे, फिलहाल आप कहीं मत जाओ, सुनते रहो आनंद को, यह है बिंदास मॉर्निंग।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूँ ना?
3: क्या देखो, मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो तो आप लोग अपना नाम जरूर लिखो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं लेकिन वो नाम नहीं लिख रहे हैं। तो मेरी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे अपना नाम जरूर लिखें। और अगर आप कहीं मुरादाबाद में ऐसी जगह पर है जहाँ आपको लग रहा है हल्का फुल्का ट्रैफिक है या फिर हल्का फुल्का जाम है, तो आप मुझे वो अपडेट कर सकते हो ताकि वहां पर कोई और ना फंसे, है ना? आप हेल्प करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप कहीं ऐसी रोड पे जहाँ आपको लग रहा है हल्की सी भी भसड़ है, तो प्लीज यू कैन अपडेट मी ऑन माई नंबर 9837896896।

0: विशाल मिश्रा आशीष कौर की आवाज जान बन गए। बहुत ही अच्छा गाना भी आपने एंजॉय किया। और बिल्कुल जी, आप हमारी जान और हम आपकी जान तो बन ही गए, इसमें तो कोई शक या इसमें तो कोई राय होनी भी नहीं चाहिए और ना ही है भाई साहब।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक।
0: आज का वेदर बहुत ही अच्छा है एंड ऑफ कोर्स यार सूर्य चाचा जो है सूर्य देवता ऐसे लग रहा है जैसे भाई आज मतलब सबको जो है गर्मी से परेशान कर देंगे। इतनी भयंकर वाली गर्मी मतलब जो है देखने को मुझको लग रही है। पाजी आज जो है ना मौसम क्या कह रहा है, जरा इस पे एक नजर मैं डालता हूँ फटाफट से।

हाँ जी, तो फिलहाल 31 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है करंट राइट नाउ। अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ मौसम और ह्यूमिडिटी जो है पाजी अभी कितनी दिखा रहा है, 74, यानी कि गर्मी जो है वो ऑफकोर्स यार आपको आज लगने वाली है। और मुझे लग रहा है कि गर्मी ना कल भी थी आज भी थी, गर्मी हो ही रही है, बारिश जो ये हो रही है ना, ये बारिश नहीं हो रही है, ये सिर्फ गर्मी को और बढ़ा रही है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चलने वाली है, हवाएं जो है बाजी बिल्कुल ओके ओके वाली रहेंगी, बहुत ज़्यादा तेज वाली भी नहीं चलेंगी और बहुत ज़्यादा हल्की वाली भी नहीं चलेंगी। अब आप समझ सकते हैं यार। एनीवेज आगे बढ़ते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, टेम्परेचर आगे जाके 36 डिग्री पहुंचेगा, यानी कि गर्मी का आलम जो है और ज्यादा रहने वाला है मेरे दोस्त। तो पानी पीते रहना यार। देखो अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो ना तो ये आपको प्रॉब्लम में लेकर जाने वाली है ये हैबिट। एग्जैक्टली देखो यार, मेरे को ना ऐसा लगता है कि सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप सोचते हैं तो ये चीज जो है ना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। एग्जैक्टली कैसे, थोड़ी देर में बात करेंगे इस पे। आज मंडे की सुबह है, चेक योर लक विद डॉक्टर राखी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने फैमिली के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, जो भी आपको लगता है व्हाटएवर, तो थोड़ी सी देर में मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़ेंगी दिल्ली से। हर मंडे हमारे साथ जुड़ती हैं डॉक्टर वाई राखी जी। सो आज मंडे है, ऑफकोर्स आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी जो भी आपको लगता है कुछ आपको जानना है अपनी स्टडी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, जो भी आपको लगता है मेरे को पूछना है आनंद, तो प्लीज़ अपना नाम और अपना नंबर मेरे को व्हाट्सएप करो, या अपना सवाल जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो भी आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। जरासी देर में हमारे साथ लाइव होंगी, फिर हम उनके साथ बातचीत करेंगे एंड जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम उनको यहाँ पर शॉर्ट आउट करेंगे। तो फिलहाल आप जो ये मैसेज कर रहे हो उसके लिए आपका दिल से थैंक यू यार, सच में सच अमेजिंग मैसेजेस, बहुत ही वंडरफुल मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। मैंने पूछा था कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं या ऑफलाइन, ढेर सारे लिसनर्स ने मुझे मैसेज किए हैं। ये हमारे पास मैसेज पहुंचा है सुनीता जी का, ये लिखती है आनंद जी देखिए मैं ऑफलाइन शॉपिंग में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन शॉपिंग में हमें वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो एक्चुअली हमें ऑनलाइन में नहीं लगती हैं। मेरे पास यहाँ पर प्रणव का मैसेज आया, इन्होंने लिखा है हाय आनंद, दिल्ली रोड पे मैं हूँ इस वक्त और तो आपको सुन रहा हूँ, और भाई आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं जो हूँ ना ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, ऑफलाइन पे मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पे मंगाओ कुछ निकलता कुछ है भाई, इसलिए मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। ओके थैंक यू अपना मैसेज देने के लिए। एक और मेरे पास व्हाट्सएप पहुँच रहा है, हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज निधि। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? निधि मुझे मानसरोवर कॉलोनी से मैसेज करती हैं, इन्होंने लिखा यार आनंद ऑनलाइन शॉपिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर आप मार्केट जा सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो मैं तो आपको कहूंगी कि आप ऑफलाइन ही ज्यादा शॉपिंग को जो है

इंपॉर्टेंस दे। और बट कभी कभी जब टाइम नहीं होता और हमारे पास बहुत सारी चीजें करने को होती है, उस टाइम पे हमें ऑनलाइन की सुविधा बिल्कुल सही रहती है हमारे लिए। ओके थैंक यू। एक और व्हाट्सएप पहुंचा है। हाय कैसे हाल चाल है आनंद जी, व्हाट्सएप बरी, आई एम गुड यार, थैंक यू सो मच फॉर आस्क मी, आई होप आप भी अच्छे होंगे यार। देखो सारी बातें कर लेते हैं बट अपना नाम नहीं लिखते, इसलिए मैं कहता हूँ यार अपना नाम तो लिख दिया करो पाजी, ऐसे मत किया करो यार। बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आप भी मुझे बता सकते हो। आज मंडे मॉर्निंग में आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कैटेगरी में आते हो या ऑफलाइन शॉपिंग कैटेगरी, मतलब आप कौन सी वाली शॉपिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, आपके लिए कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑफलाइन वाली या ऑनलाइन वाली। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो क्यों, उसका एडवांटेज क्या है, उसके फायदे क्या है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके क्या आपको फायदे हैं नजर आते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं आज की मॉर्निंग। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात रेडियो पर साझा करी अपने तमाम देशवासियों के साथ, और उन्होंने क्या कुछ खास मुद्दे पर बात करी वो डेफिनेटली एक बार मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ थोड़ी देर में लौट कर आऊंगा तो। एंड उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है इस टाइम पे, येस ऑफकोर्स आपको पता है अभी जो चल रहा था, उसके बाद पीएम साहब ने कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर किए। एंड आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 24 ये कितना था, हाँ 24 आवर्स में, यस 24 घंटे के अंदर ये जो है इतना ज़्यादा व्यूज एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब बन जाने वाला ये जो इनका वीडियो था वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बहुत सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा लोग फैंस पसंद कर रहे हैं इनके वीडियो को। एंड इसके बाद इनके फॉलोवर्स भी बढ़ गए हैं, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड इनका ये वीडियो मतलब इतने करोड़ों मिलियन व्यूज पहुँच गया कि भाई मानना पड़ेगा यार, एक रात में ये जो है रिकॉर्ड बन गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। सोच सकते हैं आप 24 घंटे के अंदर एक वीडियो इतना ज़्यादा देखा गया, इतना ज़्यादा देखा गया कि ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है। क्या बात है यार, मतलब कुछ चीज़ें ना बड़ी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। एंड अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। कौन सी बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, सेलिब्रिटी का बर्थडे भी चल रहा है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इधर मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, इधर मैं आपको अपडेट भी दे रहा हूँ, गाने भी चल रहे हैं, और आप जो ये प्यारी प्यारी अपडेट्स पहुँचा रहे हैं लोकल वाली, ये भी मैं डेफिनेटली शामिल करूँगा, तो आप जुड़े रहिए। सही थोड़ा सा चैलेंज तो होता है यार, क्योंकि देखिए सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, उन चीज़ों को जो हम बोलते हैं ना उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड भी करना चाहिए, है ना।

की वीडियो भी एक चीज बहुत ट्रेंड कर रही है आज की सुबह, मैं वो डेफिनेटली लौट के आता हूँ तो बताता हूँ आपको। अभी मैं सर्च कर रहा था तो मैंने जब रिसर्च किया तो मैं कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये ना हर किसी की फेवरेट लिस्ट में ऐड हो गई है। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ आपको जानना है, थोड़ी देर में बताता हूँ। एक फैक्ट भी होगा उसमें, फन भी होगा, आपको बड़ा मजा आएगा। अरिजीत सिंह एंड नेहा कक्कड़, एंजॉय करो इस गाने को।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। We'll be right back.

0: बर्थडे की सुबह अगर आप अपने साथ रुमाल लेके भी चलते हैं तो आज हो सकता है आपका काम बनते बनते पाजी बन ही जाए। वेरी गुड मॉर्निंग है आरजे आनंद को सुन रहे हैं आप। कैसे हालचाल है मुरादाबाद? इज वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, 9:29 हो गए स्टेशन क्लॉक में, 27 जुलाई की तारीख हो गई। कैसे जुलाई चला गया यार, पता नहीं चल रहा। मतलब कुछ ही दिन बचे हैं यार। वैसे भी सावन स्टार्ट होने वाला है ना, तो मिलकर बोलेंगे हर हर महादेव। मतलब आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज जो सावन का महीना होता है ना, एक तो चारों तरफ ग्रीनरी होती है, ऊपर से जो कांवड़िए देखने को मिलते हैं, अंदर से जो पॉजिटिविटी आती है ना, और जो घूस बम्स आते हैं, मैं आपको शायद शब्दों में ना बता पाऊं। वेल, एक बार फिर से आप सभी का खुली बाहों के साथ स्वागत, अभिनंदन करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम जो है स्वीकार हमारा करें यार आप। और बाकी आप लोग जो मैसेज कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ अब जुड़ चुकी हैं इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राखी जी, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। एंड इतने सारे मैसेजेस आपने कर दिए, मैं किस किस को सिलेक्ट करूं यार, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। लेकिन जोरदार तालियां ओरिजिनल वाली। इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मतलब ये तो दिखाता है कि मुरादाबादी सच में अपनी लाइफ को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और वो लोग कितने हैप्पी हैं अपनी लाइफ को जानने के लिए। बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम का वेलकम करेंगे। जय माता दी, वेलकम टू मुरादाबाद। कैसे हैं आप राखी माँ?
1: जय माता दी, सुबह की राम राम।
0: आपको भी सुबह की राम राम। आपकी आवाज सुन ली तो और भी ज्यादा मन प्रफुल्लित हो गया सुबह सुबह।
1: कैसे हो आरजे आनंद?
0: मैं बहुत ही वेरी वेल, आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी हैंडसम। आप बताइए।
1: बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त, झकास, बिंदास।
0: मुरादाबाद के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे सुबह सुबह? तमाम लोग आपको गाड़ियों में सुन रहे हैं सुबह सुबह।
1: गुड मॉर्निंग मुरादाबाद। सबसे पहले मैं जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं उनको एक बात कहना चाहूंगी, जितनी भी बच्चियां मुझे सुन रही हैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगी कि हर साल अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को एक तिथि होती है जो कि आज है, उसे जया पार्वती व्रत कहते हैं। इस व्रत पर विजय पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इस व्रत पर गढ़ गौर मंगल गौरी व्रत की तरह से सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती हैं। मैं आपको बता दूं कि इस दिन व्रत रखने से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। प्लस आप अगर व्रत नहीं भी रख पाती हैं तो सुहाग का सामान अपनी सहेलियों को दें, फ्रेंड्स को दें और माता पार्वती को दें। और आप अनमैरिड हैं, किसी से प्यार करना चाहती हैं, तो आज माता पार्वती को जाकर अगर आप सिंदूर अर्पण करती हैं तो निश्चित ही आपका विवाह उनसे होगा जिनसे आप विवाह करना चाहती हैं।
0: क्या बात है, आपने तो आते ही एकदम सोने पे सुहागा वाली बात बता दी है, बहुत बढ़िया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है राखी माँ, और ये लखनऊ से आपसे बात करना चाहती है। हेलो, जय माता दी। मैम कैसे हैं आप?
2: जय माता दी माँ।
1: जय माता दी बेटा। मैं वैसे आपको बता दूं कि मैं अगस्त के महीने को छोड़कर सितंबर में लखनऊ आ रही हूं।
0: अरे वाह, क्या बात।
2: माँ आपने बोला था कि जो विश मांगोगी जल्दी पूरी, भोलेनाथ से पहले ही दिन मेरी आज विश पूरी हो गई।
1: अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: मतलब लग नहीं था कि हम आपसे बात करें, मेरा ये सपना था कि हम आपसे बात करें। एक साल होने वाला है आप,
1: तुम जो चाहोगी वो सब मिलेगा, बस विश्वास रखना।
2: माँ पर पूरा विश्वास है।
1: अरे आप पर विश्वास रख। मुझ पे बहुत बहुत धन्यवाद, पर कर विश्वास, तू है शिव का दास, शिव पर विश्वास रखो।
2: माँ जब आप लखनऊ आएंगी तो कोशिश पूरी करेंगे कि हम आपसे मिलने आएंगे।
1: अच्छा बताओ, क्या सवाल है तुम्हारा?
2: माँ पर क्या पूछ, बताई नहीं तो आपकी आवाज सुन के, आपको सुन के बहुत दिल बहुत खुश हो गया मेरा।
1: खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और एक उपाय बता देती हूँ, पूरे सावन महादेव पर दो इलायची अर्पण करो, जो चाहोगी वो मिल जाएगा। ये जादुई उपाय है, इसे करने से हर कोई कर सकता है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।
2: जी धन्यवाद मैम। बस आपने व्रत बोला था तो हम व्रत पूरे रखे, ऐसे मेरा स्वास्थ्य नहीं बढ़िया है, क्या हम रखे?
1: बिल्कुल मत रखो, सबसे पहली जिम्मेदारी आपका शरीर है, किसी भूखे को रोज खाना खिला दो, वो व्रत से ज्यादा उत्तम है।
2: जी जी धन्यवाद माँ। अभी तक तो मैंने व्रत रखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा था अगर आपसे बात नहीं होगी तो पूरे महीने रखेंगे।
1: नहीं, व्रत छोड़ दो, और किसी भूखे को जिस दिन व्रत रखते हो उस दिन भोजन करा दो,

0: मेरे पापा की पेन रहती है बहुत कमर में, उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूँ ताकि मेरे पापा स्वस्थ हो जाएं?
1: महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ो पापा के सामने बैठकर, और महादेव पर सरसों का तेल चढ़ाओ, आपके पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे।
0: वेरी नाइस। एक और मैसेज आ गया है, आनंद जी प्लीज मैम से पूछिएगा कि मुझे सिर्फ यही जानना है कि अपने जीवन में अगर मुझे खुशहाली चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो मैं सावन में क्या एक उपाय कर सकती हूँ?
1: लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाओ, पेड़ पौधों की सेवा करो, महादेव के सामने बैठ के राम नाम का जाप करो।
0: क्या बात है। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लेकिन मैं कुछ ही मैसेज शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर प्रेरणा का, इन्होंने लिखा है सावन में ग्रीन चूड़ियाँ क्यों पहननी चाहिए, क्या अनमैरिड लड़कियाँ पहन सकती हैं?
1: अनमैरिड, मैरिड, भागन, विधवा, आपको अगर आपकी औलाद है और आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी हो, फौजी की बीवी हो, तो वो तो सदैव अखंड सौभाग्यवती महिला है, क्योंकि उस उनके हस्बैंड ने अपनी जान देके लाखों लोगों की जान बचाई है देश की सेवा में, तो ऐसी औरत तो कभी विधवा होती ही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, हम सब पार्वती माँ की सखियां हैं, पार्वती माँ धरती पर आई हैं, अपने मायके में आई हैं, केवल हरी चूड़ी नहीं पहनी जाती, 16 सिंगार किया जाता है, हरे कपड़े पहने जाते हैं, हरी बिंदी लगाई जाती है, क्योंकि कुदरत में चारों तरफ नजर उठाकर देख लो, हर तरफ हरियाली है, इसे हरियाली मिलती है, इसलिए हरी चूड़ी पहनी जाती है, क्योंकि हम सब पार्वती माँ के साथ खुश हैं, और उनकी तपस्या, जितनी तपस्या तो हम अपने पति को पाने के लिए कर नहीं सकते, लेकिन उनका आशीर्वाद मिल जाता है, हम उनके जैसा रूप धारण कर लेते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक और मिस अनंत रस्तोगी मुझे पूछ रहे हैं कि मेंस क्या कर सकते हैं सावन में, प्लीज पूछिए ना राखी जी से। ये सवाल बड़ा अलग ही था।
1: अपनी को सजा के सवार के रखें, श्रृंगार करवाएं, एक पति की पत्नी उसका वैभव गौरव होती है, और एक पति क्या कमाता है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी पत्नी के पैरों को देख के पता चलता है। लेके जाइए, मेहंदी लगवाइए, चूड़ियां पहनवाइए, बिछुए पहनवाइए, पायल दिलवाइए, हरी साड़ियां दिलवाइए, रोज सजने सवरने को कहिए उनको, उनके साथ रोज मंदिर जाइए, उनके पास सावन में ज्यादा काम होता है, घर में उनके काम में उनकी मदद करवाइए, ताकि वो अपने काम को जल्दी जल्दी निपटा सके।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच राखी माँ, आप जुड़ी, आपने इतना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। और चलते चलते कुछ अगर आप कहना चाहें, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं जाते जाते हमारे रेडियो के माध्यम से।
1: इस बार का सावन हर बार के सावन से कुछ अलग है, इस बार का सावन महादेव को जल्दी प्रसन्न करने वाला है, स्वर्ण नक्षत्र से शुरू हो रहा है, बृहस्पतिवार से शुरू होकर शुक्रवार पर खत्म हो रहा है, तो आपके पास धन का आगमन बहुत हो सकता है, और अगर आप पैसे को लेके परेशान है तो अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिविटी, जलन, बुराई और लोगों से जलना बंद कर दीजिए, सबको गले लगाइए, मतलब केवल भोले की पूजा करना नहीं है, भोले जैसा मन रखना भी है, अंदर से विष को खाली करोगे तभी अमृत भरेगा, नफरत को लेके चलोगे, जलन को लेके चलोगे, जियो और जीने दो, बहुत जरूरी है, अगर नफरत को लेकर चलोगे तो नफरत मिलेगी, मुस्कान को लेकर चलोगे तो मुस्कान मिलेगी।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने मंडे को इतना अच्छा बना दिया है, सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा आई एम श्योर आपकी रेमेडी सुन के। बाकी आपके इंस्टाग्राम डेफिनेटली मैं बताने वाला हूँ। थैंक यू राखी माँ, लवली टॉकिंग टू यू, नेक्स्ट मंडे फिर से आपसे जरूर बात करेंगे।
1: बिल्कुल जरूर करेंगे, और अगले सावन जब हम अगले मंडे बात करेंगे तो सावन का पहला सोमवार।
0: अरे वाह,
1: मैं चाहूंगी कि एक अच्छा सा भजन आप अभी इसी सोमवार को चला दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: महादेव का, कि बस सुनकर जो है आनंद की अनुभूति।
0: अरे वाह, आपने मेरा नाम लेके और मेरे को जो है मजा दे दिया, थैंक यू राखी माँ, मुझे आनंद आ गया फिलहाल, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे राखी माँ,
1: गॉड ब्लेस यू बेटा,
0: थैंक यू, बाय बाय।

0: करो।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
0: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
0: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
0: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: था मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय,
6: बिंदास मॉर्निंग
3: सुनिए। बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: हाँ जी, मंडे की सुबह ढेर सारे मैसेज बैक टू बैक मेरे पास आ रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हो यार। सच में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आप लोगों के आए, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच यार। इतने अमेजिंग मैसेजेस किए आपने। हाँ बिल्कुल, ये गाना आएगा, डोंट वरी। लेकिन मैं यहाँ पर आपका थैंक यू करना चाहूंगा ताली के साथ। सच में यार, सब लोगों ने बहुत प्यारे मैसेज किए हैं। हाय आनंद, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम शिखा है। हाय शिखा, गुड मॉर्निंग। हाय शिखा, मैं समझ गया। ओके, हाय मानसरोवर से इनका मैसेज आया। लेकिन आनंद यार, मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा कम बिलीव करती हूँ यार। ऑफकोर्स हम इंडियंस हैं, हमारी ना पता नहीं क्या एक USP बन गई है कि हर किसी को ऑनलाइन ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड फॉलो करना है। बट मैं सच बता रही हूँ, अगर बाजार में नहीं जाओगे तो जो बाजार में दुकानदार है उनका क्या होगा यार, ये तो सोचो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आने वाला टाइम फेस्टिवल का है तो प्लीज अपने लोकल से जरूर खरीदारी करें। जो लोकल मार्केट है वहां पर जाएं, वहां से शॉपिंग करें, बहुत जरूरी है। लोकल लोगों का भी तो ध्यान रखना है यार। हाँ बहुत ही अच्छा काशिका, थैंक यू सो मच, सच अ वंडरफुल मैसेज। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? रिश्तों के बाजारों में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल का और जुबान का साफ होता है। यार बात तो बिल्कुल सही कही आपने, मतलब एकदम कड़क बात बोली है। थैंक यू सो मच मिस्टर मित्रपाल जी, मेरे साथ जुड़े आप। ये उस्मान टेलर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही कमाल के इंसान। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की सुबह। और ऐसे इतने सारे मैसेज आप लोग कर रहे हैं ना, मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ यार।

0: देखो यार गानर, मैंने इसलिए वापस बैक कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने आया हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करनी चाहिए, और बिल्कुल मैं डेफिनेटली करूँगा ही। बट अभी जो आपने यहाँ पर एक मैसेज करके मुझे ये अपडेट दी है मुरादाबाद से जुड़ी, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और बाकी ये किसी ने मुझे बताया कि आपके यहाँ पर जो एड्स आते हैं सर, इससे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपके एडवर्टीजमेंट से हमें काफ़ी कुछ पता लगता है कि शायद में कौन सी चीज़ क्या है। बिल्कुल जी, डेफिनेटली हमारी भी कोशिश होती है कि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इनसे आपको सारी वो अच्छी चीज़ें पता लगती हैं, कहीं ना कहीं जो अच्छी सर्विसेज हैं या जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे ऐड के थ्रू आप तक पहुंचती हैं और आप वहां तक पहुंचते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गौरव जी ये मैसेज करने के लिए मेरे पास। और ये रिजवान साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, मैं इनका मैसेज ज़रूर शामिल करूंगा। लेकिन मैंने आज आपसे एक बहुत प्यारा सवाल पूछा था, मैंने आपको कहा था आप मुझे मैसेज करके ये बताइए ज़रा कि आज एक बहुत ही प्यारी अभिनेत्री का बर्थडे है और उस पर ढेर सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, उसके लिए भी आपका दिल से थैंक यू। अब एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आप मुझे मैसेज के थ्रू देंगे, क्योंकि 9:48 हो रहे हैं और बैक टू बैक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब जो सवाल है जो सीरीज है उसको भी तो फॉलो करना है ना। तो मैं अभी एक कड़क सवाल के साथ वापस आ रहा हूँ।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हाँ जी बिल्कुल जी, नाचते रहिए, बहुत ज़रूरी है। और अभी आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यार, कि देखो सुबह सुबह है, अच्छे ठंडे दिमाग के साथ बाहर निकलिए और एक अच्छी सोच के साथ बाहर निकलिए। कल के बारे में मत सोचिए, आज के बारे में सोचो, आज का दिन है तो इसको अच्छा बनाओ, इसको रॉकिंग बनाने के लिए जो है सही डायरेक्शन में काम करो यार। देखो जब सही चीज़ें करोगे तभी सही रिजल्ट भी मिलेगा, है ना, मेरा सिर्फ इतना से कहना है। और अभी जो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं उसके लिए भी मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, कि सच में आप लोगों ने बहुत प्यारे मैसेज किए हैं, नो डाउट। इसके लिए तो आपको क्रेडिट मैं डेफिनेटली देकर जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एक गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा सा। एंड ये गाना जो है ना, ये आपको पकड़ना है बेसिकली। अभी जो मैं यहाँ पर गाना प्ले कर रहा हूँ, ये कौन सा गाना है यही आपको मुझे मैसेज करके बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रैक है, ये आपको बताना है गाना कौन सा है, बहुत ही ढिंचैक सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा गाना है। चलो 3 2 1 गो स्टार्ट, पकड़ो फटाफट से इसको, यहां से शुरू करते हैं सिलसिला। बता दो यार, बहुत अच्छा गाना है। मैसेज करना है आपने, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मंडे की सुबह है, बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही ढिंचैक नंबर है, आपको बस बताना है कि ये गाने का नाम ये है आनंद।

व्हाट्सएप कर दो अगर आपको पता लग गया है क्या है सही जवाब। मैं इंतजार कर रहा हूँ 9837896896 पे। फटाफट आप मुझे सही जवाब पहुंचा दोगे तो बहुत मजा आएगा। देखते हैं आप में से कौन बनेगा आज हमारे शो में सुपरस्टार।

0: बहुत ही बेहतरीन गाना भी आपने सुन लिया भाई साहब, बहुत ही मजा आ गया। सच बता रहा हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया गाने सुन के सबको मजा आ जाता है। इतने अच्छे अच्छे गाने आपको कहाँ सुनने को मिलते हैं? आरजे आनंद के साथ मिलते हैं आपको बिंदास मॉर्निंग में सुनने को। हाँ जी, कैसे हालचाल हैं? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
2: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
3: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: हाँ जी, और कल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात करी, रेडियो पर अपने मन की बात साझा करी। 136वें एपिसोड में उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जो अपील की है, उन्होंने कल जो है इस मन की बात के माध्यम से तमाम देशवासियों को, पूरे देशवासियों को उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि भैया आने वाला जो टाइम है, आपको पता है 15 अगस्त का है, इंडिपेंडेंस डे का है, तो उस पर जो है सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि हर तिरंगा अभियान को जो है पार्टिसिपेट करना है इसमें, और अपनी छतों पर अपने घरों में आपको एक बार फिर से तिरंगे को लहराना है। तो ये बहुत ही अच्छी जो है उन्होंने सकारात्मक बात कही, और भी तमाम सारी बातों पर जो है उन्होंने कल चर्चा करी अपने मन की बात एपिसोड में, और इवन छोटे छोटे मुद्दों पर जो है उन्होंने कल चर्चा करी। अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा लगा मुझे उसमें यही चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये जो अब इंडिपेंडेंस डे आने वाला है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। आगे बढ़ते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आनंद को सुन रहे हैं, मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा है आज की सुबह, ये गाना आपको बताना है।

कौन सा सॉन्ग है यही आपने मेरे को मैसेज करके बताना है। अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं पता है तो यार अब फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ यार, ये तो फिर आपको दिमाग लगा के बताना ही पड़ेगा। वेल, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं अभी एक और खबर जो है अपने उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। हाँ जी, आपको बता दें सोशल मीडिया आज की आवश्यकता है। अच्छा कंटेंट डालिए, फेक अकाउंट के बारे में लोगों को बताएं, देश जो है हमारा अच्छा रहे उसके लिए भैया क्या करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जितनी भी सोशल साइट्स हैं वहां पर अच्छा कंटेंट डालने की अपील की है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। हाँ जी, तो उन्होंने कहा है भैया सोशल मीडिया जो है वो हमारे आज के युवाओं की नीड है, आवश्यकता है, बट उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, उसमें अच्छी चीजें डालिए ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज डिलीवर हो सके। और बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने कहा है, बिल्कुल यार सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी शेयर नहीं करना है, कोई भी चीज को डालने से पहले प्लीज उसे आइडेंटिफाई कीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताते चलें, आप विदेश पार्सल भेजना हुआ आसान, घर बैठे आप भेज सकेंगे स्पीड पोस्ट से और अपना पार्सल जो है बहुत इजीली जो है अब आप पहुंचा पाएंगे। हाँ जी, डाक विभाग की एक नई सुविधा शुरू हो गई है भाई साहब। अगर आप अपने पार्सल को विदेश भेजना चाहते हैं तो अब जो है आपके लिए ऑनलाइन बुकिंग के बाद जो है डाक विभाग के कर्मचारी आपके घर से आपका पार्सल लेंगे और आपका पार्सल उठाएंगे और सीधा वहां पहुंचाएंगे जहां आप भेजना चाहते हैं। देखो भाई, तमाम सारी चीजें आपको बताते रहते हैं, क्या चल रहा है अपने देश विदेश में ये सब कुछ आपको पता लगता है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एक और चीज आपको फटाफट बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है भाई साहब बहुत सारी चीजों को एकदम कड़क तरीके से तैयार किया है। अपने मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद में भी बहुत अच्छी से तैयारियां चल रही हैं, आने वाली 30 जुलाई से जो है सावन की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में जो है हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको लेकर बहुत सारी चीजों को जो है एकदम कड़क तरीके से उनका ध्यान रखा जा रहा है। और भैया इसी दौरान आपको बता दें 24 घंटे जो है कंट्रोल रूम चलने वाला है, सारी चीजों पर जो है कड़क नजरें रखी रहेंगी हमारी गवर्नमेंट, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब ये गाना सुनते हैं और हम बताते हैं कौन है हमारे शो का लकी विनर।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
5: अब क्या तोड़ दिया नालायक? सॉरी
6: नालायक बेटा।
7: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

मंडे की सुबह और ये गाना। मजेदार था यार, नो डाउट, मजा आ गया इस गाने को सुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें भाई साहब, ओपन एआई ने चैट जीपीटी में एक ऐसा हेल्थ फीचर लॉन्च किया है एंड अब जो है यूजर्स मेडिकल रिपोर्ट, लैब टेस्ट और एप्पल हेल्थ डेटा के लिए एआई की हेल्प ले सकेंगे और आसान भाषा में इसको जो है आप समझ सकेंगे। कंपनी ने साफ कहा है कि ये फीचर कोई डॉक्टर का विकल्प नहीं है, लेकिन ये आपकी हेल्थ से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको काफ़ी आपके लिए ईजी कर देगा, आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। सो ओपन एआई ने अभी जो है चैट जीपीटी में एक नया हेल्थ फीचर जो है वो अपडेट कर दिया, एक नया हेल्थ फीचर जो है, एक ऐसी फैसिलिटी जो है लॉन्च की है जो अभी सिर्फ अमेरिका में अवेलेबल है। हाँ जी, अभी सिर्फ ये अमेरिका में भी अवेलेबल है एंड वहाँ पर 18 साल से और उससे ज़्यादा के लोग जो हैं वो इस ये जो अभी नया फीचर आया इसका लाभ उठा सकते हैं, सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए। ये अभी इंडिया में ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि देखो यार ये चीज़ अगर वहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर भी हो सकती हैं। ऑफकोर्स यार, बिकॉज जब से ये चैट जीपीटी एआई आया है ना, बहुत सारी चीज़ें इंडियंस की भी ईजी हो गई हैं यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने आपसे कितना सवाल सिंपल वाला पूछा था ना आज की सुबह, और तमाम सारे लोगों ने मैसेज किया

थैंक यू जी, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबसे पहले हमारे पास सही जवाब आया है सुखी जी का। सुखी जी ने एकदम राइट आंसर दिया है। आपका नाम सुखी बहुत मतलब यू नो अलग सा डिफरेंट सा साउंड कर रहा है सुखी भाई। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन। आज की सुबह आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। एंड गाने के लिरिक्स क्या है चलिए आपको सुना देता हूँ यार। यस, मरजानी मरजानी सुखविंदर सिंह एंड सुनिधि चौहान की आवाज।

0: एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर। जोरदार तालियां सुखी जी के लिए। 8921 नंबर की 4 डिजिट। बहुत बहुत बधाइयां जी, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए थे, आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। सच ए वंडरफुल मैसेज, सच ब्यूटीफुल मैसेज यार, बहुत अच्छे मैसेज करते हैं।
1: राधे राधे, राधे राधे जी, आनंद जी आपने जो म्यूजिक चलाया हाँ है, उसका गाना है मर जानी बिल्लू बार्बर का है, शाहरुख खान पर फिल्म।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: हीरोइन थी लारा दत्ता
0: जी, करीना कपूर भी थी मैम, लारा दत्ता तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल बेबो जरूर है इस गाने में। चलिए गाइज, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे मैसेज करते हैं आप लोग, मजा आ जाता है। और एक और वॉइस नोट मेरे पास पहुंचा है, जरा इनको भी सुनते हैं जी।
2: नमस्कार, नमस्कार। मैं हूं भूपी शर्मा, नगर पंचायत बागबड़ा से। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, जिसे सुनना पड़ता है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। बचाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और हाँ आनंद भाई का साथ निभाते रहिए। सुप्रभात, आज का विचार, प्राकृतिक का कालचक्र और नियम देखिए। बचपन समय है, शक्ति है लेकिन पैसा नहीं है। युवावस्था शक्ति है, पैसा है लेकिन समय नहीं है। बुढ़ापा पैसा है, समय है लेकिन शक्ति नहीं है। प्राकृतिक का कोई जवाब नहीं, इसलिए प्रतिदिन हर्ष उल्लास और खुशी से अपना जीवन बिताएं। राधे राधे, मैं भूपी शर्मा, नगर पंचायत बागबड़ा से। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज आरजे आनंद के साथ। नमस्कार, राधे राधे
0: जी। आपको भी राधे राधे, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत मजा आया। चलिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, कल सुबह ढेर सारी बातचीत फिर से लेकर आऊंगा, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन होंगी, नई बातें होंगी, नए गाने होंगे, नई एनर्जी होगी। जाने से पहले ये देखिए, ईदगाह गेट से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल अंसारी लिखते हैं, हैव अ लवली डे आनंद जी, कैसे हालचाल हैं, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुनीति है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सुरेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं सही जवाब के साथ, हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है। रवि सैनी लाइन पार से जुड़ रहे हैं राइट आंसर के साथ, हेलो हाय बबलू जी, मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं प्रीति जी। राधिका जुड़ चुकी मेरे साथ बरेली से, हाय गुड मॉर्निंग, मरजानी दिस इज राइट आंसर आनंद भाई। मयंक शर्मा पीतल बस्ती से जुड़े हैं, जय श्री राम पहुंचाते हैं। और हमारे साथ रिजवान खान साहब जुड़े हैं ग्राम बीजना से, लिखते हैं मैं तो ऑफलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करता हूं, क्योंकि वहां क्वालिटी पता चल जाती है, मगर जब आप ऑफलाइन चीज़ें आपको नहीं मिलती है तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है। जैसे यार हाय, ये जो आपने लिखा है ना रिजवान भाई, क्या बात है, मतलब दिमाग लगा के जवाब दिया है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई जान, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं, आज तो बहुत गर्मी है आनंद जी मुरादाबाद में, हां जी इसलिए तो कह रहा हूं पानी पीते रहो विकी भाई। नासिर हुसैन साहब, आज आपका बर्थडे है, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, आप अपना बर्थडे मनाते हैं बॉलीवुड की परम सुंदरी यानी कीर्ति सनन के साथ, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे भाई, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, और रेडियो से जो आपका प्रेम है वो लगातार ऐसे ही बना रहे, एंड यू आर ऑल्सो वेरी वेरी हैंडसम बॉय नो डाउट। और ये जो आज आपने फोटो शेयर की ना, एकदम चकाचक लग रहे हो यार आप, थैंक यू सो मच नासिर भाई, हमारे पूरे एफएम इंटायर फैमिली की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, राजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हमारे साथ तबस्सुम जुड़ी हैं, तारिक भाई जुड़े हैं, एंड हमारे साथ तिशिका जुड़ चुकी हैं, और साथ में परी भी जुड़ चुकी हैं आज की मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर मैसेज करते हो आप लोग यार। हाय गुड मॉर्निंग, सूरज की पहली किरणें तुझे छू जाए, मेरी हर दुआ तुझ तक पहुंच जाए, दिल से बस यही चाहत है कि मेरी खुशियां तेरे दिन को और भी खास बनाए। क्या बात है जी, बहुत ही प्यारी लाइन है ये, कश्मीर से मैं मैसेज पहुंच रहा है महराज साहब का। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, राधे राधे, कैसे हाल चाल है, माय नेम इज पूजा फ्रॉम नैनीताल, हाय गुड मॉर्निंग, लिखते हैं सुबह का उजाला अपनों का सहारा, हर पल बने खुशियों का किनारा, वेरी वेरी नाइस लाइन। गुड मॉर्निंग जी, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं चमन लाल साहब पुतली घर रोड से, रणवीर जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज की मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है, क्या बात है यार, थैंक यू। दुर्गेश सैनी भी जुड़े हैं मेरे साथ, थैंक यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव आज की मॉर्निंग, आप लोगों ने बहुत प्यारे मैसेज किए हैं। देखो अभी भी व्हाट्सएप पहुंच रहे हैं, हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शशांक है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है भाई, नेक्स्ट मंडे ट्राई करियो। पल्लवी हमारे साथ जुड़ चुकी है आज की सुबह, तारिक भाई का मैसेज वंस अगेन आ गया है। जुल्फी भाई जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप, तुसी जा रहे हो, हां जी साडा टाइम हो गया जी। चलिए गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बाकी अगर आज अपना बर्थडे मनाते हैं तो आपको आपके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप मस्त रहिए, झकास रहिए, और हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। आप चाहे ऑफिस जा रहे हैं, अपने घर पे, आप जो भी कर रहे हैं करते रहो यार, बाकी खुश रहो, मस्त रहो, झकास रहो, और जिंदगी में जहां भी रहो आबाद रहो, बस अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहो। लाइफ में एक चीज जिसको आपने जरूर फॉलो करना है वो है पॉजिटिविटी। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, उतनी चीजें आपकी बेहतर से बेहतरीन होंगी। हां जी, आज 27 जुलाई को मिसाइल मैन से जाने वाले जो जिनका नाम है बहुत ही पॉपुलर, एक ऐसा नाम जिनके बारे में याद करना तो बनता है, आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, आज उनकी जो है पुण्यतिथि है, तो हमारे पूरे FM की ओर से हम भावभरी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करेंगे, और बस यही कहेंगे कि यार जिंदगी में जो महान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा कहा है, उनकी बातों को फॉलो करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। गौरव टेलर जी जुड़ गए नवीन नगर से, लिखते हैं आनंद जी कैसे हाल चाल है आपके, और कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, जानकारियां भी अच्छी देते हैं आप। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अपना भी आप ढेर सारा ख्याल रखिए। गाइज अब मैं कल मिलता हूँ, बाय टुमारो मॉर्निंग होगी ढेर सारी बात, रखिए अपना खूब सारा ख्याल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट मंडे।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल इसी गाने जैसी है। चलते रहना ही जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है। रास्ते कभी आसान होंगे कभी मुश्किल, लेकिन जो रुकता नहीं वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और देखिए, मैं भी चलकर अपने ऑफिस पहुंच गई हूं। मुझे पता है आप में भी कई लोग इस वक्त ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, और कुछ लोग रास्ते में होंगे और कुछ अपने वर्क प्लेस पर पहुंच गए होंगे। तो आज के इस मंडे पर, हाँ जी, आज इस मंडे मॉर्निंग में आप सभी का आरजी खुशी स्वागत करती है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और ये प्यारा ट्रैक अभी आपने सुना उदित नारायण साथ में कैलाश खेर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़। एंड करेंगे बहुत सारी बातें, अभी तो खुशी आई है। यहाँ पर वक्त मैं बता देती हूँ एवरीवन, समय हुआ है 10:23। गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, उठ जाए। गए हैं हमारे श्रोता, जो नहीं उठे हैं उनसे कह रहे हैं कि उठ जाए, क्योंकि कुछ हमारे जो लिसनर हैं वो लेट उठते हैं। लेकिन अब वक्त हो गया है 10:22, और मंडे मॉर्निंग अपने आप में एनर्जेटिक होती है। और दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं अभी आपसे करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ म्यूजिकल ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी है। एंड देखिए, मंडे मॉर्निंग है और एक पॉजिटिव थॉट ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हर मंडे एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग बदलिए, क्योंकि हमारी सोच ही तय करती है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। जब थिंकिंग बदलेगी तभी तो लाइफ बदलनी शुरू होती है ना एवरीवन। तो अपनी थिंकिंग को बदलिए, खुश रहिए, और जो आप करना चाहते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं। सोच बदलने वाला इंसान ही अपनी तकदीर बदलने की ताकत रखता है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव रिजल्ट, यही सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत। आप कहीं मत जाइए, और हाँ, मुझे अपने मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837 8986 8986। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
1: हमारे पास 2 ही रुपया है, रख लो।

0: पल्ले बांध न जाए, भाग झिंकी भाग। वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताऊ।
1: मक्कल कुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाऊ।
0: छुटकी, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है, तू मेरी बहन नहीं भाई है।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
5: बसंती इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
7: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज 27 जुलाई है। और दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए बेहद भावुक और प्रेरणादायक है। आज हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारत को रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है, योगदान दिया है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी सादगी, ईमानदारी और युवाओं पर अटूट विश्वास। दोस्तों, डॉक्टर कलाम जी कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी अगर आपके सपनों में जुनून है तो वही सपने एक दिन आपकी पहचान बन जाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर कलाम जी का जीवन हमें सिखाता है कि सक्सेस पाने के लिए बड़ा परिवार या बड़ी पहचान नहीं, बल्कि हार्डवर्क, डिसिप्लिन और पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए हम सब एक छोटा सा संकल्प लें, बड़े सपने देखेंगे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना भी सीखो। और साथियों, मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे खुशी। ये प्रेरणादायक संदेश के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं, तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है पूजा जी का, विकास नगर से। कहती हैं, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी दी। निखत फातिमा जी का मैसेज हमारे पास आया है, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। साथ में इनकी तीन क्यूट सी भांजी भी हैं जिनकी इन्होंने फोटो भी लगाई हुई है एंड डीपी लगाई हुई है। बहुत ही क्यूट लग रही हैं आपकी भांजी। अच्छा लगता है जब छोटे छोटे मासूम बच्चों को हम देखते हैं ना, सारी टेंशन दूर हो जाती है। एंड लाइफ में ना, कभी जैसे बहुत गुस्सा भी आ रहा हो ना आपको, किसी से अगर आप नाराज़ हो, लेकिन जब आप उस प्यारे से मासूम से बच्चे का चेहरा देखते हैं ना, तो सारा गुस्सा, सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं बस लौट कर आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप भी अपने संदेश पहुँचाइए। अच्छा दोस्तों, मुझे आप बताइए एक ऐसा ट्रैक जो आपको मोटिवेट करता है, आपके दिन को एनर्जेटिक बनाता है कि आज मंडे है, वीक का पहला दिन है, और आज कोई ऐसा गाना जो आपको एनर्जी देता हो, जो एनर्जेटिक आपको बनाता हो और आपका पूरा वीक अच्छा जाता हो, तो बताइएगा कौन सा है वो ट्रैक जो आपको एनर्जी देता है और आपको मोटिवेशन भी देता है। तो उस ट्रैक को ज़रूर मुझे बताएगा, हो सकता है मैं आपके नाम के साथ उस गाने को प्ले करूं। तो फटाफट से अपने मैसेज हमें पहुंचाएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

क्या बात है दोस्तों, ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान जी की खूबसूरत सी आवाज़, साथ में तुलसी कुमार दे रही थी साथ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। और सच में दोस्तों, जब लाइफ में हमारी जिंदगी में एक खास को इंसान आता है तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और इसी खूबसूरत गाने के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हुआ है 10:51। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और एवरीवन, यहाँ पर लगातार खूबसूरत मैसेज आ रहे हैं। आज की मॉर्निंग मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों, आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रैक तो होगा जो आपको मोटिवेट करता है। जी हाँ, जो आपको मोटिवेशन देता है, आपकी जो मतलब वीक का जो पहला दिन है उसको एनर्जेटिक बनाता है। तो कौन सा वो ऐसा ट्रैक है बताइए जो आपके पूरे वीक को एनर्जेटिक बना देते हैं। उस ट्रैक के बारे में हमें बताइएगा, फटाफट से अपने मैसेज पहुंचाइए। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837889686। और हमारे पास यहाँ पर और खूबसूरत मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गेश सैनी जी का, गुड मॉर्निंग खुशी जी, जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद, इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद इशारी कली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मॉर्निंग मसाला शो आपका सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर नीलाक्षी का आया है और ये कहती हैं, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये हमें मैसेज अपना पहुँचाती है न्यू मुरादाबाद से, कहती हैं कि हम एवरी मॉर्निंग आपका शो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, आपको हमारा शो अच्छा लगता है। वैसे मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया है नीलाक्षी। उसके अलावा हमारे पास एक मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है निधि जी का और ये मैसेज अपना पहुँचाती है प्रकाश नगर से। और ये कहती है, मैम मैंने आपको कल देखा था जब आप प्रकाश नगर शॉपिंग करने के लिए आई थी, पर एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी और आप भी बिजी थी कुछ शॉपिंग करने में, तो हमारी बातचीत नहीं हो पाई, बट आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। और हमें यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजी है शाह हुसैन अंसारी जी ने, सावली सलोनी तेरी झील से आंखें। तो चलिए दोस्तों, ये सुनते हैं प्यारा सा गाना, उसके बाद हम आपसे भी करने वाले हैं बातचीत। फटाफट से अपने मैसेज पहुंचाइए, कोई भी कंजूसी मत दिखाइए, ठीक है? मैं बस लौट कर आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना

जो द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, अभी आपने सुना जोशीला ट्रैक यारो उठो चलो भागो दौड़ो। और ये गाना सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक छोटी सी याद दिलाता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रुकना नहीं है। और दोस्तों, हमने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा मोटिवेशनल ट्रैक है जो आपके पूरे वीक को ऊर्जा देता है, एनर्जेटिक आपको बनाता है, तो आप मुझे बताइए। और ये जो ट्रैक अभी हमने प्ले किया था, इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी रिजवान खान जी ने। ये अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से। साथ में उस्मान खान जी भी हैं, दीपक भी हैं, और ये कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और आपकी गाने की चॉइस बहुत ही प्यारी थी सर। अवतार मूवी से ही प्यारा सा ट्रैक सुना आपने किशोर कुमार, साथ में महेंद्र कपूर जी की खूबसूरत सी आवाज। और चलिए कुछ और यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आए हैं, उनको भी शामिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं खुशी मैडम जी गुड मॉर्निंग, संस्कारों से ही संसार जीता जाता है, अहंकार से तो बस अपना ही सर्वनाश होता है, इसलिए अच्छा बोलिए और अच्छा करिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। क्या बात है सर, अमेजिंग, सुपर, बहुत प्यारी लाइनें हैं आपकी सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और ये हमें गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। एक वॉइस नोट भी हमारे पास आया है, तो चलिए दोस्तों इमीडिएटली इसको भी जल्दी से प्ले कर लेते हैं, सुन लेते हैं सर की बातें क्या पहुंचाते हैं आज की सुबह।
1: तीन पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है, जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है, सब कुछ पाया इस जीवन में फिर भी इच्छाएं बाकी हैं, दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ, इस जग में हमसे क्या पाया, बस यही गणनाएं बाकी हैं, इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं, वैसे तो जीवन सुख में है पर फिर भी क्यों संतोष नहीं, क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी, मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है, मेरी खुशियां मेरे सपने मेरे बच्चे मेरे अपने, ये करते करते शाम हुई इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले शाम ढले, कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है, तीन पहर तो बीत गए बस एक पहर ही बाकी है, जीवन हाथों से फिसल गया बस खाली मुट्ठी बाकी है। नमस्कार राधे राधे, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला आरजी खुशी के साथ, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। राधे राधे।
0: थैंक यू भूपी शर्मा जी, आपने अपना वॉइस नोट हमें पहुंचाया है, बहुत प्यारी सी पंक्तियां थी आपकी, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइनें। एंड हमारे पास नेक्स्ट मैसेज यहां पर आया है, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आसिफ फ्रॉम इटली से। थैंक यू सो मच सर, आप आउट ऑफ कंट्री से हमें अपना मैसेज पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, कार्ट रॉड लतावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। ये जय श्री राम खुशी मैम, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। दोस्तों आप ही अपने मैसेज हमें पहुंचा दीजिएगा, हमें 20 सब्जी से इंतज़ार है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और हमारे पास एक ट्रैक की रिक्वेस्ट तीन चार बार आई है, बहुत सारे श्रोताओं ने किए, तीन चार श्रोताओं ने किए सेम, तो मैंने कहा जब इतनी रिक्वेस्ट आ ही रही है इस गाने की तो क्यों ना प्ले कर दिया जाए। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, इस खूबसूरत गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता, तो चलिए सुनवा देते हैं अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स को ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी चांदनी।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं अपने सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6. और दोस्तों, मेहनत और लगन और हौसले की जब मिसाल दी जाती है ना, तो भारत के शान मीराबाई चानू का नाम जरूर लिया जाता है. जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए मीराबाई चानू ने भारत के नाम गोल्ड मेडल दर्ज किया. जीत के बाद वे भावुक हो गई और अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार, कोच और पूरी टीम को दिया. मीराबाई ने कहा कि हर मुश्किल दौर में परिवार का साथ और कोच का मार्गदर्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा. उनकी ये जीत सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है. और अगर इरादे मजबूत हों तो हर सपना पूरा किया जा सकता है. और हम सब मिलकर भारत की इस बेटी को दिल से धन्यवाद देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं. जय हिंद, जय भारत. दोस्तों कहते हैं ना कि आज की बेटियां सिर्फ बड़े सपने नहीं देख रही बल्कि अपने हौसले और मेहनत से उन्हें सच भी कर रही हैं. हर सफलता के साथ वो ये साबित कर रही हैं कि आसमान उनकी मंजिल नहीं बस शुरुआत है. मीराबाई चानू के लिए हमारी तरफ से सल्यूट है और सलाम करते हैं हम उनकी मेहनत, उनके जज्बे को एंड जोरदार क्लैपिंग भी. देखिए बेटियां हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आगे हैं और बस उनको ना एक मतलब देखिए बेटियां ना करना तो बहुत कुछ चाहती हैं और बहुत फैमिलीज सपोर्ट करती हैं. एंड कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां बेटियों को थोड़ा सा डीमोटिवेट किया जाता है कि नहीं नहीं तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम ये क्या करोगे करके लड़कियां नहीं करती हैं. लेकिन मैं कहती हूँ कि इस सोच को बदलिए, बेटियों को आगे बढ़ने का हौसला दीजिए. और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं. आपके जो यहाँ पर संदेश आए हैं मैं उनको भी शामिल करने वाली हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर.

देखिए दोस्तों, आपने खुशी को याद की और खुशी हाजिर हो गई है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और दोस्तों यहाँ पर अभी समय हुआ है 11:37 राइट नाउ। अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, दिल ने कहा ढूंढ लाना खुशी, और इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी गोपी शर्मा जी ने नगर पंचायत बागवाड़ा से।

और दोस्तों संगीत की दुनिया से एक शानदार और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। दोस्तों उड़ीसा के प्रतिभाशाली गायिका ज्योतिर्मयिका नायक ने अपनी बेहतरीन आवाज और शानदार प्रस्तुति से दम पर जी हाँ प्रस्तुति के दम पर इंडियन आइडल सीजन 16 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ग्रैंड फिनाले में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि जज के साथ साथ करोड़ों दर्शकों का दिल भी जीत लिया। विजेता बनने पर उन्हें 20 लाख रुपए का पुरस्कार राशि और इंडियन आइडल सीजन 16 की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ज्योतिर्मयी नायिका की ये सफलता बताती है कि अगर सपने के साथ मेहनत हो सपनों के साथ मेहनत और लगन जुड़ जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार प्रशंसकों और पूरे संगीत जगत में खुशी की लहर है। एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से ज्योतिर्मयी नायक को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि उनकी मधुर आवाज यूं ही दुनिया भर के दिलों को छूती रहे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं लौटकर आऊंगी तो आपके संदेश शो को शामिल करूंगी तो हम भूले नहीं आपका जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं आज की मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन इतने ब्यूटीफुल मैसेज पहुंचाने के लिए। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है खुशी जी जय श्री राम गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। कहते हैं कि आप कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं एंड जानकारियाँ भी बहुत ही अमेजिंग लेकर आती हैं आप। ऐसे ही जानकारियाँ लेकर आती रहिए एंड प्यारे प्यारे गाने सुनवाती रहिए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल जी ये तो हमारा

कर्तव्य है तो इसको हम बखूबी निभाते हैं। एंड सर ने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, ये जीवन जितनी बार मिले मुझे तेरा प्यार मिले, इस तरह से कुछ लिरिक्स हैं आई रिमेम्बर। तो सर ये ट्रैक हम आपको जरूर सुनवाएंगे। और इन्होंने एक कोट भी भेजा है आज की सुबह कि चुगली की धारा इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। ओ माय गॉड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ रिश्तों में विश्वास होता है ना, वहाँ चुगलियाँ वगैरह फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी डिमोटिवेट जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि खुद पर एंड सामने वाली पर्सन पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो वो विश्वास पर ही बनता है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, यहाँ पर आया है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का, कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, कैसे हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया हैं सर हम तो। बाकी दोस्तों आप बताइएगा आपके शहर का वेदर कैसा है, जो मुरादाबाद से है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि मुरादाबाद के अलग अलग इलाकों में बारिश होती है, कहीं होती है ये बारिश कहीं नहीं होती है, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं बारिश देखा है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि आपकी साइड कैसा वेदर है अभी राइट नाउ मुरादाबाद में, क्योंकि अलग अलग जगह चेंज होता रहता है, कभी बादल होते हैं कहीं तो कहीं धूप होती है, कहीं बारिश होती है तो कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी आप मुझे बताइए एवरीवन कि आज का वेदर कैसा है बाहर का। मैं तब तक सुनवाती हूँ एक शानदार से गाना।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

बिल्कुल दोस्तों, जैसे ही हमारे दो गाने कंप्लीट होते हैं, खुशी आपकी और खींची चली आती है। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, खुशी आपके साथ है। और दोस्तों वक्त हुआ है अभी 11:53। जी हाँ, 11:53 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गया है। आप भी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। दोस्तों देश की सुरक्षा और सेवा और समर्पण का प्रतीक हमारे वीर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवानों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज 27 जुलाई को हम उन वीर सपूतों को सलाम करते हैं जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और साहस के साथ डटे रहते हैं, चाहे आतंकवाद से लड़ाई हो, प्रकृति आपदा में राहत कार्य हो या देश के किसी भी हिस्से में कानून व्यवस्था बनाए रखना। CRPF के जवान हमेशा सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। इनका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा हमें कर्तव्य अनुशासन और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। इस विशेष अवसर पर हम सभी अपने परिवार जवानों के साहस, त्याग और समर्पण को दिल से नमन करें और उनके उज्जवल भविष्य व सुरक्षित जीवन की कामना करें। जय हिंद, वंदे मातरम। एक खूबसूरत सा देशभक्ति गीत सुनते हैं और आपके यहाँ पर लगातार संदेश भी आ रहे हैं तो उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का। साथ में रईस दुल्ला अंसारी जी हैं और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, फ्रॉम द मूवी छुपा रुस्तम। हम पूरा प्रयास करेंगे सर इस ट्रैक को प्ले करने की। आपने हमें अपना मैसेज पहुंचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मिलूंगी मैं आपको 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए, हमेशा अपना भी ख्याल रखिए। देखिए बदल रहा है मौसम, मानसून स्टार्ट हो गया है और इस मौसम में ना अपना विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि। और हाँ, एक बात मैं आपको याद दिला देती हूँ दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर जाएं ना तो रेनकोट, छाता हमेशा अपने साथ रखें क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। और मुरादाबाद के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम बहुत चेंज होता है, कभी बारिश हो जाती है तुरंत तो कभी धूप हो जाती है। हमारा जो मुरादाबाद है ना वो नैनीताल से कम नहीं हो रहा है। चलो मुझे दीजिएगा अनुमति, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
2: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: बनाया। अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद से
0: संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किशोरियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सेहतिया भैया जी हैं।
1: नमस्कार खुशी जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलट सकता है, इसलिए सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे प्रवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखो जी, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे कैसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए, अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती है, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन, ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधाएं कितनी जरूरी हैं।
1: बिल्कुल आरजे खुशी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है, लड़कों से कहा जाता है कि अब घलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसे करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है, फिर लड़के की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो डर की वजह से चोरी चुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह गर्भपात करवा लेती है, ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
0: ठीक कहा आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।
1: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत ही नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कॉन्डम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सेहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है, और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है रो नहीं सकता, तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरते रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो वो कमजोर नहीं है, एक समझदारी वाला काम है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले, तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते होंगे इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसी समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई न कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगे तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो तो वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत पर भी खतरा पड़ सकता है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कॉन्डम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होता है।
0: लेकिन एक बात बताइए सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया वे गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं होता है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ही पहल हुई है?
1: बिल्कुल जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्याएं खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों को सेहत के बारे में बता सके।
0: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा क्या है?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गाँव की सीमा है, वो कक्षा 2 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गाँव की लड़कियाँ साफ सफाई से पीरियड संभाल सकें। पहले कई लड़कियाँ कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाते थे, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोर के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
0: सिहतिया जी, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
1: देखिए जी, एक और बढ़िया योजना है अर्श, इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सिहतिया जी।
1: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुराने शुरू कर देती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKS की योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई, उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी है। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
0: बिल्कुल सहेतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
1: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आ जाते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई और वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
1: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये है कि पास के गाँव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे उसने, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। बोली अब ज्यादा पढ़ाई का फायदा नहीं है, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल के पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनी गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करती है।
0: अरे वाह सिहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा सिहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब

0: जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी सेहत के लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
3: आंखें खुली हो या
2: पर कैसे होता है ये प्यार, कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: खांसी हो लगातार, मत करना इंतजार, समय पे जांच करवाओ, टीवी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद कि हम पहले भी टीवी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इस विषय पर लौटे हैं। वजह है कि टीवी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। मैंने कई बार गांव में लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे टीवी तो पहले भी हुआ करती थी, अब कहाँ जाता है, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीवी कैसे हो सकती है, और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं मौसम बदल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या टीवी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीवी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीवी की जांच के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है, और अगर सही समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमारे कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझा देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी आपका।
3: धन्यवाद RJ खुशी, और मेरे सभी श्रोताओं भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। RJ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीवी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिसकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा थकान बनी रहती थी, घर के लोग पूछते थे क्या हुआ तो वे हंसकर कह देती अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था। शाम होते होते हल बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही, इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुए, बलगम की जांच हुई, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
2: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीबी है क्या?
3: देखिए खुशी, टीबी एक संक्रमण बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसीलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
2: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्या हर बार टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाते हैं?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी दो तरह की हो सकती है, एक लेटेस्ट टीबी जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते, वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीबी जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं, फेफड़ों को एक्टिव टीबी दूसरों तक फैल सकती है।
2: तो ये फैलती कैसे है?
3: जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इससे सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों में।
2: गांव में लोग कहते हैं कि साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है।
3: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसीलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
2: इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
3: अगर दो हफ्ते से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या बगम में खून आए तो तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए।
2: क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
3: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहतर जरूरी है।
2: क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
3: जी हाँ, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोग, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
2: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक, पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
3: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTIP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
2: तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है?
3: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच, बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी के जीवाणु मौजूद है या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती है और आज भी महत्वपूर्ण है।
2: CBN, AAT और TuneIn जैसे नाम भी सुनते हैं, कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होता है।
3: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है। इसकी खासियत यही है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कई बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रजिस्टेंट तो नहीं। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
2: और एक्स-रे की क्या भूमिका होती है? क्यों जब भी लोग लंबे समय तक खांसते हैं डॉक्टर अक्सर छाती का एक्स-रे लिख देते हैं?
3: बिल्कुल सही, छाती का एक्स-रे टीबी की जांच में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्स-रे में ऐसी बदलाव दिखाई देती है जैसे टीबी की ओर संकेत करते हैं। फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं, यानी एक्स-रे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है तब और भी विशेष जांच की जरूरत होती है, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इसमें यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावित होगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
2: साथियों, बात बिल्कुल साफ है, अनुमान नहीं जांच जरूरी है। खांसी तो घरेलू नुस्खों में महीनों ना उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। 2 हफ्तों की खांसी हो जाए, जांच बिना मत समय गवाएं। टीबी का इलाज है तैयार, समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार। टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगी, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करवाती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं?
3: नहीं आरजे खुशी, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसमें हम पेसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुँचते हैं, गाँव बस्तियों दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
2: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही है।
3: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
2: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्यों अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है?
3: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो बाकी सदस्यों को भी जांच करवाना बेहतर जरूरी है। इससे संपर्क जांच या कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग की जांच जरूरी होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी हो तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
2: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर है और शर्म। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं करवाते और दूसरों को भी बताते नहीं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्ते पर असर पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह कोई पाप नहीं, यह कोई चरित्र की कमी नहीं, यह एक सामान्य चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसीलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा जरूरी है। समय पर जांच न करवाने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को भी हो सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं?
3: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखें। रखे। पहली, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो जांच जरूर करवाए। दूसरी बात, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथा, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच करवाइए। और पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
2: और मैं इनमें से एक छठी बात जोड़ना चाहूँगी। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसीलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच करवाइए, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब लेते हैं मिलकर सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
3: साफ सफाई स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
2: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।
3: खांसी रहे 2 हफ्ते से पार, जांच करवाना है समझदार। टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करा के ही रुकेंगे।
2: श्रोताओं, मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और प्रोग्राम है आपका फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का। एक बार फिर से ये लीजिए, अब आपके इंतजार की प्रतीक्षा खत्म करते हैं। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त अखिल जी। कैसे हालचाल है सर आपके?
1: बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। आपके कैसे हालचाल है?
0: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं अखिल जी, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं और गर्मियों में कैसी जा रही है आपकी दिन और रात?
1: गर्मियों में दिन में पसीना,
0: हाँ, रात में मच्छरों ने जीना कर दिया दुश्वार मुश्किल नहीं, ये तो है यार। खैर श्रोताओं, मैं और अखिल जी आज आपके साथ इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम हमने आपको बताया सोच बदलो, और आज हम किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए जरूर आपको पता लगेगा, जिससे कि इसका नाम ही है सोच बदलो। अखिल भाई, आप पहली बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं और इसका नाम है सोच बदलो, तो कुछ मतलब नाम से कुछ लग रहा है आपको कि इसका क्या टाइटल ऐसा है, तो अंदर क्या होगा इस प्रोग्राम?
1: आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं कहता हूँ हालात नहीं बदलते हैं जब तक इंसान भी अपनी सोच नहीं बदलता है।
0: तो है,
1: जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे या किसी चीज को लेके अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो अपने हम हालात भी नहीं बदल सकते।
0: गॉट इट, 100% सही कहा आपने, लेकिन हालात बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और आजकल हर इंसान परेशान है, कोई करियर को लेके, कोई रिश्तों को लेकर, और कोई खुद से हार चुका है। तो आज इन सब मुद्दों पर बात करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। प्रोग्राम सोच बदलो है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता तब तक चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हम कर पाएंगे।
1: नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
0: वाह,
1: सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
0: करेक्ट,
1: कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।
0: वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बात कही है अखिल जी ने, और बिल्कुल सही बात है। जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं।
1: छोटी छोटी जो बातें होती हैं कभी
0: जी,
1: कभी
0: जी,
1: वो जिंदगी में लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव ले आती
0: है। करेक्ट, और छोटी सी शुरुआत ही जो है हमें जीवन में वहां तक पहुंचा देती है जहां हम जानना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। एक सवाल, अगर सुबह उठते ही इंसान ये सोच ले कि आज भी कुछ खराब होगा तो क्या दिन अच्छा जाएगा?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है
0: जो हम बताते हैं,
1: है ना? वही दिमाग हमारी चीज ढूंढ रहा होता है।
0: और अभी फिलहाल मेरा और आपका दिमाग ढूंढ रहा है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा म्यूजिक वाला, तब तक हमारा दिमाग भी ढूंढता रहेगा गाना कहाँ है, गाना आ गया आपका फेवरेट गाना। एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैं और अखिल आपके ही में जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
0: वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक है। इस ब्यूटीफुल गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी अखिल जी, कुछ कह रहे थे आप अभी?
1: मैं यही कह रहा था कि आजकल लोग छोटी सी परेशानी में भी बोल देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं, सभी इंसान इस चीज पे बिलीव करते हैं और सभी बोलते हैं। मोस्टली हर इंसान जब भी स्ट्रेस में होता है या उसका कोई काम नहीं बनता है तो ये चीज को जरूर बोलता है। अखिल भैया, लाइन क्या बोली थी अभी आपने? वो
2: ऐसे बोल दो
0: जी भैया,
1: ओहो मेरी तो किस्मत ही खराब है।
0: और ये जो लाइन है ना, ये अखिल भैया आप नहीं, मुझे लगता है दुनिया का हर दूसरा इंसान बोल रहा होता है। करेक्ट,
2: बिल्कुल।
0: दोस्तों, सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस किए जाएं और ये वो टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जो एक्चुअली हमारी और आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं।
1: अब देखो ना, अगर बारिश हो रही होती है तो कोई बारिश को देखकर ये बोल देता है ओह आज तो ट्रैफिक होगा, बारिश हो रही है, और कोई उसी बारिश को देख के कहता है अरे आज मौसम कितना प्यारा हो गया।
0: बस अपने अपने देखने का तरीका है, नजरिया है ना। लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में हुई है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अखिल भाई
1: बिल्कुल सही बात कहे।
0: चलो,
1: अरे आनंद भाई, कभी कभी ना अगर कुछ लोग इतने नेगेटिव मिलते हैं कि अगर आप उन्हें फ्री में पिज्जा भी दो ना तो ये कहेंगे आपसे अरे कहीं कोल्ड पिज्जा तो नहीं दे दिया, कहीं ठंडा तो नहीं दे दिया हमें।
0: मतलब पिज्जे के अंदर भी वो नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो फिर पक्का उन्हें सोच बदलने की जरूरत है। और श्रोताओं, मुझे ऐसा लगता है कि सोच अगली बात से डेफिनेटली बदल जाएगी। और कुछ लोग अखिल भाई इतने पॉजिटिव होते हैं, आप यकीन मानिए कि मतलब अगर उनके घर में उनका वाईफाई ना भी चले तो भी भैया उनको ये लगता है कि चलो आज वाईफाई ना चला ना सही, एटलीस्ट फैमिली से तो बतिया लेंगे भाई, फैमिली से तो बात कर लेंगे। और ये जो गेट टुगेदर वाला टाइम होता है ना, ये एक अलग ही होता है और यहीं पर निकल के आती है पॉजिटिविटी। अगर आपका, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा श्रोताओं, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और अगर वो नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल या वो नहीं बन पा रहा है तो आप सोचिए उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में, अखिल भाई ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से और वो हमें नहीं मिलती है तो हमें लगता है यार ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, जबकि थोड़े दिन के बाद उससे भी बेहतर से बेहतरीन हो रहा होता है। फिर हमें लगता है कि यार अगर वो चीज हो जाती तो शायद ये नहीं होता।
1: बिल्कुल सही बात। तो जिंदगी कहाँ परफेक्ट होती है? जिंदगी परफेक्ट कहाँ होती है? नहीं होती ना जिंदगी परफेक्ट। लेकिन अगर सोच पॉजिटिव हो तो वो और सफर थोड़ा सा और आसान हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे भी लगता है कि दोस्तों जिंदगी देखो परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकती, ना ही इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक गाना जो मैं लगा रहा हूँ ये जरूर परफेक्ट हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। मैं और अखिल, प्रोग्राम है सोच बदलो। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। भैया बजाते रहो या गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो या बजाते रहो, बात एक ही, फिलहाल हम बजा रहे हैं गाना।

0: और इस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं मैं और अखिल जी आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेशल नहीं है, बस हमने कुछ चीजों को उठाया है, कुछ चीजों को हम चुनकर लेकर आए हैं जिसपे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अहम और कड़क वाला मुद्दा बना हुआ है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों अखिल जी? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें जिसकी भागदौड़ में छोटे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर बुजुर्ग तक भी शामिल है। हर किसी को लग रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर किसी को लग रहा है मेरे अच्छे व्यूज आ जाएं। और मजे की बात तो यह है दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटोज डालते होंगे ये उम्मीद करके कि शाम तक तो 200 लाइक आ ही जाएंगे, और उस पे 2 लाइक भी ना आए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं आपको बोलूं तो मैं भी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी डालता हूं तो मुझे भी लगता है यार शाम तक 500 लाइक तो आ जाएंगे, और जब 5 भी नहीं आती तो थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन फिर वहीं पे हमें अपने मन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। टाइम पे क्या करना है भाई, क्या हम 500 लाइक या 5 लाइक पे अपने आप को थोड़ी रख रहे हैं भाई?
1: बिल्कुल सही बात कही। और हमें सोशल मीडिया से अपने आप को कंपैरिजन करना है क्यों है?
0: एब्सोल्युटली अखिल भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन और हमारी फैमिली। अगर फैमिली खुश है, हम खुश हैं तो सब बढ़िया है। तो गाइज यहाँ पर भी सोच बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अखिल जी ने दुबई में जाके एक बढ़िया से फूड की फोटो डाली तो मेरे को ये लगे भैया मैंने नहीं डाली तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। अखिल भाई की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है।
1: तुमने दुबई बोल के ना कुछ पुरानी मेमोरी
0: याद दिला दी। वैसे मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो महान इंसान है, ये दुबई भी घूम के आ चुके हैं और दुबई में इन्होंने अरीना मरीना सब देखा है, एलेन और पता नहीं अबू धाबी कहाँ कहाँ घूम के आए हुए हैं भाई।
1: दुबई तो अपने में बहुत ही अच्छी जगह है।
0: और लेकिन यार आज की डेट में पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है अखिल भाई?
1: क्या है
0: यार? मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे आ गया है जैसे मतलब बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनती, वैसे ही इंस्टाग्राम से जब तक खोलो ना ठीक है दिन की शुरुआत नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इंस्टाग्राम जो हमारी जिंदगी में आके मतलब इसने तहलका मचाया ना।
1: एक बात बोलूंगा तुमसे कि इंस्टाग्राम में देख के ना कभी भी अपने आप को ना अनसक्सेसफुल मत
0: अनाप शनाप डाला और उसके इतने व्यूज आ गए, इतना वायरल हो गया वो बंदा। अभी किसी और की बात क्यों करे, कॉकरेज की बात कर लेते हैं भाई। कॉकरेज भाई को ले लो, इतने वायरल हो गए यार। तो मतलब कभी कभी लगता है यार फिर हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर हम किसी को देख के अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत
0: है। वो मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, हर किसी का डिजायर अलग है। तो जरूरी नहीं है जो अखिल भाई की लाइफ में चल रहा हो मेरी लाइफ में भी चल रहा हो।
1: और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ना लोग अपनी हाईलाइट ही दिखाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है पूरी कहानी वो किसी को नहीं पता।
0: पॉइंट तो है। और कभी कभी तो ऐसा होता है लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही चीजें कर देते हैं भाई। तो दोस्तों आपको अपनी जो है ना सोच को एकदम सही रखना है। जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो। आज भी आप YouTube पे एक इन्फॉर्मेशन डालोगे उसके इतने इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा सही क्या है और रॉन्ग क्या है। तो हमें सही डायरेक्शन में चलना है। और अभी एक और डायरेक्शन है जहां हमें जाना चाहिए मुझे और अखिल भाई को, वो है एक म्यूजिकल ब्रेक, म्यूजिकल डायरेक्शन, जहां जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ दोनों मिलेंगे, हमारी जुबान को भी, हमारे गले को भी, और आपके कानों को भी मिलेगा सुकून। तो एक छोटा सा गाना, उसके बाद वापस आते हैं मैं और अखिल जी। हाँ, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जितना प्यारा है ना उतना टेंशन का कारण भी बन गया आजकल की स्पेशली जेंजी का। कभी कभी तो मेरे अखिल भाई को भी टेंशन हो जाती है कि यार सुबह वीडियो डाली थी शाम तक आई क्यों नहीं, कल जोक बनाया था 2 महीने हो गए तक आया क्यों नहीं। तो इनको भी बहुत टेंशन हो जाती
1: है। इसके लिए तो मैं जरा आनंद को अकेले में पकड़ूंगा।
0: और फिर ये अकेले में पकड़ने गलत मतलब मत समझिएगा श्रोताओं, फिर बाद में कहते हैं बच्चा है तू मेरा। एक काम करते हैं गाना सुनते हैं फिर मिलते हैं।

0: ये गाना सुन के तो मैं अपनी चेयर से गिरने वाला था। अखिल भाई ने पकड़ लिया कि बेटा रुक जा, इतना डांस मत कर। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही मजेदार था ये। और इस गाने के बाद इसी बात पे आपका वेलकम कर लेते हैं जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद एंड अखिल के साथ। सो अखिल जी, आप कुछ अभी माइक के पीछे मुझे चार लाइने चंद लाइने सुना रहे थे, जरा हमारे श्रोताओं के सामने पेश करें।
1: मैं बहुत ही सिंपल और ये कहना चाह रहा था, हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: लेकिन ये जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कौन से सोने की बात चल रही है? जो रात को नींद पूरी नहीं हुई वो, या फिर आजकल जो महंगा हो गया है वो? थोड़ा सा विस्तार से बता दें। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज में।
1: अच्छा आनंद, तुम्हारे पास कितना सोना आज बता दो लोगों को।
0: मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे ही सोना होता है, सैटरडे एंड संडे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दो दिन ही होते हैं। सैटरडे रात को जागता हूँ, संडे को सोना करता हूँ, और उसके बाद भी हो नहीं पाता है, क्योंकि भाई इतना काम पड़ा होता है ना वीकेंड पे, वो भी कम्प्लीट करना होता है।
1: जो तुम्हारा सोना है ना, वो एक्चुअल में जो दूसरा सोना है उससे ज्यादा कीमती है।
0: करेक्ट यार। और अगर वो सोना कम्प्लीट नहीं है आपका, तो फिर सारे सोने बेकार है, सब अनसक्सेसफुल है। करेक्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल सही है। हाँ। वो असली हेल्थी आपकी सोना है ना।
0: और अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, तो आपके चेहरे पे जो सोने जैसा निखार आएगा ना, हाँ। भाई साहब हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। करेक्ट। चलो जी, ट्रैक से नहीं भटकेंगे, सोच बदलो में हम थोड़ा सा फन और एक्टिविटीज ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी अखिल जी, आपने जो वो चार लाइनें कही थी, वो लाइनें मैं जरा आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। हाँ, हर चमकती चीज
1: सोना नहीं होती,
0: सोना नहीं होती,
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल, इस बात में मैं भी कहना चाहूंगा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है श्रोताओं। तो जो ये कंपैरिजन, इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे तो कितना बढ़िया होगा अखिल जी।
1: बिल्कुल सही,
0: है ना? लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम इंसानों की आदत है, फितरत है, हम ये हटा ही नहीं सकते हैं।
1: हाँ।
0: ये कंपैरिजन करने वाली आदत। वेल, आप आगे क्या कहना चाह रहे
1: हैं? मैं तो ये कहूंगा कि अपने को ना किसी और की कहानी से मत नापिए।
0: हाँ,
1: आपकी जो अपनी जिंदगी है ना, उसकी टाइमिंग अलग है।
0: टाइमिंग अलग है यार, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर सेट है,
1: एक अलग ही टाइमलाइन चल रही है, तो वो अच्छी ही चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसे कंपैरिजन में ही निकाल दें या गांव
0: में। अगर सोशल मीडिया आपका इनर पीस खराब कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात। और एक थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी करवाएं, इतना सारा डिटॉक्स चल रहा है।
0: डिजिटल डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं।
1: थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना लगा दीजिए, वही डिजिटल डिटॉक्स है।
0: हाँ, मैं गाना जरूर लगाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी हम गाने सुनवा रहे हैं, तो श्रोता हमें सोच रहे कि आज क्या हो गया है, सारे गाने सुना के जाएंगे क्या?
1: थोड़ी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं,
0: थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक चीज और है अखिल जी, जिसपे हमें ना थोड़ा सा काम करने जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को जो है सेट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी थॉट्स और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। वो है फेलियर। हर किसी की लाइफ में ये फेस आता है, मुझे ऐसा लगता है, छोटे बड़े बच्चे हर किसी के जीवन में आता है ना? तो लोग इतना फेलियर शब्द से क्यों डरते हैं, इतना अनकॉन्फिडेंट अनकॉन्शियस क्यों फील करते?
1: मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो सोसाइटी है ना,
0: हाँ,
1: वो सिर्फ आपकी सक्सेस ही सेलिब्रेट करती है।
0: गॉट इट, 100% एग्री विद यू।
1: और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की बहुत ही लंबी कहानी होती है।
0: करेक्ट।
1: हमें तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग डर रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। जब तक फेलियर्स से आपका सामने नहीं होगा, तो सक्सेस का वो मजा भी आप नहीं ले पाएंगे।
0: इनफैक्ट, जब आप फेल होते हो ना अपनी लाइफ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप फेल हो रहे होते हो, तो आप ना उस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हो। इतना आप सक्सेस में जब सेलिब्रेट करोगे, तब नहीं सीखते, इतना फेलियर वाले पीरियड में सीख पाओगे। बिकॉज वो जो फेस होता है ना, वो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो चेहरों से रूबरू कराता है, जो एक्चुअली आप कभी आप उनको मिल भी नहीं पाओगे।
1: एक बार बताओ आनंद,
0: हाँ,
1: हम फेल हुए, बिजनेस नहीं चला या रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या?
0: नहीं यार, ये एग्जाम, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर इन सब चीजों पे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता यार कि हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर ना हमारी डायरेक्शन को बदलता है ना?
1: बिल्कुल सही, डेस्टिनी नहीं बदल सकता वो।
0: करेक्ट। तो वही है ना, आपकी अगर डेस्टिनी स्ट्रांग है, आपका आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप उस पर फोकस्ड है, तो आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना? बट अगर लाइफ में आपको थोड़े से डाउनफॉल मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो फेस आ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए, क्योंकि आपको पता है ना आप कहां पर सही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, और आपको पता है आपकी मंजिल कहां है, तो फिर बस आपको तो भैया अच्छी चीज के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे निकलना है, और वो कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: क्या बात
0: है ना,
1: क्या
0: इस, बात इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेकर आओ और अपनी सोच को बदलो, देखो जिंदगी कितने प्यारे रिजल्ट देगी। कुछ ज्यादा मोटिवेशन नहीं भर दिया आज हमने लोगों में?
1: हाँ जी, ऐसा मोटिवेशन दे दिया, कल आ जाएंगे फोन के भाई साहब आ रहे हैं, हम भी एक आरजे बनने वाले हैं।
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, चेयर बिल्कुल खाली है, अखिल भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे, और आपको यहाँ बिठाएंगे, टेंशन मत लो आप। फिलहाल अखिल भाई ने गाने की बात करी थी, तो गाना जो है आ गया है निकल के बाहर, और ये गाना बहुत अच्छा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपने सुना है गाना?
1: सुना है।
0: कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान साहब की, और ये गाना भाई साहब आज भी मजेदार लगता है मुझे।
1: और गाना गाने के बाद आमिर खान की तो मैं बात कहूंगा, आज क्या नाम कर रखा है।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और ये गाना भी आपने सुना कयामत से कयामत मूवी का, और बहुत ही कमाल की फिल्म थी और बहुत ही फैंटास्टिक लगे मुझे तो आमिर खान। और इसमें एक गाना है, मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर। अभी तक वो चेहरा मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन अखिल जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज टेल अस यार।
1: मैं एक्चुअली क्या है ना, अभी हम
0: कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
1: मगर आमिर खान साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। एक मूवी थी यादों की बारात करके,
0: हाँ।
1: और उन्हीं के अंकल हैं, डायरेक्टर थे जो उस मूवी के थे, नसीर साहब थे। तो मतलब बचपन से ही इज लाइक इन एक्टिव, और इतना कहते हैं ना कि बचपन खून में है, तो वो खून वाली ही चीजें थी कि हाँ भाई खून में है एक्टिंग, और इतना अच्छा आज के समय में ऐसा नाम।
0: मेरी तो आमिर खान साहब से बात भी हुई है, एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन का नाम तो नहीं लूंगा, तो आमिर खान साहब मुंबई के एक स्टूडियो में थे और मैं अपने घर से खड़ा फोन लगा रहा था। लाल सिंह चड्ढा इनकी मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे। तो इन्होंने बोला था जो सबसे क्रिएटिव लाइन सुनाएगा मैं उससे लाइव बात करूंगा। तो मैं बस जस्ट रैंडमली मैंने फोन लगाया एक स्टेशन में, और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो आमिर खान साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आनंद। तो कह रहे मैंने कहा मैं आमिर खान से बात करो, आमिर खान ने बोला यस बेटा मैं आई एम आमिर, टेल मी आनंद कहां से हो। मैंने बताया और मेरे को आरजे बनना है, आई एम वेरी पैशनेट ये वो। तो आमिर ने बोला ठीक है मैं यहां के डायरेक्टर से बात करता हूं, जो वहां का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे, कि और तुम्हें कुछ एक चांस दिलाते हैं। बट स्टेशन मुंबई में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर आमिर खान साहब ने बोला एक राइमिंग बनानी है लाल सिंह चड्ढा की मूवी के ऊपर। तो फिर मैंने बना दिया, मुझे बड़ा मजा आया भाई। जब मैंने बनाया तो ताली वाली सब बजाई, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अखिल भाई। वो लाइन थी कि जाना था मुझे बस के अड्डा, मुझे आज भी याद है, जाना था मुझे बस के अड्डा, लेकिन जैसे रेडियो खोला तो नजर आ गया लाल सिंह चड्ढा। इतनी तालियां बजाई आमिर खान, मतलब आमिर खान इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो क्रिएटिव। एक दो लाइन और बोली थी, वो शायद मेरे पास, मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। और जब मैंने आमिर खान साहब से बात करी तो उस दिन पूरा दिन मुझे नींद ही नहीं आई भाई, लगा ही नहीं कि मैं कहां बैठा और कहां आमिर खान साहब से, मतलब जिनको पिक्चर में देख रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस।
1: हमारे साथ ये वाला वाक्य हो गया कि पापा कहते हैं
0: बड़ा नाम करेगा। हाँ, बट मम्मी को बहुत खुशी हुआ था, मेरी मम्मी को मतलब फेवरेट है आमिर खान। और फिर एक बार मेरी अक्षय कुमार साहब से भी हुई है यार ऐसी, तो दूसरे स्टेशन के, मतलब मैं शुरू से इतना ज्यादा एक्टिव रहा हूँ चीजों में, तो आई फील कि यार हाँ ठीक है रेडियो पे अगर हम, और रेडियो में भी मेरा आने का मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी से ही मिलना है, मतलब एक रियल कनेक्शन बनता है। जैसे मेरी बात उनसे हुई मैं खुश हुआ, ऐसी हमारे तमाम लिसनर जो हमसे बात करते हैं उन्हें खुशी मिलती है, तो ये एक अलग ही यू नो हैप्पीनेस होती है। और ये अखिल जी जो बैठे ना ये भी बहुत कमाल धमाल करके आ चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, और ये एक बहुत अच्छे स्टेशन में साउंड इंजीनियर जो भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इनका प्रोफेशन क्या रहा है, बट इन्होंने अच्छा किया है।
1: मैं बताना चाहूंगा आमिर खान साहब को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, बात भी हुई है। उनकी एक मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था,
0: तो दुबई
1: नहीं नहीं नहीं गुड़गांव में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे ना इनकी शूटिंग थी पीके मूवी की।
0: पीके, ओके, आमिर खान और अनुष्का।
1: हाँ, अनुष्का शर्मा, और दोनों ही आए थे उस गाने को शूट करने के लिए, दोनों ही लोग आए थे। तो मेरी मतलब आमिर खान साहब का तो शॉट रात में था, और रात में आप मतलब मानोगे नहीं, रात में एक दो बजे भी ऐसा लग रहा था कि सुबह के एकदम ताजा उठे हुए और वो शूट कर रहे थे, और उस बीच उनका एक
0: मतलब प्रोडक्टिविटी एकदम मॉर्निंग वाली थी,
1: इतने एक्टिव कुछ पूछो मत। और उस शूट में एक मजे की बात और थी कि उन्हीं के बेटे जुनैद खान वो उसमें असिस्टेंट थे।
0: ओ वाओ, क्या बात,
1: सॉन्ग के असिस्टेंट थे।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो जानकर हमें बहुत खुशी हुई अखिल जी, थैंक यू सो मच, आपने ये कड़क अपडेट हमें बताई। और अगर हम कभी आमिर खान से मिले तो जरूर आपका मैसेज तक पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप हमसे पहले मिले तो हमारा पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल प्रोग्राम है सोच बदलो, और उनका पीके मूवी का इन्होंने जिक्र किया तो एक मीम बहुत वायरल होता है, अच्छा हमें सिखाएगा, अच्छा हमें बता दिया है, आई एम श्योर आपने देखो ना। और ये मूवी की शूटिंग के दौरान ही मैंने इनके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इन्होंने इस मूवी में जो डायलॉग बोल रहे ना, अच्छा हमें सिखा दिया है, ये वाला करने के लिए उन्होंने 105 चबाए थे भाई, ये वाले शॉट के लिए आमिर खान साहब ने, वो पान खाते हो और तब ये वाला वायरल होता, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 100 पान को खाया यार। एक एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सोचो आप,
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्तों ये सिर्फ एक्टर को नहीं, एक रेडियो जॉकी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं और ट्रैक पे हम लोग आ गए तो हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है। सो वेल, ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के काम की, भाई हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अखिल जी आप फेलियर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे।
1: मैं तो कहूंगा यही
0: जी भैया,
1: गिरकर उठना सीख लिया हमने, अब मुश्किलों से डर नहीं लगता।
0: वाह,
1: क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं हौसले देखकर पूरे होते हैं। आनंद,
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, और हौसले अगर आपके मजबूत है ना तो फिर आपको कोई नहीं पड़ सकता, कोई नहीं हरा सकता। करेक्ट, तो बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए ना कुछ बढ़िया सोचना जरूरी है। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आप भी अच्छा सोचिए, अफकोर्स आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। और आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा सिर्फ यही मतलब था, यही मुद्दा था बताने का कि इन सब की वजह से ना हम बहुत भटकते हैं अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, फेलियर हो गया, ये सब चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को देख ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि भाई यही सब चीजें जो हमें दबा रही है और इन्हीं चक्कर में हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपके इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, है ना भैया। और मुझे लगता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी।
1: आनंद कभी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने आसपास वालों को बदल दूं?
0: यार आसपास वालों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बदल लूंगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं भाई। बट हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली बदल सकते हैं यार,
1: बिल्कुल
0: है ना। एक इंसान की सोच सब कुछ बदल सकती है, तो बस वही चीज है। बाकी अभी मैं और अखिल जी लेते हैं इजाजत, बहुत सारी ज्ञान और काम की बातें भी हो गई और फिल्मी शिल्मी वाली बातें भी हो गई, एंड जल्दी गुफ्तगू करने के लिए फिर किसी और मोड पर नए एपिसोड के जरिए आपसे रूबरू होंगे मैं और अखिल जी। तो अखिल जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ बिल्कुल आनंद, बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर खुद पर भरोसा हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन जाती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कह दिया अखिल जी, और बहुत ही बड़ी बात ही है मुरादाबाद के युवाओं के लिए। बस यही एक प्यारा सा मेरी तरफ से भी संदेश रहेगा कि दोस्तों जिंदगी में ये मत सोचिए कि हर चीज परफेक्ट होगी, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपनी लाइफ में शुरुआत करते हो ना, वही सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कदम होता है।
1: अपने साथ स्माइल रखनी है बस हमेशा।
0: करेक्ट, आपने स्माइल के साथ आगे बढ़िए, नो स्ट्रेस नो टेंशन, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हम भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे से गाने की तरफ प्रस्थान करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा पानी पीते रहिए, गर्मियां बहुत हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और थोड़े से कूलर शूलर भी चला लीजिए।
1: थोड़ा नहीं, कूलर तो पूरा ही चला,
0: मतलब हाँ भाई यार पूरा ही चला लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय कर दीजिए आप भी,
1: बाय बाय। रेडियो बजाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो और सुनते रहो आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय
1: बाय।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन

का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हो, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
6: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
7: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
8: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
9: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
10: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद मैं ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
5: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
4: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती है। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
5: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बॉटल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: इसीलिए
1: बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना, आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या है ना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं, आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं।
1: अरे वाह।
0: और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारी जो घर की वुमेन होती है ना, बुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमन

0: दुनिया है, बस एक दूसरे की हेल्प करे, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूज, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए, जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं, और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए, सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर, सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद से
2: संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपके अपने दोस्त आरजे खुशी। और बाहर का मौसम बड़ा ही औसम है ना, बारिश हो रही है और बादल भी छाए हुए हैं। हाँ, कहीं कहीं बारिश हो रही है और कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर मौसम बहुत ही सुहाना है। और इस सुहाने से मौसम में अगर आप भी चाहते हैं कि कोई मेरा फेवरेट गाना प्ले हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको मुझे कॉल लगाना होगा। देखिए, गर्मा गर्म चाय, पकौड़े और अपना फेवरेट गाना, ओए होए होए, मौसम फिर तो और सुहाना हो जाता है। तो जल्दी से कॉल लगाइए, इंतजार किस बात का है आपको। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हेलो,
1: हनीफ बात कर रहे हैं मैम, अमरोहा से।
0: जी, अमरोहा से बात कर रहे हैं। बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: मैम हम तो ठीक है, आप सुनाइए आपका।
0: जी मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम करते हैं आप? जी, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो बताइएगा।
1: बहुत गर्मी थी मैम, आज बहुत राहत मिली है।
0: बारिश हो गई है ना, अभी हो रही है बारिश या रुक गई है?
1: मैम बारिश तो हो रही है।
0: अच्छा, बारिश हो रही है। तो बताइएगा सर, गर्मी से राहत मिल गई है, सुकून मिल गया है, तो अब आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं जो आपको और इस ब्यूटीफुल मौसम में आपके दोपहर को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए?
1: मैम दिल आशिकाना का गाना सुनवा दो।
0: ये दिल आशिकाना, ये वाला। ओके, ठीक है सर, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: तो चलिए एवरीवन, मोस्ट वेलकम सर, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। तो जल्दी से कॉल लगाइए बिना किसी देरी के, मैं इंतजार कर रही हूँ। और मुझे यकीन है कि आप कॉल लगाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं एंड सब काम छोड़ छाड़ कर आराम से फ़ोन लगा रहे हैं कि चलिए खुशी जी को फ़ोन लगाया जाए। हाँ तो लगाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ, आपकी खुशी। और दोस्तों, अभी आपने खूबसूरत से गाना सुना है, टाइटल ट्रैक ये दिल आशिक गाना, कुमार सानू साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी आवाज़। और बाहर बहुत इस बारिश हो रही है, कार्ट रोड पर। और हमारे साथ एक लिसनर भी जुड़े हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, लगता है सर की साइड शायद नेटवर्क इशू है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश है। और हमारे पास कॉल आया था भूपेंद्र चौहान जी का, एंड वो अभी राइट नाउ ड्राइविंग कर रहे थे और उन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें की थी। तो चलिए दोस्तों, इस गाने को सुन लेते हैं। मेरे मेहरबान जो 1994 में आई थी कुमार सानू जी की आवाज़ में, खूबसूरत सा गीत, तो इसको सुनते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा एवरीवन। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98-378-96-896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस बारिश की मौसम का लुत्फ़ उठाते रहिए खुशी के साथ।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: देखिए दोस्तों, मुरादाबाद में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और सभी को इंतजार था कि बारिश हो जाए। आखिरकार बारिश ने दस्तक दे ही दी है। इस वक्त मुरादाबाद में रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम काफी सुहाना हो गया है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएं, गरज चमक और कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावनाएं हैं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े ना हों एंड सुरक्षित जगह पर रहें। बारिश का मजा लीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखिएगा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हाँ जी, कैसे हाल चाल है आपके?
1: मेरे हाल चाल बहुत अच्छे थी, आप बताओ आप कैसी हो?
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? अफरोज फातिमा जी। आज तो मौसम सुहाना हो गया है। हाँ
1: अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया, सुबह से बहुत गर्मी हो रही थी।
0: हाँ सुबह से बहुत गर्मी थी और अभी गर्मी से राहत मिल चुकी है ना?
1: बारिश में नहा के बस अच्छा लग रहा है।
0: ओके, हाँ बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है एंड बारिश में नहाते नहाते थोड़ा सा डांस करना, गुनगुनाना।
1: हाँ भी अच्छा लगता है, वैसे भी बारिश में नहाना मुझे बहुत पसंद है।
0: और उसके बाद गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीना।
1: हाँ भी बिल्कुल,
0: बहुत ही अच्छा लगता है। जी बताइएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: दीदी मैं
0: अच्छा
1: भी कनपुर जिला मुरादाबाद से बोल रही हूँ।
0: अफरोज फातिमा।
1: हाँ।
0: ओके, तो बताइएगा अफरोज, देखिए मौसम तो सुहाना हो ही गया है और इस मौसम में आपको क्या पसंद है बताइए आप मुझे।
1: मुझे क्या पसंद है?
0: खाने में क्या पसंद है इस मौसम में?
1: खाने में भी मुझे ऐसे मौसम में आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: ओके, तो फिर गर्मा गर्म बनाए जाए आलू के पराठे।
1: हाँ दी, गर्मा गर्म आलू के पराठे और उनके साथ चाय।
0: ओ हो, क्या बात है। तो आज शाम को हो जाए फिर बना लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे इवनिंग।
1: हाँ, सोच तो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ बना लूँ आज आलू के पराठे।
0: ओके, पर हमें भी इनवाइट कर दीजिएगा। हम इनविटेशन तो दिया नहीं, हम कैसे आएंगे बताओ।
1: मैं आपके लिए बनाकर रहूंगी, अब इनवाइट कर रही हूँ ना।
0: अच्छा थैंक यू
1: दीदी, बनाकर रखूंगी और अदरक इलायची वाली चाय भी बनाकर रखूंगी साथ में, और फिर साथ में बैठ के दोनों पराठे खाएंगे चाय पियेंगे।
0: हाँ हाँ ठीक है डन। बताएगा आज क्या सुनेंगी आप? बताइए।
1: आज मैं गुनगुनाकर सुनाना चाहती हूँ खास। हाँ, लाइव वाली।
0: ठीक है गुनगुनाइएगा
1: दीदी। पता नहीं मैंने मैसेज तो कर दिया है उनको, पता नहीं वो सुन रही है या नहीं।
0: अगर मैसेज आपने कर दिया है तो सुनी रही होंगी, इतनी तो मतलब आप यकीन रखिए खुद पर भी और उन पर भी।
1: जी जी
0: जी
1: पर उसकी

0: तुमने सुना क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
1: हाँ बिल्कुल, इतने प्यार से आपने गुनगुनाया है तो जरूर सुन लिया होगा आप तो आपकी दिल की आवाज उन तक पहुंच गई है।
0: हाँ दी, पहुंच गई होगी, वो सुन रही थी मुझको।
1: या तो बताएगा, और कुछ कहना चाहते हो आप?
0: हाँ दी, कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ।
1: जी बिल्कुल सुनाइएगा।
0: जी दी, तुम्हें मोहब्बत सिखाती हूँ यहाँ बैठो, तुम्हें मोहब्बत सिखाती हूँ यहाँ बैठो, कुछ गजलें सुनाती हूँ यहाँ बैठो। क्या कहा वो गुलाब चाहिए तुम्हें, अभी तोड़कर लाती हूँ यहाँ बैठो।
1: अरे वाह, क्या बात है, ये खुद लिखी है आपने लाइनें, मुझे ऐसा लगता है।
0: जी, लिखी रही है, मतलब मैंने चुराई है ये।
1: ओके, मुझे लगा कि आपने लिखी है, क्योंकि आपके आसपास इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी करती रहती है ये लड़की।
0: हाँ जी बिल्कुल, और भी मैं एक शायरी और खास लाइबा के लिए बोलना चाहती हूँ, और कुछ इजहार भी करना चाहती हूँ।
1: जी जी जी सुनाइएगा, क्या कहना चाहती हैं आप?
0: ये मेरे दिल की आवाज है। किसी को प्यार हम बेशुमार करते हैं, किसी को प्यार हम बेशुमार करते हैं, एक तरफा ही मगर बेहिसाब करते हैं। काश वो समझे मेरे लफ्जों के इशारों को, काश वो समझे मेरे लफ्जों के इशारों को, कि हम शायरी में भी प्यार का इजहार करते हैं, कि हम शायरी में भी प्यार का इजहार करते हैं।
1: बहुत खूब यार, कमाल कर दिया आपने तो अफरोज, एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। जी जी जी बिल्कुल कहिएगा।
0: दीदी, और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही मुझे रिप्लाई मिलेगा।
1: हाँ हाँ बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं आप?
0: दीदी, मैं लाइबा से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू लाइबा,
1: ओके
0: रियली आई लव यू।
1: हाँ, तो वो आपका जो संदेश है उन तक पहुंच गया होगा आपकी बेस्ट फ्रेंड के पास, एंड
0: दीदी,
1: हाँ
0: और मेरे साथ में मेरी दोस्त है, जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा कासमी,
1: हाँ
0: और मेरी सिस्टर है नजमा आपकी दरख्सा।
1: ओके, तो चलो आपकी फ्रेंड्स के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। थैंक यू आपने कॉल किया हमें,
0: थैंक यू दी, बाय।
1: बाय, मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक अफरोज की पसंद पर, एंड बहुत ही प्यारा टाइटल ट्रैक है, तो सुनते हैं इस गाने को।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और वक्त मैं आपको बता देती हूं एवरीवन, समय हुआ है 3:41। हाँ जी, 3:41 राइट टाइम स्टोर की घड़ी में टाइमिंग हो गई है। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना द्वित नारायण, साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़, टाइटल ट्रैक क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना। हम भी आपसे एक बात कहना चाहते हैं और वो ये है कि दोस्तों, एंड इतना प्यारा सा मौसम है बाहर, और इस मौसम में अगर अपना फेवरेट गाना हो जाए तो हर बात कुछ और हो जाएगी, है ना, खूबसूरत हो जाएगा ना, और ये मौसम और भी ज़्यादा। तो फिर देर किस बात की है, फटाफट से फ़ोन उठाइए और मुझे कॉल लगाइए। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अभी अपने अगले फरमाइशकर्ता जी के साथ। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर?
1: खुशी जी, आदाब।
0: आपको भी आदाब, नाम बताइएगा अपना।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेड़ा से वसीम अगरम बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: अच्छे मैम, जब जब आपसे बात हो जाती है तो फरमाइश में हाल चाल और भी अच्छे हो जाते हैं।
0: ओके, तो बताइएगा सर मौसम कैसा है आपकी साइड?
1: देखिए मैम, यहाँ पर गोरेग्राम में तो बारिश हो रही है हल्के, उसके साथ साथ आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं तो काफी सुहाना मौसम हो रहा है मैम।
0: ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, गुरुग्राम में भी बारिश का आनंद ले रहे हैं आप सर। तो बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: देखिए मैम, मैं कहना चाहूँगा कि रब करे जिंदगी में ऐसा मुकाम आए, मेरी रूह और जान आपके काम आए, हर दुआ में बस यही मांगते हैं रब से कि अगले जन्म में भी आपके नाम के साथ मेरा नाम आए।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सी शायरी है आपकी सर।
1: लेकिन मैम, जब हेलो फरमाइश में रामपुर से कॉल शामिल हो रही है, मूवी का नाम है आशिकी और उसमें एक सॉन्ग है तेरे बिन जी लेंगे हम, कुछ टाइप के बोले।
0: अच्छा,
1: और मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं।
0: जी बताइएगा।
1: डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़ा अंडर से मोहम्मद कामिल और जितने भी सुनने वाले सभी दोस्त थे, सभी के लिए सॉन्ग डेडिकेट रहेगा मैम।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ और तमाम सुनने वाले श्रोताओं के साथ सुनवाते हैं गीत आपको। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे भी गपशप। तो आप जल्दी से कॉल लगाइए, क्यों इंतजार कर रहे हैं? हाँ मुझे पता है आप अभी कुछ नहीं कर रहे, घर पर आराम से बैठे हैं, तो जल्दी से कॉल लगाओ।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने एक खूबसूरत सा गीत सुना फ्रॉम द मूवी आशिकी, कुमार सानू जी की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: आपको भी हमारा प्यार वाला नमस्कार।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: मैं गांधी समाज रामपुर से आज अखबार का आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आपके स्टूडियो में क्या हाल है?
0: हाँ जी सब बहुत ही अच्छे हैं सर। आप बताइएगा आज रामपुर का मौसम कैसे है आपके यहाँ का?
1: मौसम अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और हवा के साथ में बारिश हो रही है।
0: हाँ जी, ठंडी हवाएं चल रही हैं, साथ में बारिश भी हो रही है।
1: जी
0: तो बताइएगा सर, इस सुहाने से मौसम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: मूवी का नाम है तेरी ओर, इसका टाइटल सॉन्ग सुनना चाहूँगा।
0: अच्छा, टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं आप?
1: जी, सुनने वालों के नाम है।
0: जी बताइएगा।
1: राधे खान है, सिमरन खान है, अयुबा है, जिशान मारती है, शनाज बाबू अंसारी, मिराज अंसारी, शफी अहमद अंसारी, रही दूला अंसारी, शानूर अंसारी, मकसूद हुसैन, रजा हुसैन,
0: ठीक है सर। आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। आपने कॉल किया, शुक्रिया आपका।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये टाइटल ट्रैक, अमीर सिंह गाना है, बहुत ही प्यारा। राहत फतेह अली खान साथ में श्रेया घोषाल जी दे रही हैं साथ। तो सुनते हैं ये गाना और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: बिल्कुल जी, हम तो आपके और चले आए हैं, अब आपकी बारी है, आप भी हमें फोन लगाइए, हमारे पास खींचे चले आइए हमारे एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। अच्छा, पकौड़े भी लेकर आइए। हाँ, आप ये कहना चाह रही हो?
1: तुम कहना चाह रही हो?
0: नहीं नहीं, मैंने ऐसा, मेरा कोई इरादा नहीं है बहन, मैं तो चाहती
1: हूँ अगर थाली में आ जाए तो एक पकौड़ी नहीं छूटेगी।
0: ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, देखो
1: है।
0: इतना प्यारा मौसम है,
1: हम कभी शरीफ नहीं बनना चाहिए, जो रियलिटी वो है ना।
0: नहीं, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, मुझे कहने का मौका दो।
1: पकौड़े किसको पास? देखो, जब रीना बोलती तो बोलने का मौका नहीं
0: देती। नहीं, ये तो थोड़ा सा मुझे भी यार, अपना मेरा भी चांस हो। मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, इतना सुहाना मौसम, ऊपर से गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और चाय आ जाए, तो कौन इंसान है जो रुक सकता है? कौन है जो नहीं रुक सकता? नहीं नहीं, खाने की बात नहीं बोली, मैंने कहा इतना सुहाना मौसम हो,
1: चलो इसी बात
0: हर किसी का दिल आ जाए। कौन मैं? हाय रब्बा, मेरा शो कौन करेगा?
1: अरे शो तो मैं करती हूँ।
0: हाय, देखो इससे अच्छा तो तुम ही कर लो यार, तुम ही लेकर आ जाओ बनाकर। देखो मैम, लड़की कितनी चलाक बन रही है। हाँ,
1: तुम अच्छी बनाती हो।
2: ऐसा करो, शो मैं करती हूँ और आप दोनों पकौड़े बनाती
1: हो। तालियां हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगी।
0: हमारी नूरी मैम भी हमारे साथ में आज बैठी हुई हैं और ये भी इस शो का लुफ्त उठा रही हैं लाइव बैठकर। तो हमने कहा चलिए आप भी हमारे साथ यू नो एंजॉय कीजिएगा मैम। और अभी अपनी कॉलर से भी बात कर लेते हैं, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार।
3: नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: हाँ, अपना परिचय भी देंगे मैम। और एक पहले हम फिल्म का नाम बताते हैं, फिल्म का नाम रहेगा दो रास्ते
0: जी।
3: गाने के बोल, फिल्म का नाम रहेगा दो रास्ते, गाने के बोल रहेंगे, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, ये गाने के बोल रहेंगे।
0: छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई।
3: जी जी जी जी,
0: हाँ ये वाला ट्रैक है। ओके, तो बताइएगा अपना नाम भी अभी।
3: जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन से बोल रहा था मैम।
0: जी बताइएगा सर, कैसा मौसम है अमरोहा का?
3: देखिए मैम, लगभग 2:30 बजे से बहुत अच्छी बरसात हो रही है इस टाइम पर।
0: ओके।
3: और बारिश में अभी कुछ देर पहले नहाके निकले हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे थे रेडियो पर।
0: जी जी,
3: तो अच्छा लग रहा था।
0: थैंक यू।
3: ठंडा मौसम हो गया, बारिश अब भी हो रही है मैम, अच्छा लग रहा है मौसम।
0: मौसम बहुत सुहाना हो गया।
3: दो तीन दिन काफी गर्मी अच्छी रही और सुबह से भी गर्मी काफी थी।
0: जी जी,
3: बारिश से कुछ राहत मिल गई।
0: हाँ, बारिश हुई है तो राहत मिल चुकी है, बिल्कुल सही कहा आपने। और सर सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: मैम कुछ नाम दे?
0: बस दो ही नाम ले सकते हैं आप, ज्यादा नहीं ले सकते हैं सर।
3: देखिए, खाने दिन मोहल्ले से है इरफान खान।
0: हाँ,
3: और मोहम्मद आलम सिद्दीकी।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सुनिएगा ये प्यारा सा गीत, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, मोहम्मद रफी साहब जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़। और मैं लौट कर आने वाली हूँ इस प्यारे से गाने की उस पार, साथ में लता मंगेशकर जी भी दे रही हैं साथ।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
5: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
6: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
6: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद से
5: संपर्क कीजिए।
6: नियम और शर्तें लागू।

0: क्या बात है दोस्तों, इतना खूबसूरत गाना अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी दो रास्ते जो 1969 में आई थी, राजेश खन्ना और साथ में मुमताज जी पर फिल्माए गए बेहतरीन ट्रैक। अभी आपने सुना लता मंगेशकर जी साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की खूबसूरत आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। आप भी ऐसे खूबसूरत गीत अगर सुनना चाहते हैं तो हमें बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हैं। माना कि आप चाय पकौड़े खाने में थोड़ा सा व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल लीजिएगा। देखिए, हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे लिए चाय भिजवाइए, बस हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें कॉल तो कर लीजिए। उसके लिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। ओहो हो, मुस्कुराने लगे हैं सुनकर बातें खुशी की। खुशी चाहती भी है कि आप सब हमेशा खुश रहें। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी, कैसी हैं आप मैम?
1: मैं तो ठीक हूँ मैम।
0: हाँ जी, आई एम गुड। क्या नाम है आपका?
1: सोना बोल रही हूँ मैम।
0: ओके, मैं चांदी बात कर रही हूँ। कैसी हैं सोना जी आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, तो बारिश हो रही है।
0: हाँ जी, बारिश हो रही है। आप कुछ बना भी रही हैं शायद, मुझे साउंड आ रही है बर्तन की आपके बैकग्राउंड से।
1: नहीं, बना तो नहीं रही, बैठी थी
0: बस। अच्छा, खटपट की आवाज आ रही है, मुझे लगा हो मैम हमारी बातें सुनकर शायद किचन में कुछ बनाने पहुंच चुकी हैं। अच्छा तो बताइए सोना जी, क्या सुनेंगे आज आप? अच्छा,
1: तुम निभा जाता
0: है। बहुत खूबसूरत गीत आपने चुना है मैम, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। थैंक यू सो मच सोना जी कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सोना जी कहती हैं थैंक यू मैम। अब इतना प्यारा गाना सुनवाएंगे तो थैंक यू तो बनता है ना। चलो ये प्यारा सा गाना आप सब भी इंजॉय करो।

0: दोस्तों हम तो आपके साथ ही हैं, हम आपसे दूर कहाँ जा सकते हैं बताइए। इतना प्यार आप करते हैं फिर मुरादाबाद से और हम सभी प्रेजेंटर से, तो हम कैसे आपको मतलब याद के बिना कैसे रह सकते हैं। हम
1: एवरीडे टपक रहे शो कर रही है,
0: हम एवरीडे आपसे मुलाकात करने आते हैं 3 से 5। और देखिए श्रोताओं, वक्त की अगर बात करें तो समय हुआ है 4:15 और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो,
2: हेलो फरमाइश,
0: गुड इवनिंग। आपको भी वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर। क्या नाम है आपका? अरे वाह क्या बात है निखिल, कैसी हैं आप बताइएगा हमें, कैसे हाल चाल है आपकी डियर? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, कहाँ खोए खोए हो आप? हाँ लगता है कि बारिश की बूंदों को आप ज्यादा गहराई से सुन रही हैं। हाँ
2: हाँ जी,
0: ओके। हाँ बाहर बारिश का नजारा कितना खूबसूरत है ना?
2: हाँ जी बहुत ज्यादा खूबसूरत।
0: बिल्कुल आपकी तरह।
1: 2-3 दिन हो जाए उड़ीसा वाला काम हो जाएगा, उड़ीसा में पूरा डूबा पड़ा है।
0: हाँ यार नहीं ज्यादा नहीं,
2: तो क्योंकि गर्मी भी तो बहुत ज्यादा थी ना।
0: हाँ
1: कंबल ओढ़ के सोने पड़ेगा आपको।
0: ब्लैंकेट तो नहीं ओढ़ी? ओ रीना जी कह रही है कि अब आपको ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ेगा क्योंकि अब बारिश कंटिन्यू हो रही है।
2: हाँ जी हुआ था ना, 3 दिन लगातार बारिश हो रही थी तो यही करना पड़ा था।
0: हाँ तो बताइएगा आज कौन सा गाना सुनोगे आप निखत?
2: बारिश का ही सॉन्ग सुनूंगी, ये मौसम की बारिश।
0: ओहो क्या बात है, बहुत ही प्यारा ट्रैक आपने चुना है हाफ गर्लफ्रेंड से। देखो आपसे ना एक सवाल कर रहे हैं यहाँ पर रीना जी कि आपने बारिश के टाइम पे जलेबी खाई है क्या?
2: हाँ खाई है, मैं खाती हूँ ज्यादातर।
0: अच्छा
1: बारिश के मौसम में?
2: हाँ जी खाई है।
1: चलो आज बारिश हो रही है खाओ आप।
2: हाँ जी आप भी आइए ना आपके साथ खाएंगे।
1: भिजवा दीजिए आप।
0: अच्छा रीना जी कह रहे हैं भिजवा दीजिए आप, हम नहीं आएंगे आप ही भिजवा दो।
1: एड्रेस बता दी, हम भीगते भीगते आ जाएंगे तुम्हारे घर।
2: मैं आ जाऊंगी ना लेने के लिए आपको।
0: अरे थैंक यू इतनी मोहब्बत के लिए यार।
1: नहीं तुम तैयार
2: रहना, मैं आ जाऊंगी।
0: हम तैयार ही रहते हैं। आप आओ सही,
2: आ जाऊंगी
0: ठीक है। हाँ बिल्कुल इंतजार हम आपका करेंगे। एंड
1: कितना वेट इंतजार कराओगी, 1 साल 2 साल?
2: नहीं जी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा।
1: हाँ। थोड़ा ठीक है।
0: हाँ। मतलब महीने भर तो रीना जी कह रही है 1 मंथ तो इंतजार करना पड़ेगा ना?
2: अभी पहले ही आ जाऊंगी इंशाल्लाह।
0: अच्छा चलिए हम इंतजार है आपका, आप जल्दी से आइएगा।
2: हाँ, तो
0: निखत हम सुनवाएंगे आपको ये प्यारा सा गीत। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बिल्कुल कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप?
2: ये लोग परवर बिगाड़े आखे, ये रोग परवान जमाने आखे, कसम खुदा की कमाने आखे, हजार इनसे कत्ल हुए हैं, खुदा की बंदी संभाले आखे, आप चिल्ले दे।
0: थैंक यू।
1: मैं तो घायल हो गया था दो बंदे रास्ते में।
0: अरे रीना ऐसा मत करो यार,
1: खुशी को देखकर घायल हो गया हमने, फिर उसके ऊपर पानी और डाला बेचारा।
2: हम जैसे श्रोता लोग हुए हैं ना आपके दीवाने।
0: हाँ,
1: नहीं नहीं मैं तो लाइव बता रही हूँ, लाइव प्रूफ दे रही हूँ आपको।
0: अरे वो मजाक कर रही है निखत, रीना जी ना थोड़ी सी नटखट लड़की है। हाँ जी बिल्कुल, आप भी यूं ही मुस्कुराती रहिए। बिल्कुल श्योर यार, थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर डियर। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गाना निखत फातिमा की रिक्वेस्ट पर। बारिश, ये मौसम की बारिश, ये बारिश की बूंदे, बहुत ही प्यारा गाना है।
1: भिगो के चला जाए?
0: नहीं भिगोना तो, आप भीगना चाहोगे तो भिगो के जाएगा।
1: यार मैं सोचती हूँ हमेशा जब मेरे संडे को छुट्टी होती है ना मैम, मैं सोचती हूँ कि उस दिन बारिश आए, लेकिन उस दिन बारिश नहीं आती कभी। मेरे साथ संडे को मेरी छुट्टी रही, बारिश नहीं, मेरे को ऐसा लगता है भाई यार संडे वाले दिन इतनी बारिश होए आराम से मैं सोऊं गर्मी ना लगे,
3: ऐसा नहीं
1: पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं,
3: होता ही नहीं है।
1: कल संडे था, मैं सोचा कि काश यार बारिश आ जाए। किस टाइम बारिश आई?
0: इवनिंग टाइम में बारिश आई थी ना, आई रिमेम्बर,
1: पूरे दिन गर्मी।
0: तो चलिए दोस्तों ये प्यारा से गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी
4: अरे चिंता मत करो राधा अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा

0: हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। ये प्यारा सा गाना अभी आपने सुना, अमेजिंग गाना फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड से, और हमारे साथ एक लिसनर भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार मैम, मैं मनोज कुमार सैनी बात कर रहा हूँ।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: मैं काशीराम नगर से बात कर रहा हूँ।
0: काशीराम नगर से, ओके। क्या करते हैं आप सर?
1: बस मैम अपना प्राइवेट ही हूँ मैम।
0: ओके, आपने अपनी साइड रेडियो की वॉल्यूम इतनी बढ़ा के रखी हुई है ना कि आवाजें रिपीट हो रही हैं।
1: बस मैम गाड़ी में बैठे हुए थे, बारिश हो गई थी तो बस गाड़ी में, बारिश के साथ साथ गाड़ी में निकल गए थे।
0: ओके अच्छा अच्छा, ऑन द वे कार में आप हैं तो बताएगा आज कौन सा गाना आपको सुनना है सर?
1: बस मैम बारिश को देखते हुए तो गाना याद आ रहा है मैम, घर से निकल आया और बोतल भी उठा लाया।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको।
1: बस मैम मेरे साथ कुछ मेरे मित्र भी हैं।
0: हाँ जी बताएगा।
1: मैम एक अनुज भाई है हमारे, समीराज है
0: जी,
1: शीशपाल है
0: जी,
1: इंद्रपाल है।
0: ओके
1: जी, बस और एक दो और अन्य हैं मैम।
0: ठीक है सर, आपकी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना, आपने कॉल किया धन्यवाद आपका। तो चलिए एवरीवन, मनोज सैनी जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी। हाँ, इस मूवी का नाम बड़ा ही प्यारा सा है, नाजायश, और गाना भी बहुत खूबसूरत है। बरसात के मौसम में बहुत सारे श्रोताओं का ये फेवरेट गाना है, और जैसे ही कुछ श्रोताओं ने ये ट्रैक सुना कि ये प्ले होने वाला है तो वो तो खुश हो गए, ओहो मेरा पसंद का गाना चलने वाला है भाई। तो चलो दोस्तों सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, उसकी बात करते हैं आपसे भी बातचीत। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश, ये फोन इन कार्यक्रम है लाइव। आप यहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं। साथियों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना कुमार सानू साथ में रूप कुमार राठौर जी की खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक जी और लिरिक्स से सुदर्शन जी के बहुत ही प्यारे से। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जागीर बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप? सर
1: आप सुनाइए।
0: हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: बारिश का मौसम है तो बारिश का गीत सुनना है।
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, बारिश का गीत आपको सुनवाएंगे। बताइए क्या, कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
1: मूवी का नाम है चांदनी और गीत के बोल है लगी आज सावन की फिर वो
0: झड़ी। ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: ओके मैम।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम इस प्यारे से गाने के इस पार। आप भी मुझे फोन लगाइए, नंबर है 9837896896।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं। अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी चांदनी सी। देखिए, सावन की झड़ी तो अभी नहीं लगी है, भले ही बारिश हो रही हो, बट सावन आने वाला है और 3 दिन रह गए हैं। आज 27 जुलाई है और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: हाँ, नमस्ते। मैं
0: जी, बताइएगा अपना शुभ नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप? शंकर गुप्ता नाम है, होटल प्रेम सुंदरिया से कुछ बाजार से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, ओके, बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके सर?
1: बस आपका दुआ है, आप लोग के न्यूज सुन के और प्रोग्राम सुन के हम बहुत अपने आप को समझते हैं कि आप लोग से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। इतना ज्ञान मिलता है कि ताकि कोई मीटिंग में बैठेगा उतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना आप लोग से ज्ञान मिलता है।
0: ओके, तो आप हमारा रेगुलर शो सुनते हैं सर?
1: जी जी, आपका हुआ, रीना मैम का हुआ, एक कभी कभी साई हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, राइट।
1: जी जी, हर आदमी आता है। तो हम ये सब समझिए कि जिस दिन पार्टी होती है उस दिन तो हमें टाइम मिलता नहीं है
0: जी
1: सुनने का। जिस दिन पार्टी नहीं होती है उस दिन समझिए कि इतना तमन्ना सुनते हैं। एक तो आपकी नेम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी जो लैंग्वेज है आदमी को आकर्षित कर देती है कि आदमी गुस्सा हुआ भी वो नॉर्मल हो जाएगा।
0: अच्छा, थैंक यू।
1: आपकी और रीना मैम की भावनाएं इतनी है कि 100 लेडीज एक तरफ, आप लोग इतनी कैच करते हो बातें के, इतने जानकारी देते हो कि शायद कोई मीटिंग में जानकारी हमें ना मिले।
0: अच्छा, ये बताइएगा आपकी जो लैंग्वेज में ना थोड़ा भोजपुरी टच आ रहा है, तो हमको बताओ आप कहाँ के रहने वाले हैं सर प्रॉपर?
1: और सच्चाई बताए, हम आए पटना के में।
0: अच्छा, आप पटना से हैं? अरे वाह,
1: पटना के हैं और हमें ये जो प्रेम बंडल लैंड है।
0: हाँ जी, हाँ जी, या
1: प्रेम बंडल लैंड है जो हमारे ओनर का है।
0: ओके,
1: जो प्रेम सुंदरिया से ही प्रेम बंडल लैंड बना है।
0: हाँ जी, हाँ जी सर,
1: जी प्रेम बंडल लैंड भी हम लोग को जाना होता है जब पार्टी होती है तो।
0: ओके, तो आप मुरादाबाद में कितने साल से रह रहे हैं सर?
1: हमें 27 साल हो गया, मेरी फैमिली भी रहती है, ससुराल अमरोहा की है।
0: ओके, तो आपको 27 इयर्स हो गए हैं और आज 27 तारीख भी, आपको पता है 27 साल हो गए और 27 तारीख है आज। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो सर, तो सुनवाते हैं,
1: आप लोग की दुआएं हैं।
0: हाँ,
1: आपसे बातें करके हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि हम आपकी आवाजें, रीना मैम की आवाजें, सर की आवाजें हम सुनते थे तो हम कहते थे यही कि ना पूरी कोशिश करेंगे कि कभी ना कभी तो हमें बात करने को मिलेगा तो हम अच्छा ही बताएंगे।
0: थैंक यू सर। देखिए, आपने प्रयास किया और इतना हमें अप्रिशिएट किया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद सर। ऐसे ही हमेशा
1: कोई अगर मौका हो डेकोरेशन तो आप

0: से बताइए।
1: बिल्कुल सर, बताएंगे आपको। थैंक यू, आपने कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना। आपने कहा कि हम पटना से हैं, तो एक बेहतरीन ट्रैक आपको सुनवाते हैं, ठीक है सर? मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, अब पटना वाले आए हैं तो गाना भी होना चाहिए ना बिंदास। तो चलिए सुनते हैं एक अमेजिंग गाना, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896, और वक्त भी बता देती हूँ 4:45 हो गए हैं, फटाफट से कॉल लगा लीजिए, 15 मिनट आपके पास हैं।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, बारिश की हर बूंद जैसे जिंदगी का पैगाम लेकर आती है कि बारिश की हर बूंद जैसे जिंदगी का पैगाम लेकर आती है। कहती है कि हर मुश्किल के बाद सुकून की एक फुहार जरूर आती है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, परेशानियां हैं, तो थोड़ा सा एक इंतजार कीजिए, वो खुशी का पल भी आएगा। क्योंकि चाहे गम के बादल हो या फिर खुशी की बारिश, दोनों बदलते रहते हैं समय के साथ, कुछ नहीं रुकता है। लाइफ में बस मुस्कुराना आना चाहिए, पर हर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर लोगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, मुस्कुराना कभी भी मिस मत कीजिए। आपका इतना प्यारा सा चेहरा है, जब आप मुस्कुराते हैं तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अभी मैं आपको समय बता देती हूँ, 4:53 हो गए हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: खुशी बेन बोल रहे
0: हैं। हाँ जी, मैं खुशी बात कर रही हूँ। जय श्री कृष्णा। मजा माँ, आप कैसे हैं बताइएगा।
1: आनंद।
0: अच्छा, आनंद में है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नाम बताइएगा अपना।
1: मैं जाला रमन लाल बोल रहा हूँ, द्वारका जिला से, गांव मेटपति चौड़ी से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आपके परिवार में सब।
1: परिवार में सब सुख शांति है,
0: सबको आनंद में रहना चाहिए। बताइएगा, गुजरात का मौसम कैसा है।
1: गुजरात में हमारे यहाँ बारिश कम है।
0: अच्छा, बारिश कम है आपके यहाँ पर।
1: कम है बारिश।
0: ओके, तो बताइएगा, आपने गुजरात से हमें कॉल किया है, आज क्या फरमाइश है आपकी।
1: आज फिल्म है संगम फिल्म के, गाना है मेरे मन की जमुना और तेरे मन की गंगा, बोल राजा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे वो साथी मित्र है, उसको बहुत पसंद है, वो भी मेरे जैसे दर्जी काम करता है, वो कोटला चकार के कच्छ के हीरेन भाई सुपेड़ा।
0: ओके, तो आपकी दोस्त को भी गाना पसंद है, सुनवाते हैं गीत आपको।
1: पसंद है, कच्छ के मित्र सभी है, गिरीश भाई सोलंकी है, धीरज भाई रबारी है, गज्जर है भाई, धीरज भाई, सभी सुनता है।
0: ठीक है सर, थैंक यू, सभी को कहिएगा हमारी ओर से। और सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। और दोस्तों, अगर आपका कॉल नहीं लगा है ना, तो आप परेशान मत होइएगा, आपके पास ये मौका अभी है। आप हमें सैटरडे कॉल कर सकते हैं, जिनका आज कॉल नहीं लगा है वो कल भी ट्राई कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है और आप पर भी पूरा विश्वास है कि आप कल कॉल जरूर करेंगी। लेकिन फिलहाल अभी तो मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। नेक्स्ट शो प्रेजेंट करने वाली है आरजे रीना जी, तो आप उनको भी एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, यूं ही खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और खूबसूरत गीतों का आनंद लेते रहिए।

0: राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: जज्जा

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: श्री बिरला ने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माले बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने SIT को जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

गुड वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ती शो में अर्जेरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता, और समय की बात करूं तो 5:17 हो चुके हैं, यानी कि 2 घंटे के लिए अर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट करेंगे। आज का डे हमारे लिए बहुत खास है, और पता नहीं चलता कि कब संडे और कब मंडे आ जाते हैं। यानी कि संडे तो मंडे वाला फीलिंग देता है, यानी कि सुबह सुबह तो लगता है हाँ यार आज तो संडे, लेकिन जैसे ही शाम होती है बस मंडे की तैयारी होने लग जाती है। मतलब संडे की छुट्टी का तो पता ही नहीं चलता कि है या नहीं है। फिलहाल अर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्टेड होता हूँ, और वेदर की बात करूँ तो अभी टेम्परेचर यानी कि मुरादाबाद का है 36 डिग्री सेल्सियस, और हल्की हल्की रिमझिम बारिश। लेकिन ये बारिश आपको भी पता है कि 3-4 दिन तक ये बारिश बता रखी है, यानी कि एकदम तो आपको लगेगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है। मतलब वेदर आपको बिल्कुल क्लीन दिखेगा और एकदम बारिश आ जाएगी, और इस बारिश का आनंद हर कोई ले रहा है। हर कोई भाई वीडियो फोटोज बना के इंस्टाग्राम पर तो पहले ही डाल देते हैं। मतलब बारिश आती नहीं लेकिन इंस्टाग्राम पर वीडियो जल्दी अपलोड हो जाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लूंगी एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके साथ बाद में हम कनेक्ट होंगे, फिर बात करेंगे। और कहते हैं श्रोताओं, अपनी भावनाओं को साफ रखिए, दूसरों तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा आपको, इसलिए पहले खुद को चेंज करिए तब आप दूसरों को चेंज करिएगा। क्योंकि जब हम खुद चेंज नहीं होते, दूसरों को आप चेंज करने जाओगे तो वो 70 बात आपको ही सुना देगा। बेटर है कि आप खुद को चेंज।

गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 इवनिंग मस्ती शो में है श्रोताओं आप। और समय की बात करूं तो 5:26 हो चुके हैं और ये समय यानी कि हर कोई ऑफिस से घर के लिए निकल चुके होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं आज तो मौसम भी यानी कि फिल्मी मूड में हो गया है। अगर आप इस वक्त मुरादाबाद की सड़कों पर है तो जरा संभल कर चलिए। बारिश की वजह से पीली कोठी चौराहा, बुद्ध बाजार, मानसरोवर कॉलोनी और कटघर चौराहा, दिल्ली रोड और रामगंगा पुल के आसपास ट्रैफिक थोड़ी धीमी हो सकती है। कई जगह पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार है वो कम हो जाती है। और अगर आपकी बाइक भी बारिश के बीच में यानी कि देखिए जहाँ पर आप बाइक चला रहे हो और एकदम जहाँ बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो और आपकी बाइक एकदम रुक जाए तो आप उस टाइम क्या करेंगे। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा हुआ है बाइक और गाड़ी उस एरिया में ले जाने से बचे, उस सड़क पर ले जाने से बचे। जैसे साइलेंसर में पानी जाएगा आपकी गाड़ी वहीं रुक सकती है। और साथ ही साथ अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है। गाड़ी एकदम पूरी रफ्तार में आपको नहीं चलानी है। अगर आप रफ्तार में गाड़ी चलाते तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो आसपास वाले पैदल सवारी है, ई रिक्शा वाले हैं, उनके कपड़े तो ऑलरेडी खराब हो जाएंगे। इसीलिए बरसात के मौसम में आपने ज़्यादा रफ्तार में गाड़ी नहीं चलानी है, आराम से चलानी है। और जहाँ पर कीचड़ वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ तो और संभल कर चलानी है। पता चले आप गाड़ी को सुबह ही अच्छे से क्लीन करके लाए हैं और वो ऐसी उसकी मतलब आप ऐसा उसका हालत बना देंगे कि घर जाकर आपको फिर से वो एक ही बात बोलेगा, अरे साहब पहले हमें अच्छे से क्लीन करो तब अगले दिन लेकर जाना। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए आराम से गाड़ी चलाइए और आगे निकलिए और मूड को थोड़ा तरोताजगी बनाइए, क्योंकि अगला गाना भी बहुत ही शानदार है, एकदम फैंटास्टिक वाला है। और इसके बाद बात करेंगे यानी कि आप सभी अगर इंस्टा खोल रहे होंगे तो एक बहुत ही प्यारा न्यूज़ यानी कि तहलका मचा रहा है और वो है बेटियों के लिए। कहते हैं ना अगर संघर्ष आप करते हो तो आप हर मुकाम को हासिल कर लेते हो, अगर जब आप हार गए तो जीता हुआ भी संघर्ष आप हार जाते हो। तो उसके बारे में बात करेंगे आखिरकार उनका क्या नाम है क्या नाम नहीं है, बचपन से लेकर अब तक की उनकी स्टोरी यानी कि इतनी स्ट्रोंग नहीं रही है लेकिन फिर भी उनके साहस ने उनको यानी कि अपने देश को 3 मेडल दिए हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। चलिए जी लौट कर आते हैं।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

गढ़ वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 से रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:38 हो चुके श्रोताओं, और आप सोच रहे होंगे ना कि आज बारिश का दिन है और रेट्रो सॉन्ग, यानी कि सच बताऊं रेट्रो सॉन्ग ना सदा बहार वाले गाने होते हैं, ऑल टाइम आप सुन सकते हो। आज आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि आज रीना मैडम रेट्रो सॉन्ग कैसे चला रही है। तो देखिए जी, चाहे हम न्यू जनरेशन में क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे रेट्रो जो सॉन्ग है बहुत पसंद है, और मैंने सोचा कि चलिए आज आप सभी के लिए गाना प्ले कर देते हैं रेट्रो वाला। और फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं जो कि इंस्टाग्राम पर तहलका मचा हुआ है। आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए, घर पर आप है तो टीवी खोल के देख लीजिए, तभी भी हर जगह यही है। यानी कि आज मैं बात करने वाली हूँ मीराबाई चानू की। यानी कि मीराबाई ये चानू कौन है जिन्होंने देश को 3rd gold medal दिया है। उनकी कहानी बहुत ही डिफरेंस, बहुत ही अलग, सोच से परे, लेकिन साहस हौसला इतना ज्यादा कि सब फीकी पड़ गई। यानी कि एक समय ऐसा था जब काम करते करते थकती नहीं थी। यानी कि ये मणिपुर के एक छोटे से गांव की जन्मी मीराबाई का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता साधारण नौकरी करते

जाती थी, तब जाकर प्रैक्टिस करती थी। और इतना कुछ अच्छा भी नहीं था कि हाँ चलो भाई ठीक है कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने से पहले ये सीमेंट के कट्टे उठाती थी, पत्थर के कट्टे उठाती थी, ताकि वेट जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा ये वेट उठा सके। यानी कि जिस उम्र में हम नाक साफ करते हैं उस उम्र में ये लकड़ियां ढोती थी, वजन ढोती थी। सोच से परे है कहानी, लेकिन कहते हैं ना, आपको खुद नहीं पता कि कल आपकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली है। हमें खुद नहीं पता होता है, लेकिन हम काम करते रहते हैं। लेकिन वो हार कभी नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब 2016 यानी कि मेहनत करने करने के बाद वो फिर दौर आया 2016 का, जब ओलंपिक में ये हार गई थी, गोल्ड मेडल नहीं दिला पाई थी देश को, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। इनका कहना था कि जब मैं बचपन से इस काम को कर रही हूं, तो अब मैं एक हार से अपने आप को हार थोड़ी हासिल कर लूंगी, थोड़ी मान लूंगी कि मैं हार गई हूं, मैं जीती हूं, क्योंकि मैं वहां तक पहुंची हूं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। फिर उन्होंने कभी वापसी मुड़कर नहीं देखा, बल्कि शुरुआत ही करती रही वो। फिर आया 2017, जब विश्व चैंपियन बनी, भारत को यानी कि गोल्ड मेडल दिलाया, रजत पदक जीते, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और 2017 के बाद 2022 में इन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिया था, और अब 2026 में भी इन्होंने देश को तीसरा गोल्ड मेडल दिया है। तो कहते हैं श्रोताओं, हालात आपकी किस्मत नहीं लिखते, आपका हौसला आपकी किस्मत लिखती है, कि आपके अंदर हौसले कितने ज्यादा है। सो बस बरकरार रहिए, और मेरे पास जो मैसेज आए उनको भी शामिल करते हैं। कोहिनूर तिराहे की तरफ से अगर आप जा रहे हैं, तो वहां पर आपको भरपूर मात्रा में जाम मिलने वाला है श्रोताओं, तो आप कोहिनूर तिराहे की तरफ से मत जाइए। साथ ही साथ काठ रोड पर यानी कि हरथरा से लेकर सिद्ध हॉस्पिटल तक बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। अगर आप इस तरफ से जाने की सोच रहे हैं, तो अपना रूट जरूर चेंज करिए। और ये मैसेज पहुंचाते हैं हमारे पास आकाश चौधरी, मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि कोहिनूर तिराहे की तरफ से बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है, और काठ रोड पर और हरथला से लेकर यानी कि सिद्ध हॉस्पिटल तक पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। यानी कि अभी भी बात करूं तो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, और आप बाहर जा रहे हैं तो देखिए भैया, जो जिनको नहाना था उन्होंने तो नहा लिया है, लेकिन हम समय का भी वो रखिए कि समय यानी कि 5:53 हो चुके हैं। अगर आप सोच रहे कि इस टाइम में बारिश में भीग जाऊं, तो आप अपने नाक को साफ करते रहेंगे रात भर, इसलिए इस टाइम नहीं भीगना है आपको। कल फिर बारिश आएगी, क्योंकि बारिश तो अभी आने वाली है, तो कल फिर नहाइएगा, एंजॉय करिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप चाय और पकौड़े का आनंद लीजिए। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज आता है हमारे पास, गुड इवनिंग रीना जी, आपका प्रोग्राम हम रेगुलर सुनते हैं जी, मुझे पता है, और मैम आप एफएम पर नई नई जानकारियां सुनाती है तो बहुत अच्छा लगता है, और आज की शाम गाने बहुत ही शानदार आप प्ले कर रही हैं, यानी कि रेट्रो के सॉन्ग होते ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि बहुत शानदार होते हैं श्रोताओं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं यानी कि सोनू जी, सेक्टर 10, बुद्धि बिहार से। अगले मैसेज की बात करूं तो, क्या हाल है रीना जी, बहुत अच्छे हैं जी। नईमुल अकरम से कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं हमारे साथ सिसवा दोराहा से। अच्छा जी, टिप टिप बरसा गाना सुनना है आपने, टिप टिप बरसा पानी, बिल्कुल सुनाएंगे जी। फिलहाल के लिए ये गाना

ये तूने क्या किया। इसीलिए आप पैदल है श्रोताओं, तो थोड़ा संभल के, पता चले कि आप फिसल गए तो फिर आपके कपड़े खराब हो जाएंगे ना श्रोताओं, तो इसीलिए संभल के चलना है और अपना ध्यान रखना।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:53 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है उदित नारायण जी की आवाज में मोहरा मूवी से, जो कि ये मूवी 1994 में रिलीज हुआ था। और अब यानी कि देखिए, आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है क्योंकि बारिश झमाझम हो रही है और किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये क्या है, अरे बिल्कुल बताएंगे हम आरजे रीना के साथ, आप बस कनेक्ट रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। यानी कि अगर आप किसान हैं और किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी बनवाना चाहते हैं तो अब यानी कि जो इसकी इसका प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो गया है। ईकेसीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास दस्तावेज होना चाहिए यानी कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जरूरी दस्तावेज के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। और ये किनको किनको मिलने वाला है यानी कि फसल, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे जो आप कार्य करते हैं उनको भी केकेसीसी का यानी कि लाभ उठा सकते हैं आप। और समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में भी आपको लाभ मिलेगा, छूट का आपको लाभ मिल सकता है। और क्या करना है, अधिक आपको जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी बैंक शाखा या PSCS से संपर्क करें। किसान की तरक्की देश की तरक्की खुशहाली होती है, यानी कि किसान खुश तो देश अपने आप खुशहाल हो जाता है। और इसी के साथ बने रही आर्जरीना के साथ ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं। समय की बात करें तो 5:55 हो चुके हैं और हमारे पास यानी कि नए मुल्क अकरम जी का कहना है कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है रीना जी, थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि रेडियो की सुई बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। चलिए एक और शानदार गाना सुनते हैं और ढेर सारी बातें तो देखिए मेरे पास बहुत सारे मेरे पिटारे में बात करने के लिए लौट कर आते हैं। चलिए

0: क्या बात है, एक यानी कि सर का मैसेज आ गया है कि रीना मैडम आपने जो अभी यानी कि ई के सी सी के बारे में बताया है वो रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल जी। सो गट वाली इवनिंग है आज रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और इवनिंग मस्ती शो में समय की बात करूं तो देखिए 6 बजने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाकी है। लेकिन अगर आपने पूछा तो देखिए मुझे दोबारा तो कनेक्ट होना ही था ना। हाँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप किसान हैं और किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी बनवाना चाहते हैं तो आप यानी कि प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। यानी कि ईकेकेसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बस इसके लिए आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और भी दस्तावेज है जो आपके पास होने चाहिए। और ये जो किसान क्रेडिट कार्ड का यानी कि लुफ्त उठा सकते हैं फसल, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे कार्यों के लिए भी केकेसीसी का लाभ लिया जा सकता है। समय पर अगर ऋण चुकाते हैं तो आपको छूट भी मिल सकती है ब्याज में। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा जाइए और पीएसी से संपर्क करिए। किसान की तरक्की, देश की तरक्की यानी कि खुशहाली। किसान खुश तो हर देश हैप्पी है। चलिए फिलहाल न्यूज का टाइम हो गया है, मिलते हैं आपको श्रोताओं, बने रहिए आरजे रीना के साथ। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, यूं ही आरजे रीना के साथ।
1: सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास UP कॉरपोरेशन की मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई भैया, यानी कि 6:14 हो चुके हैं और आरजे रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है। और देखिए, सावन शुरू होने में बस 2 दिन और बाकी है, यानी कि सावन के महीने में ना, आपने अक्सर सभी से यही कहते सुना है कि सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनना चाहिए, जो कि शुभ माना जाता है ना, हरी चूड़िया पहनने से। लेकिन आखिरकार ये हरी चूड़िया क्यों पहनी जाती है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। अब बेधड़क बिंदास रिया जी, जब आपके साथ आरजे रीना है तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है जी, बिंदास बेधड़क रहिए, यानी कि
1: तो आग लगेगी,
0: बिल्कुल आग लगेगी जी। ये कहा जाता है कि ये कहानी शुरू होती है जब भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी की तैयारी चल रही थी। तब उस समय सभी देवी देवताओं ने माँ पार्वती को गिफ्ट में सोना, चांदी, हीरे, मोती, ज्वालात सब दिए। लेकिन भगवान शिव ये सोच रहे थे कि आखिरकार पार्वती के पास तो हर सब कुछ है, मैं दू तो दू क्या, समझ नहीं आ रहा। फिर उन्होंने यानी कि ग्रीन लाख की चूड़ियां बनवाई, हरी कांच की चूड़ियां बनवाई और अपना भेष बदलकर हिमालय के महल यानी कि पार्वती के घर गए। वहां पर उनके इस बदले हुए भेष को किसी ने भी नहीं पहचान पाया, कोई नहीं पहचान पाया कि ये हमारे साथ जो हमारे पास खड़े हैं आज हिमालय पर्वत के महल में आ गए हैं, ये साक्षात भगवान शिव है। और वही जब माँ पार्वती के कलाई में भगवान शिव हरी चूड़िया पहना रहे थे, तब माँ पार्वती उनको पहचान गई और उन्होंने पूछा कि ये हरी चूड़िया क्यों। तो भगवान शिव ने कहा, एक तो प्राकृतिक यानी कि संसार से हमें जोड़ती है, यानी कि ग्रीन का मतलब है ग्रीनरी, हरा भरा। दूसरा यानी कि सुहागन का ये प्रतीक होता है हरियाली में, यानी कि सावन के महीने में। तभी से जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को हरी चूड़ी गिफ्ट करी, तभी से, और वो महीना भी सावन का ही था, इसीलिए हर सावन के महीने में हरी चूड़ियां शुभ मानी जाती है श्रोताओं। और कहते हैं कि अगर आप ये दान करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। और सावन के महीने में माँ पार्वती को देखिए, खुद पहनने से पहले माँ पार्वती के आगे पहले उनको दान करिए, फिर आप पहनिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि ये जो हरी चूड़ी की परंपरा है ना, यानी कि माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह का ये यानी कि याद दिलाता है कि हरी चूड़िया उन्होंने पहले गिफ्ट करी थी माँ पार्वती को, इसीलिए हरी चूड़िया पहनने का जो परंपरा है सावन के महीने में, इसीलिए पहने जाती हैं। सो फिलहाल अगर मैं मैसेज की बात करूँ तो मैसेज आया हमारे पास, चलिए देखते हैं। तेरी आग दिल मेरा आग लगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग रीना जी, इवनिंग मस्ती शो में गुड इवनिंग जी। और आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं जी, बिंदास गाने सुना रही हैं, थैंक यू सो मच जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं नवीन नगर मुरादाबाद से, और इनका कहने की मैम बारिश झमाझम हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, चाय पी लीजिए। आज तो सच बताऊं मैंने अपना फेवरेट वाला चाय पिया है, यानी कि चीनी रोक के अदरक ठोक के यानी कि चीनी की क्वांटिटी बहुत नाम मात्र, अदरक की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा, कड़क वाली चाय, मजा आ गया सच में। अगर बरसात के मौसम में ऐसी चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाता है ना। कभी कभी चाय पी लेनी चाहिए, और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए तो जरूर पीना चाहिए, जब आपसे वो प्यार से पूछता है तो। चलिए अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती है भावना जी। हाय मैडम जी, होप मस्त होंगी आप। बिल्कुल जी, मैं बहुत मस्त हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। राधे राधे जी आपको, वेरी राधे राधे जी आपको, गुड वाली इवनिंग है, वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि हे स्वर सागर की रीना, आय हाय मुरादाबाद की मीठी बांसुरी, आय हाय क्या बात है जी, छुरिया चल जाएगी फिर तो, देख लीजिए। तुम्हारी आवाज जब रेडियो पर तैरती है तो ट्रैफिक का शोर भी भजन लगने लगता है। अरे बाप रे, क्या बात है जी, आपने तो सीधा दिल पे छुरी चला दी है। क्या लिखती हैं आप, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लिखती हैं आप। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, हरियाणा वालों, और कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आज तो बारिश करवा दी आपने। अजी आज आज नहीं, कल परसों भी बारिश आएगी, अब बेफिक्र रहिए आप, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। झमाझम बारिश हो रही है, बिल्कुल जी सही कहा आपने। इस झमाझम बारिश हो रही तो एक काम करिए, चाय पकौड़े भिजवा दिए हमारे स्टूडियो में। चलिए जी, फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं, और आज का क्या खास डे उस पर बात करेंगे। फिलहाल एक गाना बहुत ही शानदार, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए तभी मजा आएगा।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूं श्रोताओं तो 6:32 हो चुके हैं और आज की तारीख हमारे लिए बेहद खास है। और आज की तारीख यानी कि 27 जुलाई, इतिहास का वो पन्ना जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, यानी कि 27 जुलाई आज ही के दिन साल 2015 में भारत ने अपने सबसे प्यारे राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे के अब्दुल कलाम को खो दिया था। उन्हें यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी और बच्चों और युवाओं के लिए उनका प्यार। यानी कि कलाम जी का हमेशा कहना था, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। करेक्ट। आज के टाइम में उल्टा हो गया है, यानी कि लेट नाइट तक जाग हम उठे रहते हैं, जागते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, जिसका स्क्रीनिंग टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गया है। और आजकल के बच्चों पर वो माइंड पर हार्म हो रहा है, यानी कि हम सोते ज्यादा है, सपने बहुत कम। और जब वही हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम अनाप शनाप बकने लग जाते हैं। ये आखिरकार ये लाइन में क्यों कह रही हूँ कि आप जब भी इंस्टाग्राम खोलेंगे ना तो आपको बहुत ऐसी चीजें दिख जाएंगी। मुझे लगता है कि आप खुद पर काम करिए और आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में। जैसे डॉक्टर कलाम जी ने कहा, सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते हैं। बस किसी की बातों में आकर, बहकी बहकाई बातों में आकर मत गलत डिसीजन लीजिए। आप अपने काम पर फोकस करिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम भी बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने का संकल्प लें कि हम काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो बस अपने सपने पर फोकस रखिए, दूसरी की बातों में बिल्कुल मत आइए, खुद पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। ए मैसेज है यानी कि मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद सारिक अली, गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो सुन रहे हैं, इवनिंग मस्ती बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, थैंक यू सो मच जी। दीपक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, गुड इवनिंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ दीपक जी कनेक्ट हो गए हैं जो कि दिल्ली से हैं। और इनका कहना है कि जस्ट अभी अभी आपने अब्दुल कलाम जी के बारे में बताई है और ये बातें उन्होंने सही कहा कि सपने सोने नहीं देते आपको और सपने सोते हुए नहीं देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ना दे, बस काम करते रहो। और जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के जेन जी है, वो पेशेंस लेवल तो उनका खो चुका है, यानी कि बस थोड़ा सा गुस्सा आया अनाप शनाप बकने लग जाते हैं। मेरा मानना है कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, किसी के बातों पर ना आए, अपने ऊपर फोकस रखिए। यानी कि आप जंतर मंतर में भी देखा होगा तो बहुत अनाप शनाप बातें बकेगी जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने लिए आवाज उठाना अच्छी बात है, आवाज उठाइए, लेकिन अपने शब्द को गंदा मत करिए। बस देखिए, आप अपने शब्द को गंदा करके मतलब आप अपने संस्कार पर जा रही हैं। तो अपने शब्द गंदा मत रखिए, अपने लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, आवाज उठाइए, लेकिन सही काम के लिए, सही कदम के लिए आवाज उठाइए। क्या बात है, सही कहा आपने दीपक जी। और बस अपने आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। फिलहाल एक और गाना, उसके बाद लौट कर आते कड़क सवाल के साथ।

से आप एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओं, और इसी बीच आरजुरी ने आप सभी के लिए लेकर आ गई कड़क सवाल, और कड़क सवाल भी बहुत ही आसान है जो कि हर बच्चे बड़े बड़े को सबको पता होना चाहिए, बच्चे हो या बूढ़े हर किसी को पता होना चाहिए। यानी कि अपने देश के गृह मंत्री का अपने नाम बताना है। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है और अपने देश के गृह मंत्री यानी कि कौन है उनका नाम बताना है। चलिए जी फिलहाल गाना सुनिए, लौट कर आते हैं जी। इस स्टेशन पर कहीं नहीं जाना है, बस आपने मैसेज हमें करना है जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896, यानी कि अपने देश के गृह मंत्री का नाम बताना है, अपने गृह मंत्री का नाम बताना है श्रोताओं। चलिए जी

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 6:48 हो चुके श्रोताओं, और ये कहा जा रहा है यानी कि 29 तारीख से यानी कि कावड़ यात्रा है वो शुरू होने वाली है, जो कि हरिद्वार में यानी कि बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है और ऑनलाइन क्लासेस होंगी बच्चों की। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं देहरादून हाईवे की, तो वहां पर यानी कि जो भारी वाहन है वो बंद कर दिया जाएगा 29 तारीख से, और बच्चों के हरिद्वार में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि बस ये कहना है कि किसी भी प्रकार के उनके बीच में रुकावटें ना आए, और अब की बार सरकार यानी कि हर तरह की सुविधाएं कावड़ यात्रा को देने वाली है जो कावड़ पे जाएंगे। और साथ ही साथ उनके लिए साफ सफाई सड़कों की बहुत जोरों शोरों से चली हुई है, और साथ ही साथ आपको भी पता है कि कुछ रूट है वो चेंज कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ यानी कि भारी DJ वाहन आप लेकर नहीं जा सकते। चलिए, आज मैंने आप सभी से पूछा है कड़क सवाल, यानी कि देश के गृह मंत्री का अपने नाम बताने, यानी कि अपने देश के गृह मंत्री कौन है भाई, क्या नाम है उनका, मैसेज करिए, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज की ही है। सोचिए, और एक और प्यारा सा गाना बारिश का सुनते हैं।
3: मुलाकात,
2: अपने देश के गृह मंत्री का नाम बताने जी। ठीक है जी, बरसात के दिन तो देखे आ ही गए हैं, और गाने ना हो मजा ही नहीं आता है फिर।
3: पीता पियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं ये

हाय हाय, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय करें श्रोताओं। बरसात मूवी से, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी मूवी, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गाना एंजॉय किया है आपने। और आज का कड़क सवाल बहुत ही सिंपल मैंने आप सभी से पूछा है, यानी कि देश के गृह मंत्री का नाम पूछा है आपसे। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या मैसेज आता है।

ये हमारे साथ यानी कि हेलो मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। हमारे लिए गाना प्ले कर सकती हैं क्या आप? अगर आप राइट आंसर देंगे तो बिल्कुल हम आपका गाना प्ले करेंगे जी। लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, लास्ट 4 डिजिट है यानी कि 9572।

ललिता जी का कहना है कि अमित शाह है. ओके अमित शाह है जी, ये हमारे साथ विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं. अमित शाह है जी और ये हमारे साथ शिशवा दौरा से कनेक्ट होते हैं. नई मुल्क अकरम जी गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग जी. अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि हमारे देश के गृह मंत्री का नाम है अमित शाह जी. ओके पारुल जी का मैसेज आता है मुरादाबाद से और इनका कहना है कि हमारे देश के गृह मंत्री का नाम है अमित शाह जी. और ये किसको नहीं पता होगा, हर किसी को पता होगा. बिल्कुल जी सही कहा आपने, लेकिन बहुतों को नहीं पता है, ये गलत फहमी आपकी. जब देखिए अक्सर हम छोटे थे ना तो जब भी शाम को घर वालों के साथ बैठते थे तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे और फिर उस टाइम जो डांट लगती थी ना, भाई साहब पूछो मत, या तो वहां से रो के निकलते थे या फिर कुछ सीख के निकलते थे. डांट बहुत पड़ती थी उस समय, पर अभी भी बहुत बार हो जाता है कि जब एक साथ फैमिली बैठे रहते हैं ना तो बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ राखी जी कनेक्ट हो गई है दिल्ली से और इनका कहने की अमित शाह है जी. और आज मुरादाबाद में तो काफी झमाझम बारिश हो रही है, दिल्ली में नहीं हो रही है मैम, बताइए जरा. न्यू दिल्ली में भी भैया भाई झमाझम बारिश हो रही है, एकदम मस्त वाली कड़क वाली बारिश हो रही है. चलिए श्रोताओं हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत और राइट आंसर हमारे पास सबसे पहले आया है ललिता कश्यप जी, तो आप बनती है हमारे शो के विनर, इवनिंग मस्ती शो के आप विनर बनती है. और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत. बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह करेंगे ढेर सारी बातें. अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय श्रोताओं. अपना ध्यान रखिए और इस बारिश में चाय पकौड़े एंजॉय करिए, कचौड़ी बनाइए अपने घर में और सभी परिवार के साथ मिलकर एंजॉय करिए.

0: पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांडर पालिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्य जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: विजिट करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: तो कहते हैं कि दुनिया के सारे रंग हमारी आंखों से ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर यही नजरें धीरे धीरे धुंधली होने लगे और

0: हमें इसका पता भी ना चले तो क्या होगा? डायबिटीज यानी शुगर सिर्फ दिल, किडनी या शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आंखों की रोशनी पर भी गहरा असर डालती है। आज हम इसी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और आज आपकी आंख के पर्दे के विषय में तमाम छोटी छोटी बातों पर आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू FM मुरादाबाद। जोरदार तालियां। हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं।
1: थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे सारे
0: जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं,
1: लिसनर्स हैं, उन लोग के लिए बहुत जरूरी ये मुद्दा है जो कि पता होना चाहिए।
0: क्योंकि मैम होता क्या है ना ईशा मैम, मैं आप सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि आंखों को सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि आंखें जो हैं सिर्फ उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, काला मोतिया और मोतिया बिंद, सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें पता होती हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे हमें बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम बात करने वाले आंख के पर्दे के बारे में, जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आंखों का। तो आज इस पर ही बात करने के लिए डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में है। सो मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको हमारे FM स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है।
0: पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लिसनर्स को अपने बारे में बताएं।
1: तो मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और CL गुप्ता में काम करती हूँ मुरादाबाद, और इसमें बेसिकली रेटिना के बारे में लोगों को पता नहीं होता। रेटिना होता है आंख का पर्दा, तो पर्दा सबसे जरूरी अंग इसलिए है क्योंकि जो भी दिखाई देता है वो उसी के वजह से दिखाई देता है। अगर पर्दा सही नहीं रहेगा तो शायद लोग कुछ ना देख पाए। तो इसलिए पर्दे के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। कोई भी आंख के बारे में सोचता है तो हर कोई सबसे पहले मोतियाबिंद ही सोचता है, और सिर्फ मोतिया ही आंख का भाग नहीं होता है, और भी जरूरी हिस्से होते हैं जिसमें से सबसे जरूरी अंग जो है वो है पर्दा। और इसमें काफी सारी बीमारियां होते हैं। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर है, पर इसमें और भी बीमारियां होती है जो कि हम वो वक्त के साथ पता लग।
0: बिल्कुल। अच्छा मैम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जरा हमारे लिसनर को।
1: हाँ जी, तो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम में ही लिखा है कि डायबिटिक मतलब जो भी लोगों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, वो चीज पर्दे में भी असर करने लग जाती है। तो इसको देखने के लिए हमें पर्दे का ही चेकअप कराते रहना चाहिए। तो ये पर्दा क्या है इसको समझाने के लिए मैं यही कहूंगी कि जैसे मान लीजिए एक कैमरा होता है, कैमरा का जो आगे का शीशा होता है वो तो हो गया आपका लेंस, जिसको हम मोतिये के लिए बोलते हैं। पर उसके बाद भी जब हम फोटो खींचते हैं तो जो फिल्म में सब कुछ कैप्चर होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर फिल्म ही नहीं हुई तो आगे फोटो भी नहीं निकलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो फिल्म है यही हमारा पर्दा होता है, यही हमारा रेटिना होता है। तो अगर यही नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें डायबिटीज में सबसे जरूरी चीज जो है वो है पर्दा, वही अफेक्ट होने लग जाती है। इसलिए हमें पर्दे का चेकअप कराते रहना चाहिए, और उसी से ही हम डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों को पकड़ सकते हैं।
0: सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज आपका साथ निभा रहे RJ आनंद, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे एक और सवाल के लिए, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
2: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
3: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आनंद है, शो का नाम है हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज हम। डॉक्टर साहब, मुझे तो सिर्फ अभी तक यही पता था कि आंखों में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आंखों का एक ही डॉक्टर होता है, एक ही स्पेशलिस्ट होता है, और आज भी बहुत सारे लोगों को यही पता है। तो क्या, जैसे आपने अभी आंख के पर्दे के बारे में बात करी, क्या इसका कोई अलग स्पेशलिस्ट होता है?
1: हाँ जी बिल्कुल। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं कि मैंने MBBS और अपना MD दोनों ही दिल्ली से करा है। तो MBBS तक तो हम लोग डॉक्टर हो गए, लेकिन MD में हम बनते स्पेशलिस्ट। जब मैं बनी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, जिसे हम बोलते हैं आंखों की डॉक्टर, पर उसके बाद भी एक सुपर स्पेशलिटी होती है जिसका हम फेलोशिप करते हैं, वो मैंने नारायण नेत्रालय बैंगलोर से किया है। वहाँ पे मैंने पर्दे का पूरा स्पेशलाइजेशन अपना करा, जो कि 2 साल की और होती है स्पेशलाइजेशन।
0: ओके, तो मैम मेरा यही क्वेश्चन था आपसे अभी, आपने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ये बताइए मैम कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आईज के बहुत सारे डॉक्टर होते हैं क्या? मुझे तो नहीं पता था आप जैसे आंखों के पर्दे की स्पेशलिस्ट हैं अलग से, तो हमारे लिसनर्स को तो ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था अभी तक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या सच में अलग अलग आंखों में जो समस्याएं होती है उसके अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं?
1: हाँ जी, जैसे
0: कॉर्निया के अलग हो गए मोतिया बन के इस तरीके से?
1: हाँ जी बिल्कुल, तो जो मैं ये फेलोशिप की बात कर रही थी यहीं पर ही आके हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, जहाँ पे बेसिकली कॉर्निया होता है जिसको हम पुतली के डॉक्टर बोलते हैं, बाकी मोतिया का तो होता ही है, उसके अलावा काले मोतिये का अलग होता है, और फिर हम पर्दे के डॉक्टर हो गए, ऐसे और भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसमें लोग करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आंख का डॉक्टर होने से कंप्लीट हो गया, आंख का डॉक्टर मतलब वो सिर्फ एमडी है, पर उसके बाद जिसने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है वो जाके फाइनली एक सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, जैसे मैं पर्दे की डॉक्टर।
0: ओके, सो लिसनर्स आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आंख में कोई भी समस्या है तो उसका एक डॉक्टर नहीं है, हमारी आंखों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अलग अलग स्पेशलिस्ट है, जैसे आंख का पर्दा, अभी उसके स्पेशलिस्ट हमारे बीच में मैम मौजूद है। मैम, क्या हर डायबिटीज के मरीज को ये बीमारी हो सकती है, और या फिर कुछ लोगों में इसका खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है?
1: तो ये जरूरी नहीं है कि हर डायबिटीज के मरीज को ही ये बीमारी हो, पर हर डायबिटीज का मरीज बिल्कुल एक रिस्क में जरूर होता है, उसको ये डायबिटिक रेटिनोपैथी बनने का रिस्क जरूर हो सकता है।
0: ठीक है,
1: पर जो कुछ मरीज जिनमें ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है वो तब जब या तो उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहे, सही ना रहे, बहुत लंबे समय तक उनको शुगर रहे, और उसके अलावा उनको अगर बीपी की भी दिक्कत रहती है साथ में, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, और भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है।
0: ओके, तो मैम इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे किसी को कैसे पता चले, या ये बिना लक्षण के भी बीमारी बढ़ सकती है?
1: हाँ जी बिल्कुल बढ़ सकती है, एक्चुअली इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ये शुरुआत होती है माइल्ड और मॉडरेट से, धीरे धीरे वो सिवियर पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद सिवियर के बाद की भी कहानी होती है। जो माइल्ड मॉडरेट स्टेज है, हो सकता है ये पेशेंट को पता ही ना लगे, कोई लक्षण ही ना हो, पर इसके बाद जो स्टेजेस पहुंचते हैं वो ज्यादा सिवियर होने लग जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि मरीज सीधा हमारे पास तब पहुंचे जब उसको लक्षण आया और उसकी सिवियरिटी बहुत बढ़ चुकी हो, तो इसीलिए उसको साल में एक बार न एक बार कराना चाहिए पर्दे का चेकअप, क्योंकि ये सारी चीजें पर्दे के चेकअप में ही पकड़ में आती है, शुरुआत लक्षण से नहीं होते, शुरुआत साइन से होते हैं जो कि हम पकड़ते हैं, तो वो
0: ओके, ओके। अच्छा मैम, अक्सर कुछ लोग कहते हैं भाई शुगर कंट्रोल है तो इसलिए आंखें भी सुरक्षित होंगी, तो क्या ये पूरी तरीके से सही है?
1: नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार मरीज तो अपना शुगर नाप रहा है लेकिन उसको नहीं पता उसके पूरे दिन भर में कितना वेरिएशन हो रहा है। दूसरी चीज, कुछ कुछ टेस्ट भी होते हैं जो ये बताते हैं एवरेज शुगर कंट्रोल कितना है, वो भी कराते रहना चाहिए लोगों को, पर उसके बावजूद भी अगर सब कुछ सही भी चल रहा है, अगर मरीज को बहुत लंबे समय से शुगर है और साथ में जैसे मैंने बताया बीपी और इन सब की दिक्कत है, तो भी पर्दे में दिक्कत आना शुरू हो सकती है, इसलिए सिर्फ शुगर कंट्रोल रहने से ही वो चेकअप ना कराए ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, उनको हमेशा साल में एक बार चेकअप कराते रहना।
0: ओके, अच्छा मैम अगर बात करें इनकी डाइट की, इनके खान पान की, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए?
1: देखिए, शुगर के मरीज को ऑब्वियसली शुगर कंट्रोल तो रखना ही है, तो उनको अपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसको कम करके रखना होगा, जितना हो सकता है अगर वो प्रोटीन्स बढ़ाए और गुड लो कार्ब में रहते हैं तो ही उनको फायदा देगा।
0: ओके,
1: बाकी उनको डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनिस्ट और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहना चाहिए अपने डाइट के लिए, और जितना हो सके अपना शुगर कंट्रोल में रखना।
0: ओके, सो आई होप लिसनर्स आज आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी जो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है, और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9837896896, ये हमारे स्टूडियो का नंबर है, अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना सवाल हमें जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो कीजिए, हमारा ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। आनंद के साथ है प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर ईशा आचार्य जी, आज उनसे ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, आंख के पर्दे के ऊपर तमाम सारी बातें हो रही हैं, और मैम इसी बीच में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको अपनी आंखों की जांच कब और कितने समय में करानी चाहिए, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है?
1: हाँ जी, तो ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डायबिटीज सबको लगता है शायद एक उम्र के बाद आती है।
0: हाँ जी मैम, और ये जरूरी है जानना कि किस एज में ये हो सकती है, ये भी प्लीज आप बताइए।
1: तो मेनली सबको यही लगता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, एक एज के बाद जाके आएगी। वो जो हम बोल रहे हैं वो होता है टाइप 2 डायबिटीज।
0: ठीक है,
1: पर अभी ये भी है कि टाइप 1 डायबिटीज भी एक चीज होती है, जिसमें जो बच्चा होता है, बल्कि शुरुआत में ही ये डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा होता है, तो शुगर अपने आप ही बढ़ता रहता है इन बच्चों का, तो इन लोग को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन उनको बाहर से देना पड़ता है तब जाके उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे बच्चों को भी डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। अब कब कब चेकअप होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि वो टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 है। टाइप 2 जैसे कि मैंने कहा एक उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ के आती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज वालों को तो जैसे ही डिटेक्ट हुआ उसी टाइम एक बार पर्दे का चेकअप करा लेना चाहिए। जबकि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उनके शुरुआत के 5 साल में वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क इतना नहीं होता है तो उनको शुरू के 5 साल के बाद जाके एक चेकअप करा लेना चाहिए, भले उसके बाद हर साल एक एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए। फर्क क्या है, जो ये यंग लोग हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है काफी हद तक सिवियर हो सकती है वक्त के साथ, तो उनको भी एक टाइम के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया 5 साल के बाद से उनको रेगुलर चेकअप शुरू करवा देना चाहिए क्योंकि वो भी उतने ही रिस्क में होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के जितना एक टाइप 2 डायबिटिक होगा। तो इसीलिए उम्र की बात की जाए तो दोनों ही यंग या फिर जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं उन दोनों में ही हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग करती रहनी चाहिए।
0: ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, जैसे कुछ ग्रामीण इलाके में लोग होते हैं, शहर लोग या गांव के लोग, अक्सर जांच को टाल देते हैं कि अभी नहीं, फिर करा लेंगे, बाद में करा लेंगे, तो इस तरीके के जो लोग टाल मटोल करते हैं और ये रिस्क लेते हैं अपनी आंखों के प्रति, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए
1: ये
0: आप क्या
1: बहुत बोलेंगे? बड़ा रिस्क है क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो मैं बोल रही हूँ ये अंधेपन तक मरीज को ले जा सकती है, इसलिए इतना इंतजार ना करे कि अंधापन पहुंच जाए और हम उसके आगे जाके कोई ट्रीटमेंट ना कर पाए। इसलिए उसको उसी स्टेज पे पकड़ना है जब वो ट्रीटेबल हो, जब उसका हम इलाज कर सके, तो इसलिए उनको रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराना ही चाहिए, टालने से कोई फायदा होना नहीं।
0: मैम, अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए तो क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है?
1: हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि इसके स्टेजेस होते हैं, सही स्टेज पे सही इलाज किया जाएगा तो रोशनी आ सकती है, एंड स्टेज तक नहीं पहुंचने देना है क्योंकि तब आंख की रोशनी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी आंखों से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कोई भी आप अगर सवाल करना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो के नंबर के जरिए 9837896896 पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैम, एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्या मोबाइल, लैपटॉप या लंबे समय तक जो स्क्रीन देखते हैं, क्या उनको ये समस्या और ज्यादा गंभीर उनको हो सकती है?
1: नहीं, इसका रिलेशन लंबे टाइम या स्क्रीन यूसेज से नहीं होता है, इसका प्योर रिलेशन होता है शुगर की वजह से। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब ब्लड शुगर पूरे टाइम तक लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो आंखों की जो रक्त की नसें होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से कभी कभी या तो सूजन पर्दे में बहुत ज्यादा आ सकती है या ये नसें अगर फट जाए तो आंख के अंदर अचानक से ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारी वजह होती है जिससे रोशनी अचानक से गिर सकती है, तो इसीलिए हमें चेकअप कराते ही रहना चाहिए क्योंकि एक बार वही जैसे मैंने बताया अगर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए और धीरे धीरे पर्दा उखड़ने लगे वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मुश्किलें बढ़ जाती हैं और रोशनी आने की संभावना भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
0: ओके मैम, क्या धुंधलापन भी इन सब चीजों से कनेक्ट है क्या, आंखों में अगर हल्का हल्का सा धुंधलापन आने लगे?
1: आंखों का धुंधलापन इसी सबसे होता है, अगर पर्दे में सूजन आ जाए या पर्दे में ब्लड आ जाता है या खून आ जाता है तो धुंधलापन इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके अलग अलग इलाज होते हैं जो हम करते हैं।
0: ओके, अच्छा मैम, सपोज किसी को ये प्रॉब्लम है और उसको ये पता कैसे चले कि उसको ये समस्या हो रही है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं?
1: तो जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत स्टेज में तो हो सकता है सिम्टम्स हो भी नहीं पेशेंट को, और धीरे धीरे सिम्टम्स आना शुरू होता है मतलब ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है। तो धुंधलापन से ही शुरुआत होती है, कभी कभी काले तिलमिले जैसे अचानक से दिखने लग जाए तो इसका मतलब आपकी आंख में ब्लड आ रहा है, ये शिकायत हो सकती है। धुंधलापन, काले तिलमिले दिखना, ये सारी चीजें असर करा सकती है।
0: डॉक्टर साहब, एक तो हमारे भारत में मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी आंखों में कुछ भी होता है ना, हम तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम कोई भी एक ड्रॉप खरीदते हैं आई ड्रॉप और उसको अपनी आंखों में डाल लेते हैं बिना सोचे समझे बिना पूछे, तो क्या ये करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है और देखा भी है कि मरीज जाके बस फार्मेसिस्ट से पूछ लेते हैं और दवा डालने लग जाते हैं, वो नहीं जानते किस दवा का अपना खुद का साइड इफेक्ट होता है। वो तो लंबे समय तक डालते रहते हैं, अपना चेकअप टालते रहते हैं, पर तब तक में वो जो दवा है वो अपना साइड इफेक्ट कर चुका होता है। और जब वो हमारे पास आते हैं बहुत बार उन्हें काले मोती की शिकायत या उनकी पुतली खराब होने की शिकायत, ये सारी चीजें भी हो सकती, तो ये चीज बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। उनको कुछ भी दिक्कत हो सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और उस हिसाब से ही दवा चलानी चाहिए।
0: ओके मैम। सो दोस्तों अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर।
2: ओहो ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
3: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे एफएम मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहां आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: पीड़ित हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी जांच नहीं कराई, उनको आप क्या संदेश देंगे? और साथ
1: देखिए, अभी सारी जनता के लिए आंखों का चेकअप का मतलब होता है कि बस चश्मे का नंबर ले ले और उनका काम हो गया। तो यही मैंने आज पूरे टॉक में अपना बताया है कि सिर्फ चश्मे का नंबर या सिर्फ मोतियाबिंद, यही दो चीजों से आंख की बीमारियां नहीं होती है, और पर्दे की प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी प्रॉब्लम भी होती है मरीजों को। तो इसलिए साल में एक बार चेकअप होते रहना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपकी शुगर की दिक्कत बढ़ गई है तो कुछ डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने पे भी बुला सकते हैं, और अगर आपका इलाज भी शुरू हो गया है तो हो सकता है आपको हर महीने भी बुलाया जाए। तो इसलिए इस चीज को नजरअंदाज नहीं करनी है, आपको चेकअप कराते रहना है। और जब भी आप किसी जनरल ऑप्थल्मोलॉजिस्ट पे भी जाएं जो सिर्फ जनरल चेकअप कर रहे हैं, उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है। पर्दे के चेकअप के लिए एक बहुत जरूरी संदेश ये है कि वो हम पुतली फैला के करते हैं, एक ड्रॉप डाला जाता है जिससे थोड़ा धुंधलापन रहता है कुछ समय तक, और वो पुतली फैला के ही हमें पर्दा ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो आप कभी भी कहीं जाए सिर्फ चश्मे का नंबर लेके ना आए, और अगर आप जा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है, तो आपकी पुतली फैला के प्रॉपर चेकअप। ये सब चीजें अगर आप भी इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो अगर आपको कोई और डॉक्टर देख रहा है जिसने चेकअप नहीं कर रखा या किसी तरह से मिस हो गया है, आप उनको ये चीज बोल सकते हैं और आपका प्रॉपर थरो चेकअप हो सकता है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में थी एंड इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से आज हम ढेर सारी बातचीत कर रहे थे मैम आंखों के पर्दे के बारे में। हमने तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर जो आज तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ऑफकोर्स उनको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है, एंड आई एम श्योर आप दोबारा फिर से आना चाहेंगे हमारी मुरादाबाद की जनता के लिए फिर से कुछ और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, और ये बहुत जरूरी था कि आपके जनता तक ये बात पहुंचे
0: डेफिनेटली,
1: और वो इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझे।
0: थैंक यू सो मच पांच
1: दिन हमेशा स्वस्थ रहे और वो हमेशा ऐसे ही अच्छे से देखते रहे।
0: क्या बात। सो डॉक्टर ईशा, चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी एडवाइस लेना चाहता हूँ पूरे मुरादाबाद, आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी चलते चलते?
1: हाँ जी, तो मैं एक ही लाइन में इस चीज को समाप्त करना चाहूंगी, दैट राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम कैन सेव योर साइट।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। एंड गाइज, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, ये तो चल ही रहा था, बाकी रेडियो स्टेशन भी सुनते रहिए गाइज, फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिलहाल के लिए घड़ी की सुई मुझे टिक टिक करके इशारा कर रही है कि आनंद अब तेरा जाने का समय हो गया है, बहुत बातें होगी, तो चलिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, पानी पीते रहिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एक आंखों का बढ़िया गाना छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं मत जाइए, बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माली बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 3 मई को हुए नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों के कारण उसे रद्द करने और दोबारा नीट परीक्षा कराने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय जनता दल सांसद सुधाकर सिंह की एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह देखेगी कि सरकार की ओर से नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पावर्ड टास्क फोर्स नीट परीक्षा को ऑनलाइन कराने के बारे में क्या सुझाव देती है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि कुछ अलग तरह के सुझावों की जरूरत है, खासकर तब जब नीट परीक्षा को फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में बदला जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास सुशासन सुधारों और प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में श्रीमती गुप्ता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा जैसे पहलों से सरकार लगातार काम कर रही है।
2: जिस तरीके से पेपर लीक केस में स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई और केवल बनाई नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें निर्णय लेना होगा और मुजरिम को सजा दिलवानी होगी। इसी लोकसभा के सत्र में ये सख्त कानून लेके आया जा रहा है। 10 साल तक की कड़ी जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, और भविष्य में कभी पेपर लीक ना हो इसलिए ये एग्जाम अब CBT के माध्यम से करवाया जाए।
0: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यार्थियों से नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। दक्षिण जिला नवाचार परिषद प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि उद्यमिता, नवाचार और आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। दिल्ली सरकार ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां छात्र स्कूल स्तर से ही नवाचार और रिस्क लेने की भावना विकसित कर सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। एक रिपोर्ट।
3: पिछले वर्ष 22 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को मुख्य याचिका के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय के 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया था। निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अनुचित नहीं है क्योंकि ये FIR पर आधारित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ दिवंगत कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल की। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा लगातार दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। वहीं भाजपा पार्षद सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पदभार ग्रहण करने के बाद सत्या शर्मा ने कहा कि उनकी कार्य योजना स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, शिक्षित दिल्ली, सुशासन और सशक्त निगम के 5 प्रमुख संकल्पों पर आधारित होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थायी समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा तथा जनहित के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीमती शर्मा ने कहा कि निगम की विकास परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा करने, सफाई व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन, जलभराव की रोकथाम, मॉनसून संबंधी रोगों से बचाव, टोल प्लाजा पर यातायात जाम, पीएम उदय योजना और सड़क कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही के साथ काम करने को कहा। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के रिज क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से पारिस्थितिक पुनर्स्थापन अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 120 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,00,000 देसी पेड़ और 81,700 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, जामुन, शीशम, पलास और खेजड़ी जैसे प्रजातियां शामिल है। ये पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए 70,00,000 पौधारोपण मिशन का हिस्सा है। इसमें डीडीए को 23,00,000 देसी पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष अब तक दिल्ली में 8,29,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य जैव विविधता बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी ताप प्रभाव कम करना और दिल्ली के प्राकृतिक वन तंत्र को पुनर्जीवित करना है। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने चौखंडी और ख्याला में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि विकास कार्यों की शुरुआत जितनी जरूरी है, उनका समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होना उतना ही आवश्यक है। पश्चिमी दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन की मरम्मत कार्यों के कारण बुधवार सुबह 10 बजे से बृहस्पतिवार दो बजे तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि इस दौरान राजौरी गार्डन, तिलक नगर, टैगोर गार्डन, विष्णु गार्डन, सुभाष नगर, ख्याला, राजा गार्डन सहित कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर लोग पानी के टैंकर मंगाने के लिए 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 250 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक स्कूटी बरामद की है। मामले में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और पटना के बिहार संग्रहालय ने प्रदर्शनियों, विद्वानों की चर्चाओं, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी बातचीत को बढ़ावा देने और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक संयुक्त पहल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में आज से एक सप्ताह तक चलने वाली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों तथा संस्कृतियों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे।
5: मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया, खिलाड़ियों को खेल भावना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी सरकार खेल अवसंरचनाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
6: ये बहुत गर्व का मोमेंट है और दिल्ली अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटी देने के लिए और लगातार दिल्ली में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें हमारे युवा, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें।
5: इसके अलावा श्री सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है बल्कि विभिन्न देशों के बीच मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल भावना को सशक्त बनाने का अहम अवसर भी है।
7: 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए दिल्ली में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। खेल, दोस्ती और बेहतरीन प्रदर्शन की भावना से जुड़े 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है।
5: 2 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत सहित कॉमनवेल्थ के 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीराबाई चानू को स्कॉटलैंड में हो रहे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण जीतने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतना उनकी असाधारण मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये मीराबाई चानू की शानदार खेल यात्रा का एक और गौरवपूर्ण अध्याय है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 65 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर राजा मुथु पंडे को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वदेशी मिसाइल तकनीक, नवाचार और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी दिल्ली में आज शाम तेज वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
9: ओह लवली, वेल डन।
10: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
9: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
11: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
9: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
12: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
13: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
14: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
13: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
12: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
15: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
12: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
15: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
16: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी, हाय, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज का ये शो बहुत ही खास है और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास जो दूर से मेहमान जुड़ने वाले हैं आपकी शाम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। 23 जून की इवनिंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एंड इस शो में मैं बिल्कुल भी आपके साथ अकेला नहीं हूँ। ऑफकोर्स आई हैव विद मी, कौन है? हेलो जी, हेलो,
1: मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो और आज हम आ गए आपकी शाम को और भी शानदार
0: बनाने। लेकिन प्राची, तूने ये नहीं बोला हाय ब्यूटीफुल माय पीपल।
1: ओ, ये तो मैं भूल गई थी, पर थैंक यू सो मच।
0: कैसे सुनाने के लिए मौका दूंगा पूनम, थोड़ा इंतजार करवाएंगे ना लिसनर्स को, है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल। और थोड़ा इंतजार का मजा भी टेस्ट होता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा तो पूनम, एक बात बताओ, अभी थोड़ा सा आपसे पहले बतिया लेते हैं, आपके यहाँ का मौसम का हालचाल बताओ, कैसा हो रहा है?
2: जी हमारे यहाँ का मौसम तो बहुत ही, क्या ही बोले आप आनंद जी, बहुत गर्म मौसम है और बारिश हो नहीं रही है, बस बारिश का इंतजार है। जैसे कि आप सब इंतजार करते हैं वैसे हम भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बस बारिश हो जाए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बाकी कानपुर के ठगू के लड्डू तो बहुत खा रही हो आजकल, आप हमें सुनने में आया है।
2: ठगू के लड्डू तो क्या ही कहना आनंद जी, आइए आप दोनों आइए, मैं बिल्कुल ठगू के लड्डू खिलाऊंगी। और
0: तुम्हें पता है प्राची, कानपुर में ठगू के लड्डू बहुत फेमस है, प्राची से पूछ लेते हैं जरा।
1: अरे नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि ठगू के लड्डू क्या होते हैं, प्लीज आप हमें पूनम जी बताइए क्या होता है।
2: प्राची जी एक बार खाएंगी ना तो बार बार खाएंगी।
0: अरे वाह,
1: अच्छा कुछ रेसिपी शेयर करिए।
0: रेसिपी शेयर नहीं करेगी, वो बहुत फेमस लड्डू है, उसकी रेसिपी थोड़ी शेयर कर देंगे हम सस्ते में, है ना क्यों पूनम?
2: हाँ जी बिल्कुल,
1: मेन मेन इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए।
0: हाँ हाँ, ये हो सकता है कि ठगू के लड्डू में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो इसको जानना है।
2: अच्छा जी, तो वो तो फिर ठगू के पास चलना पड़ेगा।
0: हाँ एग्जैक्टली,
1: ठगू ठगू काफी
0: कानपुर का, दिस इज वेरी पॉपुलर लड्डू, पता है? हाँ या जैसे आगरा का पेठा फेमस है ना, वैसे ही कानपुर के ठगू के लड्डू, दिस इज वेरी।
1: लड्डू का नाम जो ठगू रखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है, इसकी क्या कहानी है?
0: इसकी कहानी हम बाद में सुनाएंगे, क्यों पूनम एक गाना सुने फिर अच्छा सा।
2: हाँ जी बिल्कुल, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस गीत के बाद पूनम और प्राची की हम आपस में कराएंगे क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं किया, एक दूसरे से बात नहीं की,
1: और मैं आपको बताऊंगी पूनम और प्राची में खास कनेक्शन।
0: एब्सोल्युटली, तो आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाती रहिए गुनगुनाती रहिए।
0: क्या बात है, एक ब्यूटीफुल ट्रैक,
2: सुनाते रहिए।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन, एक ब्यूटीफुल ट्रैक। उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ पूनम के साथ, और साथ में प्राची भी दे रही है मेरा साथ। सो चलिए वापस चलते हैं अपनी प्यारी सी दोस्त पूनम के पास। पूनम क्या कर रही है, वो सो तो नहीं गई हमारी बातें सुन के? हेलो
1: हेलो,
0: मुझे लगा पूनम सो गई होगी। वेलकम बैक है पूनम जी। हाँ जी,
1: बिल्कुल शुक्रिया है बहुत आपका।
0: पूनम पूरा मुरादाबाद आपकी आवाज सुन रहा है आज की शाम। पहले तो ये बताओ कैसा फील कर रही हो?
1: जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं और हमारी आवाज को भी सुन रहे हैं। तो सभी लिसनर बताएंगे कि लिसनर को कैसा लग रहा है कार्यक्रम सुनकर।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में सबको बहुत आनंद आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि पूनम और प्राची की थोड़ी बातचीत कराएंगे, तो पूनम जी मैं चाहूंगा हमारी प्राची जो होस्ट है उनसे भी आप थोड़ी बातचीत करें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो प्राची जी।
2: हेलो पूनम जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम एक साथ तीन इकट्ठा हुए क्लियर जो की। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है प्राची जी बात करके और कार्यक्रम में जुड़ के?
2: बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम ठीक कहा कि हमें बहुत मजा आ रहा है कि हम तीन आज एक साथ जुड़े हैं और हम बहुत सारा फन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और जैसा
1: खिचड़ी पका रहे हैं हम, है ना?
2: और पूनम जी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपकी और मेरे नाम में एक खास कनेक्शन है, इसको हम अभी बता देते हैं अपने लिसनर्स को कि जो पूनम नाम है वो मेरी मम्मी का नाम है। तो जब मैंने आपका नाम सुना ना कि आपका नाम पूनम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि
1: आपका नाम प्राची, मम्मी का नाम पूनम और मेरा नाम पूनम, क्या कनेक्शन है यार।
2: और वो विवाह मूवी वाली पूनम याद आ जाती है ना
1: प्राची जी। तो हम दोनों का देखिए कितना बढ़िया कनेक्शन है और कितना बढ़िया सहयोग है आज की हम तीनों इकट्ठा है एक साथ।
2: और वैसे हमारे लिसनर्स, आप बताइए कि जो पीपी नाम की गर्ल्स होती है उनका जो होता है वाइब्स ज्यादा मैच करती है। मेरी अब तक जितने भी पी नाम वाली फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरी वाइब्स बहुत मैच करती है। तो लिसनर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी इतना पूनम पूनम हो गया है हमारी शादी में। पूनम जी, वो गाना तो डेफिनेटली लगता है,
2: प्ले करना पड़ेगा
0: प्ले, है ना?
2: हमारी शादी को
0: अभी हफ्ते हैं बाकी, चार चार सो बरस लगे, कुछ ऐसे गाना है। पूनम जी, इतना पूनम पूनम हो गया है तो ये विवाह फिल्म का गाना तो सुनना बनता है। हो पूनम हो पूनम हो प्राची हो पूनम, अच्छा गाना है ना?
1: अच्छा, आप भी गुनगुना रहे हैं?
0: हाँ जी हाँ जी। तो पूनम जी, कुछ लाइनें हो जाएं इस गाने से पहले, हम चाहेंगे कि कुछ इरशाद अर्ज किया है पूनम जी आपने हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल, तो मैं सभी लिस्नरों के लिए बोल देती हूँ एक अच्छी सी लाइन और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आनंद जी,
0: जी जी,
1: ध्यान से सुनिएगा और मैं अब अर्ज कर रही हूँ। फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते।
0: वाह।
1: फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते, बस जाते हैं वो एक दिल में आकर जो दिल से कभी नहीं जाते।
0: वाह।
1: फिलहाल ये जो लाइनें हैं लिस्नर, आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी को हम बोलेंगे और आप सभी सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद और बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी आप सुनने वाले हैं प्राची के साथ, आनंद जी के साथ और साथ साथ
0: इसी बात पे हम भी कहना चाहते हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। वाह तो कर दो कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता प्राची। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, कि लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता पूनम जी, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता।
1: अनमोल नहीं होता, लेकिन हमारे लिस्नरों की तरह कोई अनमोल नहीं
0: बिल्कुल,
1: होता।
0: बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। अनमोल है। सच में, इसी बात पे गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस मिलते हैं। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
3: Good morning.

0: Disney.
1: Excuse me, tea, coffee?

0: Fasten your seatbelt, sir.
1: Hamari shaadi mein abhi baaki hai hafte chaar.
0: वेलकम बैक यू लिसनर, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आप जुड़े हैं प्राची आनंद और पूनम जी के साथ।
2: बिल्कुल, और पूनम जी हमारी स्पेशल गेस्ट हैं आज की शाम, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ठगू के लड्डू की स्टोरी प्राची को जाननी थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने इसको ठग लिया बातों बातों में, है ना पूनम?
3: हाँ, तो कानपुरिया का यही तो काम है ना, कानपुरिया जो होते हैं ना वो पहले बातों बातों में ठग लेते हैं।
2: बेचारी प्राची सीधी साधी लड़की, उसको क्या पता कि कानपुरिया बहुत कंटाप मारते हैं।
3: बिल्कुल,
2: बहुत भौकाल मारते हैं, पता
0: अच्छा
2: है?
0: तो पूनम जी यही स्टोरी है क्या, जो मतलब इसलिए लड्डू का नाम ठग्गू पड़ गया?
3: नहीं नहीं, ये तो वैसे स्टोरी नहीं है, और स्टोरी तो कुछ और ही है ठग्गू लड्डू की। फिलहाल तो फिर कभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर जानेंगे क्या स्टोरी है।
0: जब से आपने मुझे ठग्गू के लड्डू के बारे में बताया है ना, तो मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि ठग्गू लड्डू ठग्गू कैसे बन गया।
2: प्राची की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और मेरे अंदर की श्वाई बाहर निकल गई है, क्या मैं सुना दूं?
3: हाँ जी बिल्कुल सुना दीजिए।
2: ठीक है, मेरी शायरी है कि भैया आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए आप हमारे साथ अपना साथ, आपसे ही तो हमारे शो की जान है।
0: अरे बाबा, और इस शायरी को हम डेडिकेट करते हैं अपनी आरजी पूनम जी को, क्योंकि आज उन्होंने हमारे शो में आके हमारा जो मतलब एनर्जी लेवल है
2: पूरा अलग कर दिया,
0: बहुत हैपनिंग कर दिया है, और हम सच में बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं।
2: तो पूनम
0: आपके साथ आरजी पूनम जी, तो थैंक यू सो मच
2: फॉर कमिंग ऑन आवर शो।
3: बिल्कुल, मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ सभी श्रोताओं के लिए, और शायरी कुछ इस तरह से है। कश्ती खोल हुए किनारों का पता खोज लेती है, कश्ती खोल हुए किनारों का पता खोज लेती है, आए हुए तूफानों का रुख मोड़ देती है। जिंदगी इस तरह से बदलती है, जिंदगी कुछ इस तरह से बदलती है कि जहाँ भी मोड़ो जिंदगी और मुड़ जाती है।
2: वाह वाह वाह, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, मतलब आनंद आ गया जिसको पढ़कर। अब मुझे लगता है कि प्राची भी कुछ सुनाने वाली है पूनम जी इसी बात पर।
3: जी हाँ बिल्कुल, अब प्राची भी बिल्कुल सुनाने वाली है और हम सब सुनने वाले हैं।
2: वेरी गुड,
0: थैंक यू सो मच पूनम जी कि आप मेरी शायरी सुनने के लिए इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। तो आपके लिए और हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मुझे याद आ रही है। दिल की बात जुबान तक आती है, दिल की बात जुबान तक आती है, और जुबान से गीत बन जाते हैं, और जुबान से गीत बन जाते हैं। आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, यही सारा महफिल मुस्कुराहट बन जाती है।
2: वाह वाह वाह वाह, दोस्तों अभी फरमाइश मत भेजिएगा क्योंकि अभी हम आपकी प्ले नहीं कर पाएंगे फरमाइश। प्राची ने इसमें फरमाइश का जिक्र कर दिया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी बात है, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी बातों की, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी प्यारी शेरो शायरी की, वो हम पढ़ेंगे, उनको हम शामिल करेंगे, गाने तो आप सुनते ही रहते हैं क्यों प्राची?
0: बिल्कुल सुनते हैं जी।
2: तो पूनम इस पे कुछ कहना चाहोगी इस शायरी पे आप?
3: जी मैं तो बस यही कहूंगी कि श्रोताओं इतनी अच्छी थी जो शेरो शायरी आप सब सुन रहे हैं ना, और बातों की जो खिचड़ी हम सब पका रहे हैं, तो आप सब बिल्कुल जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। और आप सभी को शेरो शायरी जैसे कि हम सब कह रहे हैं वैसे ही याद आ रही हूँ, तो आप भी शेरो शायरी भेज सकते हैं और अपने अंदाज में, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी बात में मैं पूनम जी आपके लिए कहना चाहता हूँ कि दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर निभाने का।
3: बिल्कुल आपने बोली है आनंद जी, शुक्रिया।
2: मैं चाहूंगा इसी पर दो लाइनें आपकी भी हो जाएं पूनम जी।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो इसी बात से मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ जो की मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए बोलते हैं। ना दिन को करार ना रातों को चैन है, ना दिन को करार ना रातों को चैन है, देखते हैं बस आपको एक झलक, दिल हो जाता बेचैन है।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: बहुत बढ़िया
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी बात पर एक गाना तो निकल रहा है हमारे दिल के तरंगों से, एक बेहतरीन ट्रैक आपके लिए निकल रहा है पूनम जी, हम आपके लिए गाना भेजते हैं, ठीक है
3: जी जी।
2: और श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, पूनम जी हमारे साथ बनी रहेंगी इस प्रोग्राम में। अगर आप भी कुछ ऐसी प्यारी बातें करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कहाँ पर मैसेज करेंगे प्राची?
0: आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 9837896896 पर।
2: चलो एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद आप
1: hey, hey,

0: वेलकम बैक है खूबसूरत ट्रैक। आज 23 जून है, आनंद के साथ हैं, साथ में प्राची है और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। यस, आज हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हैं कानपुर से, जो अपने आप में एक बहुत ही बेमिसाल और कमाल की आर्टिस्ट हैं, रेडियो जॉकी भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करती हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। प्राची, उनकी आवाज कितनी मजेदार लग रही है ना, तुझे जेन्युइनली बता।
1: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे पूनम जी की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे सच में पूनम जी की वाइब्स हमसे इतना मैच कर रही हैं कि हम जो हमारा शो है और जो हमारा जो एंजॉय जब भी हम शो करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, अच्छा फील करते हैं, पर आज पूनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो हमारा जो ये एंजॉयमेंट का जो लेवल है वो और भी हाई हो गया है। सो थैंक यू सो मच आरजी पूनम जी कि आपने आके हमारे शो को और भी मजेदार बना दिया है और हमारी लिसनर्स को भी 100% बहुत बहुत मजा आ रहा होगा।
0: बिल्कुल पूनम, तो अब आप बताइए पूनम, इतनी सारी तारीफ लेके आप कहाँ जाएंगी, कानपुर जाएंगी या सीधा लखनऊ या मुरादाबाद आना चाहोगी?
2: मैं आसमान में उड़ूंगी।
0: नहीं, आसमान में मत उड़िए। हाँ बोलो।
2: इतनी सारी तारीफ जब हमें मिलती है ना तो मैं ऊपर आसमान में उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है।
1: पर पूनम जी, सच में ये तारीफ नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बटरिंग नहीं है, ये हमारे दिल के सच्चे अल्फाज हैं आपके लिए।
2: जी जी जी, थैंक यू।
1: इन्हें आप संभाल के रखिएगा प्लीज।
2: थैंक यू
1: सो मच।
0: बहुत बढ़िया, आप ऊपर उड़ोगी तो हम आपको खींच लेंगे उड़ते बादल से। पूछो कहाँ गई है पूनम।
2: अच्छा, तो आप पता पूछ लेंगे उड़ते बादल से?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो पूनम जी, मुरादाबाद की तमाम जनता इस वक्त गाड़ियों में आपको सुन रही है, तो आपके मन में नहीं ख्याल आता कि कभी मुरादाबाद जाना चाहिए, मुरादाबाद की जनता से मिलने, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल पूनम जी, मुरादाबाद की जनता और मुरादाबाद की आरजीज आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेताब है, आप कब आएंगी?
2: हाँ तो मैं मुरादाबाद बहुत जल्द आऊंगी। सब जो जितने भी हमें पता सुन रहे हैं ना, सभी को एक सरप्राइज मिलेगा जब मैं आऊंगी मुरादाबाद में। और सबसे पहले तो मैं आनंद जी आपसे मिलने आऊंगी, प्राची जी से, क्योंकि आपकी आवाज और आपका जो अंदाज है ना, मुरादाबाद को सच में हिला के रख देता है।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच। और आप भी और आपके ठगू के लड्डू भी जो है हमें हिलाने को तैयार बैठे हैं।
1: और प्लीज आप ठगू के लड्डू लेकर आइएगा, क्योंकि ठगू के लड्डू हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे हमें ठगा हुआ
2: ठगू के लड्डू, तो क्या है इसके पीछे, क्योंकि ठगू का लड्डू जो है ना
1: कैसा टेस्ट आता है,
2: बहुत मन हो रहा है खाने का।
0: नाइस नाइस, लेकिन ये तो कानपुर में हर जगह पर मिलते हैं, कुछ ही जगहों पर फेमस है।
2: जी हाँ बिल्कुल, हर जगह पर हम ठगू के लड्डू खा सकते हैं, कानपुर भर में ही खा सकते हैं बस।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अलावा लखनऊ वगैरह में नहीं मिलेंगे ना?
2: नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे ठगू के लड्डू, बस एक ही दुकान है कानपुर में, वहाँ पे जाके खा सकते हैं।
0: ओके ओके ओके, मतलब काफी स्पेशल वाली कह सकते हैं वाइव है ना लड्डू की, और कहीं मिल ही नहीं पाएंगे वो।
2: जी जी जी, और कहीं वो लड्डू मिल ही नहीं सकते हैं।
0: ओके तो पूनम जी, लड्डू मिले ना मिले, आपकी शायरी तो मिल रही है मेरे मुरादाबादी को, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, कुछ हो जाए प्यारी सी शेर व शायरी।
2: हाँ बिल्कुल, तो बड़ी देर से इंतजार हो रहा है मेरी शायरी का, चलिए मैं सुना देती हूँ एक बहुत प्यारी सी शायरी है। भूल गया हमको ये जहाँ, मगर इस जहाँ को ना हम भूल पाए। भूल गया हमको ये जहाँ, मगर हम इस जहाँ को ना भूल पाए। समझ गए हम इस प्यार को, मगर लोग हमें ना समझ पाए।
0: क्या बात है पूनम जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, रुमाल कर दिया, बहुत बढ़िया।
2: जी जी, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लग रहा है आप सभी से बातें हो रही हैं और इतनी अच्छी सी सरो सारी और इतनी प्यारी सी चटपटी सी बातें सुनने को मिल रही है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा।
1: तो सच में पूनम जी, आपने अपनी शायरियों के साथ हमारी शाम को अभी शानदार बना दिया है। जितने भी हमारे लिसनर्स घर वापस जा रहे हैं तो वो हमारी इस चैट, मतलब हम लोग जो ये चैट चैट कर रहे हैं उसे सुनकर सच में उनका भी वो होता है ना, लाइक ऑफिस से हम बहुत स्ट्रेस से आते हैं, पर हम पक्का हमारी जो बातें हैं ना, हम उन्होंने हमारे लिसनर्स को बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत रिलैक्स कर दिया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि इनकी बकबक में ना वो अपने सारे स्ट्रेस भूल गए होंगे।
2: बिल्कुल ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है प्राची जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब प्राची से भी एक शेरो शायरी होनी चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि प्राची भी कुछ हमारे लिसनर्स को अच्छी सी शेरो शायरी सुनाए।
1: तो ये शायरी है हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमसे डेली जुड़े रहते हैं।
0: जरा सुना दो।
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है,
0: वाह,
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है।
0: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, शान के आगे तो मेरी आरजे आनंद के नाम से पहचान है, वाह वाह।
1: अरे वाह,
0: नहीं नहीं तू पूरी शायरी कर दे यार, मैं बीच में।
2: आनंद जी आपने,
0: अरे नहीं यार, पहले उनकी शायरी सुनने देते हैं।
2: शान से तो आरजे आनंद जी की पहचान है।
1: अरे वाह, और वैसे आरजे आनंद जी जो है ना, ये मतलब ऑन द स्पॉट एकदम एकदम बढ़िया राइम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। चलिए फिलहाल
0: बैक टू शायरी ना,
1: चलिए फिलहाल हम अपनी शायरी पे वापस आते हैं
0: जी।
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, आपसे ही तो हमारी शो की जान है, आपसे ही तो हमारी शो की जान है।
0: तो आज शो की जान तो पूनम है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आप पूनम जी, आप हमारी शो की जान है।
2: नहीं, हमारे श्रोता शो की जान है बिल्कुल, हमारे जो लिसनर हैं जो दिल के करीब हैं और हमेशा साथ निभाते हैं एफएम मुरादाबाद का, सभी हमारे श्रोता इस शो की जान है।
1: वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरजी
0: पूनम जी, पर
1: आपसे जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो हमारा शो और
0: पहले प्राची की बात पूरी हो जाए फिर मैं पूछूंगा, क्या कह रहे हो, स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं,
1: पर जब आरजी पूनम जी जैसे स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं तो हमारे शो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना।
0: एब्सोल्युटली गॉट इट। नहीं मैं पूछना चाह रहा था कि पूनम जी इतनी अच्छी आवाज लेके घूम रही है, खाती क्या है, पूछेंगे इनसे कौन सी चाय का ये कमाल है या कौन सी रोटी ये खाती है, पूछेंगे।
2: फिलहाल मैं बता दूं, मुझे दाल चावल जो देसी खाना है ना, दाल चावल वही मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
0: हम भी जो है पूनम जी देसी खाना खाते हैं, हम चाइनीज बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम भी इंडियन खाते हैं, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल, पर आपकी बात तो मैं ऐसा क्या है,
2: आपकी बातों में ऐसा क्या है, बिल्कुल प्राची जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बताइए।
0: आपकी बातों में, मेरी बातों में ऐसा कुछ होना हो, लेकिन आपकी बातों में है दाल चावल का स्वाद और मेरी बातों में है लाल मिर्च का स्वाद।
2: ये तो आनंद जी ने बात को टाल दिया प्राची जी ने।
1: हाँ, पर उसमें तो आनंद जी एक्सपर्ट है
0: बिल्कुल। देखो यार ऐसा है, एक्सपर्ट की जो है बहुत टांग खिंचाई हो रही है, तो हम एक गाना सुन लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तो एक प्यारा सा गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौन सा स्टेशन सुन रहे हैं?
1: हम सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो, बजाते रहो गुनगुनाते रहो, बहुत ही बढ़िया। चलिए मिलते हैं गाने के बाद।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
4: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक, सचमुच आपका। जरूरत जब हो पैसों की, फैसला हो भरोसे का।
5: व्यक्तिगत ऋण कम ब्याज दर के साथ,
4: और अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में है
5: तो पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर,
4: शून्य प्रोसेसिंग फीस,
5: बस एक कदम
4: और सपनों को नई रफ्तार।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार

0: हस्तक्षेप हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस, कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
3: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9.

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

6 मेगाहर्ट्ज़ आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। और मुझे आज पूरी उम्मीद है मौसम थोड़ा हो गया है बेहतरीन। आज कौन कौन भीगा है बारिश में ज़रूर हमें बताएं कि किसने आज बाइक निकाली और चलो जी आज तो इस रिमझिम में घूम के आते हैं, या फिर निकाली अपनी गाड़ी और कहा आज हो गया मौसम बढ़िया तो आज कहीं ना कहीं चाय का लेते हैं आनंद और भीगते हैं इस बरसात में। 9837896896 इस पे आप करें हमें कॉल और आज करेंगे आपसे दिल की बात। कहते हैं ना, दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता वो होता है जहाँ बहुत कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सामने वाला आपकी खामोशी भी समझ जाता है। लेकिन आज हम उन लोगों के लिए कुछ कहेंगे जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया। हो सकता है वो आपके मम्मी पापा हों, या फिर आपका कोई पुराना दोस्त हो, या फिर आपके भाई या बहन, और हाँ आपका हमसफ़र भी हो सकता है। उस खास इंसान के लिए जिसका नाम लेते ही चेहरे पे आ जाती है मुस्कान। एक छोटी सी शायरी। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ अपने किसी पहचान के मोहताज नहीं होते, बस दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए, फिर फासले भी फासले नहीं होते। तो करिए हमें डायल 9837896896 पे और बताइए कौन है वो आपके दिल के करीब जिसके लिए कोई ना कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात उसके साथ जो आप कहते हैं ना उसी के साथ शेयर करते हैं, मगर आज हमारे साथ भी शेयर करेंगे कि हाँ वो कुछ है ही ऐसा। तो तब तक सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना और आते हैं फिर खूब सारी बातों के पिटारों के साथ।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद FM 89.6 पर। और कहते हैं कभी कभी हम अपने सबसे खास लोगों से ही सबसे कम कहते हैं कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मम्मी से कह देते हैं जैसे खाना खा लिया, पापा कहते हैं, पापा से कह देते हैं कि पैसे भेज दिए, दोस्त से कहते हैं कहाँ है भाई, और जिससे प्यार करते हैं ना उससे कहते हैं क्या कर रहे हो। लेकिन कभी कभी रुक कर ये भी तो कहना चाहिए तुम मेरी ज़िंदगी हो, इसके लिए शुक्रिया। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, अगर आपको अपने किसी एक खास इंसान को सिर्फ 20 सेकंड देने हो तो आप दिल से क्या कहेंगे? फ़ोन उठाएं, मैसेज भेजिए या हमें बताएं 9837896896 पे कि ऐसा क्या बोलेंगे आप। हमारे साथ अभी एक लिसनर जुड़े हैं, हमारे पहले लिसनर, हमारे पहले कहते हैं ना सबसे पहली कॉल उसी लिसनर की आती है, अब तो आप लोगों को पता होगा कि कौन है वो। चलिए बात करते हैं अपने धैर्य से। हेलो धैर्य, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, क्या कर रहे हो धैर्य? आज बारिश में क्या क्या रिमझिम किया?
1: आज बारिश
0: आज बारिश में छुट्टी हो गई?
1: नहीं, छुट्टी हुई बारिश में।
0: हाँ, छुट्टी में बारिश हुई और सब भीग गए। आज तो भाई साहब सब जगह जाम ही जाम लग गया। पूरा मुरादाबाद जो है ना इस समय आपका एकदम सी कहते हैं ना सी साइड एरिया हो रहा है, गोवा जैसी फीलिंग आ रही होगी आजकल सभी को। तो आज बताओ आप कि आपके पास ऐसा कौन सा खास इंसान है जिसके साथ कहते हैं ना समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: वो तो मेरा भाई है।
0: भाई है वो? क्या क्या शैतानी करते हो भाई के साथ?
1: मतलब
0: तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई की शैतानी के चक्कर में आपकी पिटाई हुई हो या आपकी शैतानी के चक्कर में आपके भाई की पिटाई हुई हो?
1: ये हमेशा ही होता रहता है।
0: हो जाता है यार, ये हो जाता है। और जब पिटाई होती है ना तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी आता है। बताओ भाई के चक्कर में गलती उसकी थी और पिटाई मेरी हो गई।
1: और मैंने
0: क्या
1: जैसे उसने मेरा नाम लगाया तो नहीं उसका।
0: सही है, बिल्कुल बढ़िया, ऐसी होना चाहिए। चुपचाप एक दूसरे का नाम लगा दो, सामने वाले को पता भी नहीं चला किसने क्या किया है। तो चलिए आज आपके भाई के लिए एक बढ़िया सा हम गाना डेडिकेट करेंगे, ठीक है ना? और ऐसी ही भाई गिरी शैतानी गिरी चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य, आज आपने फिर से वही वाला रूटीन, पहली कॉल वाला रूटीन अपना कायम रखा और बहुत ही अच्छा लगा। और जल्दी मिलते हैं दोबारा कल फिर से। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ धैर्य जो कह रहे हैं आज ना छुट्टी के समय में हो गई बारिश और जैसी बारिश हुई मज़ा आ गया। भाई साहब सब जगह पानी पानी मिल रहा था, इधर भी गीला उधर भी गीला, कहाँ कहाँ बचे बेचारा रंगीला। तो और उनके साथ हैं उनके भाई जिसके साथ वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी टाइम मिले तो स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो होता है यार, भाई के साथ तो होता ही ऐसा है, गलती तुम करो और पड़ जाए डंडा भाई के। आपके साथ भी हुआ होगा या गलती भाई ने करी होगी तो बड़े होने के नाते पड़ गया होगा आपके भी डंडा। तो अगर कोई डंडा पड़ा है ना तो बता दो साहब आज कि क्या बात पे पड़ गया था डंडा और क्यों पड़ गया था डंडा। चलिए करते हैं मस्ती और इस ब्रेक के बाद आते हैं 9837896896 पे, थोड़ा सा गुनगुनाते रहें और इस सफ़र का इस मौसम का भी आनंद लें। अगर कहीं फंसे हुए हैं तो हमें ज़रूर ट्रैफिक अपडेट करें कि कहाँ पे आपकी गाड़ी इस समय जाम है, क्लार्किन के पास या फिर स्टेशन के आसपास या फिर MDA में। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई ना कोई गड्ढा होगा जो भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर हमें ज़रूर पहले से अवगत कराएं जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि मुरादाबाद शहर में कहाँ फंसे हुए हो।
2: Our journey started up.

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
4: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
4: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
5: मुरादाबाद
3: से संपर्क कीजिए।
4: नियम और शर्तें लागू।
6: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और हमारे पास बहुत प्यारा सा एक मैसेज आया, कहते हैं सूरज निकलता है पूरब की ओर से, अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार हमारे परिवार की ओर से। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये एक्चुअल में आया है प्लीज़ प्लीज़ इनके पास से लिखा हुआ। मेरा एक गाना प्ले कर जी प्ले कर दीजिए, तेरी दो टके की नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए, ये गाना हमने आप ही की फरमाइश में प्ले किया था सर। और आपका नाम है शंकर लाल यादव, लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहा जिला मुरादाबाद। अब ये प्रकाश नगर चौराहा का नाम क्या हो गया है, लाइन पार का नाम क्या हो गया, अब आप ये हमें मैसेज करके बताएं और हम भी पता करें आप लोग कितना अपडेट हैं अपने शहर के बारे में। लाइन पार मुरादाबाद का नाम बदल के अब कुछ ऐसा हो गया है जो आप लोगों को शायद अभी ध्यान नहीं हो या याद नहीं आ रहा हो या आपकी अभी ज़ुबान पे नहीं आ रहा हो कि बोलने से हिचकिचा रहे, मगर अगर आपको पता है तो ज़रूर हमें मैसेज करें 9837896896 पे। तो हम पे एक हमारे लिसनर और हैं जिनका भी मैसेज आया, वो कहते हैं कि मेरे स्पेशल पर्सन जो हैं वो मेरी मम्मी हैं और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मम्मी मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं आपकी गोद और आपकी डांट दोनों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। अमित हरतला से। तो अमित जी क्या मैसेज है, आपने बहुत बढ़िया मैसेज किया है। और मैं सच कहूं तो माँ के लिए ना हमारी उम्र कभी भी बड़ी नहीं होती, माँ वो रिश्ता है जो हमारी खुशी में सबसे पहले मुस्कुराती है और हमारे दर्द में सबसे पहले बेचैन भी होती है। तो चलिए हम अपने नए लिसनर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं अभी। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: हेलो, मेरा नाम गुंजन है, मैं प्राइमरी स्कूल के सामने से बोल रही हूँ, मैं स्टडी करती हूँ क्लास में।
0: आपके पीछे जो FM रखा हुआ है उसकी आवाज़ कम कर लीजिए वरना आवाज़ ऐसी ही गूंजती रहेगी। कर ली आपने आवाज़ कम?
1: क्लास के करने इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ।
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? सिक्स क्लास में पढ़ती हो आप? तो आज आप जब स्कूल से छुट्टी हुई तो बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी ये बताओ पहले।
1: हो रही थी।
0: तो बारिश में कौन भीगा, आप भीगा या आपका स्कूल का बैग भीग गया, कौन भीगा?
1: बैग भी और मैं भी।
0: तो बैग सुखा लिया, किताबें तो नहीं भीगी?
1: नहीं।
0: पक्का? होमवर्क हो गया पूरा सारा?
1: yes.
0: तो आज हम पता है किस बारे में बात कर रहे हैं आपको पता है?
1: yes.
0: बताओ फिर सभी को बताओ हम किस बारे में बात कर रहे हैं आज। भूल गए है ना। हेलो
1: हेलो,
0: बताओ ना फिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। आप उस पर्सन का नाम बताओ जिसके साथ आप खूब सारा टाइम स्पेंड करते हो, मम्मी के साथ, पापा के साथ, या किसी फ्रेंड के साथ, या दादा दादी के साथ।
1: सबसे ज्यादा मैं मम्मी के साथ करती हूँ और उसके बाद पापा के साथ।
0: वेरी गुड। तो मम्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड है फिर, है ना?
1: और एक मेरी फ्रेंड है उससे।
0: तो आज आप मम्मी का भी नाम बताओ, बेस्ट फ्रेंड का भी नाम बताओ और उनके लिए कौन सा गाना प्ले करना है ये बताओ।
1: मम्मी का नाम रजनी और पापा का नाम ऋषिपाल सिंह ठाकुर और मेरी फ्रेंड का नाम वंशिका।
0: वेरी गुड। तो कौन सा गाना प्ले करना है आज सभी के लिए?
1: दिल मांग रहा है मोहलत के नाम से, जी मैं की के नाम से मैं।
0: ठीक है, अब हम ये गाना जरूर प्ले करेंगे। पूरा ही गाना सुनाऊंगा।
1: मैं आपके स्टूडियो के सामने से निकली थी।
0: अच्छा, स्टूडियो के सामने से निकली थी आप?
1: यस।
0: तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने स्टूडियो के सामने।
1: हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी।
0: तब हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी?
1: यस।
0: और उसके बाद जैसे ही आप स्टूडियो के आगे से निकल गई बारिश बहुत तेज हो गई थी, पता है आपको? अरे यार बारिश में तो नहाना सभी को पसंद है। आज मैं भी बारिश में नहाने का बहुत मन था, मगर फिर मैंने सोचा अभी मेरे पास कपड़े एक्स्ट्रा है नहीं, कहाँ भीग के कहाँ जाऊँगा, तो फिर मैंने कहा चलो बाद में ही नहाऊंगा। इस चक्कर में मेरा तो नहाना रह गया, मगर अब की बार कंफर्म है, अब नेक्स्ट बारिश में ना मैं फटाफट पहले नहाऊंगा आज। ठीक है?
1: ठीक है भैया, पूरा सुना।
0: पक्का पक्का पक्का। बाय बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ छोटी सी गुड़िया, और कह रही है कि मेरी मम्मी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करती हूँ, और आज उन्होंने अपनी फ्रेंड का भी नाम लिया और उनके लिए एक गाना भी डेडिकेट किया। तो यही तो होता है जब आपका फेवरेट पर्सन आपके आसपास रहता है ना, तो आसपास पॉजिटिविटी अपना आप ही बन जाती है। फिर तो कहते हैं ना कि चाहे कोई सा भी टास्क हो आपका, वो पूरा ही होके रहता है। छोटी सी एक शायरी छोटी सी बच्ची के लिए, दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर लेना लेकिन माँ की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं। तो आते हैं इनके एक फेवरेट ट्रैक के बाद वापस। आपकी भी कोई ऐसी कहते हैं ना स्पेशल फ्रेंड या स्पेशल पर्सनैलिटी आपके साथ हो तो ज़रूर हमें मैसेज करें 9837896896, या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं और थोड़ी सी दिल की बात हमारे साथ रख सकते हैं। तब तक के लिए गाना सुनते हैं और जल्दी से आते हैं इसका।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और बाहर मौसम तो थोड़ा सा हो ही रहा है ऐसा कि जहाँ पे हवा हवा आपके पीछे लगी रही है। कुछ गाने ऐसे होते हैं दोस्तों जब ना आ जाते हैं FM पे और आप रुक नहीं सकते अपने आप को उसे गुनगुनाने से, चाहे बोल आपको याद रहे या ना रहे, मगर एकदम आप फॉर्म में आ जाते हो और आज एक दो लाइनें तो उस गाने की गा ही देते हो। तो इन गानों को आप पीछे से अपना कहते हैं ना, सब भूल सकते हैं, मगर जब ये इनका बैकग्राउंड म्यूज़िक आपके कानों में जैसे ही पड़ा, खुद ही खुद ऑटोमेटिक आपके जो है होठ हिलने लगते हैं। हमारे एक लिसनर का हमारे पास मैसेज आया कि मेरे लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरा फैमिली है, उससे मैं कहना चाहता हूँ भाई जिंदगी में चाहे कितने लोग आए और जाएं, तू हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगा। क्या बात है, आपने अपना नाम हमें इसमें मैसेज में नहीं शो किया है, मगर मैं सच कहूँ तो कुछ दोस्त सच में दोस्त नहीं होते, वो हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा होते हैं जिसे हम फैमिली कहते हैं। एक शायरी छोटी सी इसी के ऊपर, दोस्ती वो नहीं जो हर रोज़ बात करे, दोस्ती वो नहीं जो हर रोज़ बात करे, दोस्ती वो है जो सालों बाद भी वही एहसास दे। तो जब उसका कहते हैं ना कि एक हल्का सा नाम आ जाता है और कह देते हैं यार अब तो अगर कहीं भी परेशानी में खड़ा हो और उसका नाम आपके जहन में सबसे पहले उसी का आता है कि चलो कोई बात नहीं, इससे एक बार बात तो कर ही लेते हैं, सॉल्यूशन तो निकलते रहेंगे चाहे कैसे भी निकले। तो हम करते हैं अपने एक नए लिसनर से बात और देखते हैं क्या कहते हैं वो आज इसके ऊपर। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
1: आपके रेडियो श्रोता मित्र मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल।
0: रणवीर सिंह जेठालाल जी, कैसे हैं आप पहले तो ये बताइए।
1: आप ठीक है तो सर हम भी ठीक है।
0: तो आज मौसम का आपने आनंद कैसे लिया?
1: अरे यह सर सुबह हमारे साथ आनंद सर थे तो फिर तो आनंद ही आनंद है जीवन में।
0: तो आपके साथ सुबह से ही आनंद चल रहा है जीवन में।
1: अगर आनंद सर ने अपना मैसेज शामिल नहीं करा मगर फिर भी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है।
0: तो आप ये बताओ, शिकायत तो सर पता है कभी होनी भी नहीं चाहिए किसी के साथ। ये तो आज बारिश में आप पहले भीगे नहीं भीगे, आप ये बताइए जेठालाल जी।
1: अरे भीगे और इतना भीगे के बाद भीग भीग के कुछ मत पूछिए।
0: कुछ नहीं पूछना, चुपचाप से रात में डोलो ले लीजिएगा।
1: ओहो ना ना ना, जो हमारे दादा ने नहीं करा, हमारे पापा ने नहीं करा, बड़े भाई साहब ने नहीं करा तो हमारी क्या हिम्मत।
0: अरे मैं दवाई की बात कर रहा हूँ, डोलो दवाई।
1: अरे सर मैं समझ गया, बीड़ी सिगरेट रम नहीं पाले हमने इसके गम।
0: तो आप बताइए आज कौन सा ऐसा कोई जो बिल्कुल खास है आपका, उसका नाम लेना चाहेंगे और एक शायरी उसके लिए डेडिकेट करिए आज। एक
1: नहीं सर, खास तो हमारे सभी हैं, उसमें सबसे पहले आप हैं।
0: तो आज कौन सी शायरी सुना रहे हैं सभी श्रोताओं को?
1: सर मेरे सन्नाटे को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं।
0: क्या बात है।
1: मेरे सन्नाटों को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं, मैं अपनी खामोशियों में भी एक शहर बसा रखा।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मैंने अपनी खामोशियों में भी एक शहर बसा रखा है। नमक के इस बाजार में जख्म लेकर घूमता रहा मैं, मगर अपने होठों पे मुस्कुराहट का पहरा लगा रखा।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जेठालाल जी, बहुत बढ़िया। तो जेठालाल जी आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे किसी को?

0: आखिरे तेरे बिना भी क्या जीना,
1: बहुत
0: ही कलियों में।
1: ये तो बाकी तो हमें पता है, आपके सारा गाना पूरा याद है, ये पूरा होगा कहेंगे तो आप तो पूरा गाना सुना दोगे हमें।
0: नहीं नहीं नहीं अब इतने गाना सुनाना है और को भी नंबर लगने ना।
1: चलिए धन्यवाद, आपने समझा और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी शायरी सुनाने के लिए।
0: ओके नमस्कार।
1: नमस्कार जी। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ जेठालाल जी और कह रहे हैं आज इन्होंने बारिश का आनंद पूरा भर के लिया है। भाई साहब पूरा नहाए हैं ये अच्छे से, जब जब रिमझिम हुई है ना इन्होंने खूब आनंद ले लिया। ये गए नहीं अगल बगल में जाके शैम्पू की दुकान भी ढूंढने के, भैया शैम्पू से नहाना, नहीं भाई साहब बारिश हो रही पहले मैं नहा लूँगा उसके बाद ही कुछ होगा। और हमारे पास मैसेज आया हमारे लिसनर्स के, सबसे पहले मैसेज हमारा एक और आया है, हेलो अखिल सर गुड वाला इवनिंग। गुड वाला इवनिंग है जी, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़ और बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा है, धन्यवाद। ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से, ललिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा ऐसे लिसनर्स में हैं हमारे जिनका मैसेज आना तय है अगर उन्होंने FM ऑन कर रखा है। सर हम आपका शो सुन रहे हैं, और सर खाना खा लिया क्या आपने? खाना खा लेंगे अभी थोड़ा सा टाइम है, पहले अपने लिसनर से बात हो जाए, उनके मनपसंद गाने चल जाएं, उसके बाद तो पहला खाना तो वही हमारा, उसके बाद जो भूख मिटाने वाला खाना वो भी खा लिया जाएगा। सर मेरी मम्मी नहीं है लेकिन वो मेरी बेस्ट दोस्त थी, मैंने बताया ना आपको माँ और पापा में से कोई ना कोई तो एक ऐसा दोस्त था, हम बोल नहीं पाते कह नहीं पाते चाहे कितने ही बड़े हो जाए मगर अंदर ही अंदर कोई तो एक फीलिंग रहती है, हाँ भाई ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इनसे तो मैं कुछ भी बात शेयर कर देता हूँ। आज मेरे दोस्त मेरे हस्बैंड जी हैं और मेरी दो बेटियां हैं जो मेरे हर दुख सुख में मेरे काम आती हैं। तो ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही, और सबसे मतलब यही एक बॉन्डिंग है जो आप आपके रिलेशनशिप में आपको एक कहते हैं ना, यही सबसे बेस्ट फ्रेंड्स आपके हैं जो आपके आसपास और आपके हर चीज़ में आपके साथ सबसे बड़ी बात। और आपने जो सॉन्ग की गुजारिश करी है ये भी हम आपके हस्बैंड के लिए ज़रूर प्ले करेंगे शो के एंड होने से पहले। हमारे पास हमारे एक और है हमारे मैसेज लिसनर जो कहते हैं अखिल भाई पापा के लिए मैं क्या कहूँ, पापा ही तो मेरे सपनों की जान है और पापा भले ही मेरे साथ नहीं है आज भी पापा ही उड़ान है हमारी। आपका रात का कार वाला मित्र आकाश, आकाश जी बहुत बहुत उम्मीद वो है कि आज आप मस्त होंगे और कार में इस समय मौसम का आनंद ले रहे होंगे, बात करेंगे आपसे भी। और आपने एक फरमाइश जो दी है पापा से जुड़ा हुआ गाना सुना दे, ज़रूर एक गाना हम ज़रूर पापा के लिए भी डेडिकेट करेंगे। हमारे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ वाले भैया नमन यादव जी लाइन पर मुरादाबाद से कह रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्ले एक सॉन्ग और ज़रूर आपका गाना बजेगा और आपको हम ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो उस बात अब बात उस इंसान की जिसका नाम शायद आप रेडियो पर नहीं लेना चाहते हैं लेकिन दिल में उसका नाम सबसे ऊपर है, वो स्पेशल पर्सन जिसका मैसेज का नोटिफिकेशन आते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिससे बात 5 मिनट करनी होती है और 1 घंटा निकल जाता है, और जिसके साथ साइलेंस भी ना थोड़ा सा ऑकवर्ड जो है वो नहीं लगता। भाई हर किसी के साथ ऑकवर्डनेस आ जाती है मगर कुछ लोग स्पेशल हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी साइलेंस हो जाए सामने खड़े ना तो भी आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा। एक शायरी आई है और उसको मैं आपको सभी को सुनाना चाहूँगा। तेरा नाम लूँ तो तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तेरा नाम लूँ तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तेरी याद आए तो शाम सुहानी हो जाती है, तू पास हो या दूर फ़र्क इतना सा है, तेरी मौजूदगी से ज़िंदगी थोड़ी और प्यारी हो जाती है। सॉरी अगर थोड़ा सा कुछ गलत निकला हूँ मगर बहुत बढ़िया शायरी है, बहुत ही अच्छी शायरी है। तू पास हो या दूर फ़र्क इतना सा है, तेरी मौजूदगी से ज़िंदगी थोड़ी और प्यारी हो जाती है। तो चलिए सर करते हैं थोड़ी सी फरमाइश पूरी जेठालाल जी की अपनी और आते हैं इस ब्रेक के बाद, हम लेंगे लास्ट कॉल। तो मिलाइए अपनी मोबाइल से 9837896896 या फिर करें हमें मैसेज और उसके बाद लेंगे अलविदा। आज का जो टॉपिक है मुझे पूरी उम्मीद है थोड़ा सा पसंद आया होगा, कुछ ज़्यादा ही पसंद आया होगा, तो ज़रूर हमें मैसेज में बताएं, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें और कुछ बातें जो आप कहते हैं ना कि इसको भी शामिल करना चाहिए हमारी बातों में, तो वो ज़रूर मुझे लिख के बताएं कि किन बातों को हम शामिल कर सकते हैं। तब तक के लिए प्यारा सा गाना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, जेठालाल जी की फरमाइश पे उनका पसंदीदा गाना।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कह दो आज जो कहना है, कल का क्या भरोसा है। रिश्ते दिल से निभाओ दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी सी कहानी है। और अगर आपके दिल में है कोई खास तो उससे ज़रूर ये कहना, तुम मेरी ज़िंदगी में हो और मैं इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। तो चलिए आज लेते हैं अपने लास्ट कॉलर को और करते हैं उनसे कुछ गुफ्तगू जाने से पहले। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका, सभी को बताइए।
1: जी मैं जिला मुरादाबाद सर।
0: जिला मुरादाबाद से आकाश
1: जी? आकाश नहीं, अतर सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: अतर सिंह से, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है।
0: तो आज आपको पता ही होगा कि आज हमने बात करी कुछ खास लोगों के लिए जो आपके कहते हैं ना बहुत करीब होते हैं, शायद आपके माँ बाप हो, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो। तो कभी कभी किसी के साथ हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं कि भैया आज जो है ना कुछ बातें हैं आपसे करनी, और कभी कभी उनकी डांट भी लगती है बहुत प्यारी। तो कुछ बताइए अपने बारे में। और हाँ जी बोलिए। अतर सिंह जी, तो बताइए आज कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे
1: जी।
0: तो कौन है ऐसा खास इंसान जो कहते हैं ना कि आपके बहुत करीब है और आप कहते हो कि मैं बहुत बात मानता हूँ और उनकी डांट भी खा लेता हूँ कभी कभी? हेलो
1: जी,
0: आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं क्या बात?
1: डबल चल रहा है प्रोग्राम,
0: तो आप अपनी तरफ से आवाज कम कर लीजिए।
1: ये सबसे ज्यादा प्यारी मेरे लिए मेरी अम्मा, और मैं अपनी अम्मा के लिए सब कुछ तैयार रहता हूँ और वो मेरे लिए तैयार रहती है।
0: क्या बात है।
1: और जी मेरी मम्मी की उम्र लगभग 95 साल है और मैं चाहता हूँ वो सेंचुरी पूरी करें।
0: अरे सर, जब जिस दिन, और ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, और जब सेंचुरी होगी तो सबसे पहले हमारे पास ही लड्डू आना चाहिए। खूब आशीर्वाद बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ना आशीर्वाद ही कभी जो है ना, जब ऐसा माँ का आशीर्वाद होता है तो सेंचुरी क्या, सेंचुरी से आगे भी रन बनते रहेंगे और हमेशा साथ में ही रहेंगी हमारे। मुझे लग रहा है सैनी साहब आप बहुत ही, आपका रेडियो जो है या तो आपके पास आवाज़ कम आ रही है या मोबाइल से आवाज़ कम पहुंच रही है, कुछ हो रहा है आपके साथ, ऐसी दिक्कत तो नहीं है? चलिए खैर दोस्तों, सैनी साहब से संपर्क टूट गया हमारा, और बहुत ही अच्छा उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि मेरी मदर की एज 95 हो गई है और मैं चाहता हूँ कि 100 हो, तो ज़रूर होगी 100, और खूब आशीर्वाद मिलेगा और खूब प्यार मिलेगा। जब आप अपने दिल से किसी के लिए कुछ कहते हो ना तो ज़रूर पूरा होता है। तो चलिए करते हैं अब विदाई, लेते हैं अलविदा, और इस खूबसूरत एहसास के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग। आज की एक छोटी सी बात याद रखिएगा, प्यार जताने में कभी देर मत कीजिए, क्योंकि दिल की बात दिल तक पहुँच जाए इससे खूबसूरत बात और क्या होगी। अपने खास लोगों को टाइम दीजिए, उनकी कद्र कीजिए, और सबसे ज़रूरी उन्हें बताइए कि वो आपके लिए खास हैं। मैं फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक, एक नई शायरी और आपके ढेर सारे दिल वाली बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनों के साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ अखिल और आपका अपना दिल से दिल तक अखिल के संग का ये शो। मज़े करते हैं, मिलते हैं कल दोबारा ठीक 9 बजे, और कहते हैं ना।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।